सुप्रभात FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 59 सेकंड हो रहे हैं। आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा।

0: इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलानबटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रभु स्मरण के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हे गौरीनंदन, तुम तो विघ्न हरता हो, संकट हरता हो और बुद्धि विदाता हो। बस इतनी कृपा बनाए रखिए कि इस जीवन में, इस संसार में अपने किसी भी तरह के कर्म से शर्मिंदा ना होना पड़े। यह जीवन सम्मानजनक तरीके से व्यतीत हो जाए, बस

ऐसी कृपा बनाए रखिए प्रभु, और आपकी शरण है प्रभु, हम सदा हम पर अपनी ममता, सहृदयता बनाए रखें प्रभु, बस यही प्रार्थना है।

हे परमपिता, जाने अनजाने में जो भी कोई ऐसा कृत्य हुआ हो जो हमें पाप का भागी बनाए, प्रभु पश्चाताप की इस अग्नि में इसको खुद को तपाकर आपकी शरणों प्रभु। और जब तक ये संसार में जीवन है, बस प्रभु इस नाना प्रकार की जो यहाँ तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, दुख हैं, दुख ही दुख हैं, प्रभु हिम्मत दें, आप ताकत दें और अपनी कृपा सदैव बनाए रखें।

0: आप सुन रहे थे अभी संबीत स्वरों में देशभक्ति परक रचना को। इसके अलावा जिन गायक स्वरों में आपने भक्ति परक रचनाएं सुनी, वे गायक स्वर थे अनु जलोटा, हरिओम शरण, पंडित भीमसेन जोशी के। आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। चिंतन बंधु क्रम में लीजिए प्रस्तुत है आज बालक का विकास संबंधी विचार। आलेख अजय शर्मा, स्वर राखी कटारा का है।
1: विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है, किंतु उचित विकास जन्म लेने के पश्चात ही प्रारंभ होता है। बालक जब संसार में जन्म लेता है, तब न तो वो मानसिक रूप से विकसित होता है, न ही शारीरिक रूप से, लेकिन फिर भी वो एक मनोशारीरिक प्राणी है, जिसमें विकास के सभी तत्व एवं संभावनाएं विद्यमान रहती हैं। बाल विकास के दो सिद्धांत हैं,

0: क्रमिक विकास का सिद्धांत, जिसके अनुसार बालक की मानसिक शक्तियों का विकास क्रमानुसार होता है। पहले के मनोवैज्ञानिकों का विचार था कि बालक की संपूर्ण मानसिक शक्तियां पृथक पृथक क्रमानुसार विकसित होती हैं। किसी विशेष अवस्था में विशेष शक्ति उत्पन्न होती है और वो शक्ति शीघ्र ही पूर्णता विकसित हो जाती है, तत्पश्चात दूसरी का विकास होता है। अतः हम कह सकते हैं कि मानसिक क्रियाओं का भी एक क्रम होता है। उदाहरण के लिए, पहले स्मृति का विकास होता है, तत्पश्चात कल्पना का। दूसरे सम विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक की मानसिक क्रियाएं एक साथ विकसित होती हैं। इस विचार को मानने वाले विद्वान मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसी विशिष्ट अवस्था में किसी का विकास नहीं होता, वरन संपूर्ण मानसिक शक्तियां सदैव बालक में निहित होती हैं। केवल उनके प्रकटीकरण में भेद हो सकता है। बाल विकास शैशव काल से ही प्रारंभ हो जाता है। उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे काल्पनिक जगत में रहना, सीखने की गति में तेजी होना, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार होना, बालक में पर्यावरण को अनुकूल बनाने की अयोग्यता, एकल खेल में रुचि, अनुकरण से सीखने की प्रवृत्ति का होना, उचित अनुचित का ज्ञान होना इत्यादि। शैशवावस्था में शारीरिक विकास द्रुत गति से होता है। शिशु लगभग 6 माह के अंदर जन्म से दुगुना हो जाता है और 1 वर्ष के उपरांत लगभग 3 गुना हो जाता है। यदि कोई व्यवधान ना हो तब बालक 6 वर्ष में 40 इंच तक बढ़ जाता है। इसी अवस्था में कई प्रकार की शारीरिक क्रियाएं करता और सीखता है। बालक एक मन शारीरिक प्राणी है। शैशवावस्था में उसका मानसिक विकास भी द्रुत गति से ही होता है। इसके अंतर्गत उसका भाषा विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास इत्यादि आते हैं। शैशव काल के बाद बाल्यकाल प्रारंभ होता है। प्रायः 6 वर्ष से 12 वर्ष के मध्य आयु को बाल्यकाल कहा जाता है। इस अवस्था में अनेक शारीरिक और मानसिक विकास होते हैं। बालक के पर्यावरण का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। इस अवस्था में उसका सामाजिक और नैतिक विकास भी होता है। बालक के जीवन में इस अवस्था में स्थायित्व आ जाता है। इसमें शारीरिक एवं मानसिक विकास के अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषताएं हैं। अपने अनुभवों से शिक्षण, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, प्रबल जिज्ञासा भाव, वास्तविकता को जानने का प्रयास, सामूहिक खेलों की ओर रुझान, नैतिक और सामाजिक विकास का प्रारंभ, संग्रह प्रवृत्ति का जागरण आदि। बाल विकास में तीसरा क्रम किशोरावस्था का है, जो प्रौढ़ता से पूर्व की सीढ़ी है। बाल्यकाल के बाद से अर्थात 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। कुछ विद्वानों का मत है कि इस अवस्था में विकास क्रमशः होता है और उसे त्वरित भी मानते हैं। वस्तुतः इस अवस्था में परिवर्तन कुछ विशेष होते हैं। इसमें कई चेतना जन्म लेती हैं, जैसे धार्मिक, बौद्धिक भावनाएं आदि, सामाजिक सेवा के भाव जगते हैं, व्यवसाय चुनने की प्रवृत्ति का जागरण होता है, स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता प्रवृत्ति का विकास होता है और अध्ययन में रुचि बढ़ती है।
1: आप सुन रहे थे अभी चिंतन बिंदु क्रम में बालक का विकास संबंधी विचार, स्वर राखी कटारा का था और आलेख अजय शर्मा का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण।

भगवान शंकर के विवाह का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में किया है। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। शिव ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, देवताओं ने हर्षध्वनि की, श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने

लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और सर्वत्र आनंद छा गया। विदा के समय जामाता को अनेक उपहार देकर हिमाचल ने हाथ जोड़े। हे शिव, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं? हिमाचल पत्नी मैना ने विनती की, उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, आप इसके सभी अपराध क्षमा कीजिएगा। और बेटी के लिए मां के वचन थे, हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। तत्पश्चात शिव पार्वती कैलाश पर्वत के लिए विदा हुए।

आप सुन रहे थे अभी श्री रामचरितमानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। गायक स्वर शोभा जोशी का था, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज आप सुनेंगे दिन में 1:15 पर कार्यक्रम वनिता लोक। इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी डिजिटल दुनिया और महिलाएं, वैश्विक अभिभावक दिवस विषय पर। आरोग्य वार्ताक्रम में आज डॉक्टर मयंक सारस्वत जानकारी देंगे गर्मियों के आम रोग, कुछ प्राथमिक उपचार, साथ ही कुछ घरेलू टिप्स भी बहनें इसी कार्यक्रम में सुन सकेंगी।

आप सुनेंगे महावीर सिंह चौहान की लिखी हुई नौटंकी, ये कैसी दुश्मनी। प्रस्तुति रामगोपाल की होगी। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे सारंगी वादन, प्रस्तुत करेंगे उस्ताद अब्दुल लतीफ। संध्या 6:15 पर कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी बीज का चुनाव और खेत की तैयारी, मानसूनी दस्तक एवं खेत की तैयारी, इन दोनों ही विषयों पर। साथ ही अंकित अग्रवाल से ली गई भेंटवार्ता ओपी सिंह की इसी कार्यक्रम में प्रसारित की जाएगी। विषय होगा कृषि क्षेत्र में एआई का उपयोग एवं किसान की जागरूकता। संध्या 6:45 पर सुनिएगा भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे ओंकार सिंह जायस की वार्ता, विषय होगा ब्रज संस्कृति में हास परिहास। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सहानी सुनिएगा शाम 7:31 पर, और श्रोताओं के ही व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बात एसएमएस आप सुनेंगे दिन में 12:00।

0: युववाणी कार्यक्रम संध्या 5:30 पर प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा नीलम संजीव रेड्डी जो कि राष्ट्रपति थे उनकी पुण्यतिथि पर और वैश्विक अभिभावक दिवस पर। काव्यांकुर में आज आप सुनेंगे पुंडरीकाक्ष पाठक का काव्य पाठ। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का प्रसारण समय रहेगा दिन में 2:30 का। ब्रज लोकगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर। आज कलाकार होंगे उदयवीर सिंह और साथी। 10:00 का समय रहेगा NCERT एवं CIT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। सुबह 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम ब्रज दर्पण। कार्यक्रम आवो हवा सुबह 9:25 पर प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में माया जैन जानकारी देंगी शहरों में बढ़ता प्रदूषण। सुबह 9:00 का समय रहेगा पर्यावरण वार्ता का। आज आप सुनेंगे वृक्ष हमारे जीवन का आधार इस विषय पर शालिनी शर्मा से ओपी सिंह की ली गई भेंट वार्ता। प्रातः 7:31 पर बीरेन्द्रमाधुरी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कवि मुखसोक्रम में कवि श्याम सुंदर अकिंचन का काव्य पाठ। ये था आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में आज विजय सिंह नौलखा से ये जानकारी। विषय है पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग और बचाव।
1: किसान भाइयों, आज हम खुरपका एवं मुंहपका रोग के बारे में चर्चा करेंगे। खुरपका मुंहपका रोग एक विषाणु जनित रोग है जो मुख्यतः जुगाली करने वाले तथा विभाजित खुर वाले पशुओं में पाया जाता है। खुरपका एवं मुंहपका रोग पशुओं में होने वाले संक्रामक रोगों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भारत देश में ही इस रोग के कारण प्रतिवर्ष अरबों रुपए का आर्थिक नुकसान होता है। यह रोग मुख्यतः गाय भैंस भेड़ बकरी और सुअर में पाया जाता है। मुख्य रूप से यह रोग रोगी पशु के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। रोगी पशु द्वारा छोड़े गए सांस के साथ भारी मात्रा में विषाणु वातावरण में फैल जाते हैं और यह दूषित हवा स्वस्थ पशु के सांस के साथ अंदर जाकर पशु को बीमार कर देती है। रोगी पशु की लार मूत्र गोबर मांस आदि में रोग के विषाणु भारी मात्रा में पाए जाते हैं। पशुओं के दाने चारे पानी को यह दूषित कर देते हैं और इस दूषित खाद्य को खाकर स्वस्थ पशु भी बीमार पड़ जाता है। एक बार रोग से ठीक हो जाने पर पशु के शरीर

0: शरीर में 2 वर्ष तक यह जीवाणु जिंदा रहता है। ऐसे पशु वाहक का कार्य करते हैं तथा अन्य स्वस्थ पशु तक रोग पहुंचा देते हैं। रोग के विषाणु नम वातावरण में वायु द्वारा कई किलोमीटर तक फैल जाते हैं। पशुओं की देखभाल करने वाले व्यक्ति के कपड़ों हाथ से भी यह रोग स्वस्थ पशु में फैल जाता है। अब चर्चा करते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। यह देखा गया है कि यह रोग विदेशी नस्लों के पशु को ज्यादातर अपना शिकार बनाता है। संक्रमित पशुओं में सबसे पहले तेज बुखार 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, जो बाद में कम हो जाता है, फलस्वरूप जुगाली करना बंद कर देता है। पशु के मुंह में पीड़ादायक सूजन हो जाती है और मुंह से रस्सी की तरह लंबाई में अत्यधिक मात्रा में लार गिरने लगती। पशु अपनी जीभ से अपने होठों को बार बार चाटता है। इसी समय में मुंह, जीभ, मसूड़ों आदि पर पानी भरे छाले पड़ जाते हैं। कुछ ही घंटों में ये छाले फूटकर गहरे लाल रंग के घाव का रूप ले लेते हैं। मुंह में घाव होने के कारण पशु दाना चारा नहीं खा पाता। पशुओं के खुर के बीच बने चले के फूटने से जो बदबूदार घाव बनता है उसमें मवाद आ जाता है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। घाव के कारण पशु ठीक तरह से खड़ा नहीं हो पाता और लंगड़ा कर चलता है। पशु के तन पर भी छाले पड़ जाते हैं जो कि फूटकर घाव का रूप ले लेते। थन चूचकों में पीड़ा होने के कारण पशु दूध निकालने नहीं देता। थन में दूध जमा हो जाता है। थन में दूध जमा होने के कारण पशुओं में थनैला रोग भी प्रायः दिखता है। अब बात आती है कि इसका उपचार क्या है। खुरपका और मुंह पका एक विषाणु जनित रोग है जिसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। इस रोग से ग्रसित पशुओं को केवल प्राथमिक उपचार किया जाता है। बोरिक एसिड पाउडर, जो कि आसानी से किसी भी दवा की दुकान पर उपलब्ध होता है, को ग्लिसरीन में मिलाकर रोगी पशु के मुंह के छालों पर लेप करें। पशुओं के पैर में हुई घाव को पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा के घोल से साफ करें और उसमें मल्लम लगा दें। यदि पशु के घाव में कीड़े पड़ गए हैं तो रुई के फाये में तारपीन का तेल लगाकर उससे घाव को भर दें और थोड़ी देर बाद उसे निकाल दें, जिससे कि सारे कीड़े मर जाएंगे। क्योंकि रोगी पशु के मुंह में छाले पड़े होते हैं, इसलिए रोगी पशु को सूखा भूसा न दें बल्कि उसे पका हुआ दलिया दें। अब बात आती है कि अगर ये बीमारी फैले तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने नजदीक के सरकारी पशु चिकित्सक को बीमारी के बारे में अवगत कराएं। कृषक बंधु अपने क्षेत्र के किसान कॉल सेंटर से भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। रोगी पशु को हर संभव स्वस्थ पशु से अलग कर दें और उसके संपर्क में आने से बचाएं। रोग ग्रस्त पशुओं का दूध बछड़ों को पीने को न दें। जिस फॉर्म में बीमारी फैली है उसमें जाने से बचें। पहले स्वस्थ पशुओं की देखभाल के बाद ही बीमार पशुओं की देखभाल करें, जिससे कि बीमारी स्वस्थ पशुओं में न फैले। बीमार पशु प्रचुर मात्रा में संक्रमित स्राव विस्तार करते हैं, जिसे निष्क्रिय करने के लिए फार्म परिसर में एंटीसेप्टिक दवाई का छिड़काव करें। बीमार पशु के संपर्क में आने वाली सामग्री को भली भांति साफ करने के पश्चात ही स्वस्थ पशुओं के उपयोग में लाएं। बीमार पशु को चरने के लिए न छोड़ें, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका
1: जाए। आप सुन रहे थे भी कार्यक्रम खेती की बातें और अब समय हो चुका है संस्कृत समाचारों का, तो बस सबसे कुछ ही देर में।
2: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह चर्चां करिष्यति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च संबंधान इतोपि सुदृढीकरणाय वार्तालापः भविष्यति। वार्तालापावधौ म्यांमार भारतयोः मध्ये सुरक्षा संपर्कौ च समेत्य सम्पूर्णेषु विभिन्नेषु विषयेषु चर्चाः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः गतरात्रौ दिल्ल्याम् अतिथिगणमान्यैः सह मेलनं विहितवान्। अवधेयं यत् म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः शनिवासरे भारतस्य पञ्चदिवसीय यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्तवान् आसीत्। म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः भारतस्य आधिकारिक यात्रायाः कारणात् उभयोः देशयोः मध्ये बहुपक्षीय सम्बन्धः इतोपि सुदृढः भविष्यति इत्यपेक्षास्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रकृति संरक्षणे स्थानीय समाह्वानानां निराकरणे अन्य सामाजिक कार्येषु च तेषां प्रेरक उपक्रमाणाम् उपलब्धीनां च विषये अनेकेषां नागरिकाणाम् उत्कृष्ट योगदानाय प्रशंसा कृता। आकाशवाण्याः स्वकीये मासिक कार्यक्रमे मन की बात इत्यनेन कार्यक्रमेण राष्ट्रम् अभिसंबोधयन् श्रीमोदी झारखण्ड राज्यस्य रांचीनगरे आयोजिते

0: से कोई नींद लिए जाता है।
1: प्रस्तुत है पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का है पहला गीत, साथियों आप सबकी नजर

आप सुन रहे थे अभी लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म पूजा के फूल के इस गीत को। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत मदन मोहन का था। और अब आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

फिल्म अप्सरा के इस गीत को आवाजें दी थी आशा भोसले, तलत महमूद साहब ने, गीतकार कमर जलालावादी और संगीत हुस्नलाल भगतराम का था।

आपने सुना भी सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में फिल्म दिल ही तो है का ये गीत। लिखा था शायर जनाब साहिल लुधियानवी ने, संगीत रोशन का था। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: हम उनसे चुप हैं,
1: मनाने वाले मना रहे हैं,
0: वो हमसे चुप हैं, हम उनसे चुप हैं,
1: मनाने वाले मना रहे हैं,
0: निगाहें उठ उठ के झुक रही हैं, निगाहें उठ उठ के झुक रही हैं,
1: मजे मुहब्बत के आ रहे हैं,
0: वो हमसे चुप हैं, हम उनसे चुप हैं।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना भी सरगम फिल्म के गीत को। लिखा था गीतकार पीएल संतोषी ने और संगीत दिया था सी रामचंद्र ने। और अब ये कार्यक्रम का अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे फिल्म दर्द के इस गीत को गायिका और अभिनेत्री उमा देवी उर्फ टुनटुन ने इस गीत को गाया था और लिखा था शकील बदायूनी ने, संगीत नौशाह साहब का था। आज का ये कार्यक्रम भूले बिसरे गीत साथियों अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 7:18 होने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अगला प्रसारण।

0: केवल भगवान से डरूं, मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की। सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने पर दिया जोर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों सहित गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान की भी चर्चा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री ने नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। कहा, आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण। और प्रदेश के स्थायी पुलिस महानिदेशक बने वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने

0: ने की अपील की। इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फाजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी

0: ये तो आमरस की जान है, उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है, इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के आकाश गुप्ता का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया है। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें।
0: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया, सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया, लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: आकाश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में नाम लिए जाने से और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिली है।
2: आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, नदी के पास जितने भी गांव हैं, हम चाहेंगे सब युवा हमसे जुड़े और इस काम को एक अभियान बनाएं, जिससे कि नदी पूरा साफ हो सके। क्योंकि हम 5 से 6 लोग 7 लोग नदी को पूरा साफ नहीं कर सकते जब तक कि सब लोग एक साथ ना जुड़े।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात कार्यक्रम में गंगा डॉल्फिन बचाओ और बस्ती के आकाश गुप्ता का उल्लेख किए जाने पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग ने कल गौतम बुद्ध नगर में एनटीपीसी लिमिटेड की अनुसंधान एवं विकास इकाई एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस का दौरा किया। उनके साथ म्यांमार का मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वह अपने सेवा प्रदाता के ऑन मार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक सुरक्षा विभाग को जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत, आधुनिक और सक्षम संस्था के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नागरिक सुरक्षा की भूमिका केवल युद्धकालीन परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव, जन जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण

0: भूमिका है। उन्होंने कहा है कि राहत एवं बचाव, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभाग की क्षमताओं को और मजबूत किया जाए, स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप किया जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: उधर उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स विभाग की एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्ड्स संगठन प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तथा जनसेवा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। बदलते समय और नई चुनौतियों के अनुरूप इस संगठन को अधिक सक्षम, प्रशिक्षित, तकनीकी रूप से दक्ष और आधुनिक बनाया जाना चाहिए। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का स्थायी पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। श्री राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्य कर रहे थे। संघ लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने श्री कृष्ण की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। वह जून 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग द्वारा कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई जिलों में तूफान, बारिश, ओले गिरने और बिजली गिरने की घटनाओं के पीड़ितों के त्वरित सहायता के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और नागरिकों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की। सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने पर दिया जोर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों सहित गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान की भी चर्चा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री ने नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। कहा, आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण। और प्रदेश के स्थायी पुलिस महानिदेशक बने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
1: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
0: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
1: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित हल्का व नियमित भोजन करें।
0: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहनें, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
1: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबरा हटाने पर डॉक्टर को दिखाएं।
0: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
1: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

श्रोता साथियों, आप सब कैसे हैं? बढ़िया हैं तो बढ़िया ही रहें, बस राजी खुशी रहें, स्वस्थ रहें और अपने जो है स्वास्थ्य को ध्यान रखें, है ना। और देखो, जीवन है तो जीवन उतार चढ़ाव आते रहें और मौसम भी जो है वामू उतार चढ़ाव तो आते रहे हैं। कभी जो है तापमान गिर जाए, कभी बढ़ जाए है। हर मौसम में देखो, अगर आनंद है तो कछु न कछु समस्याओं हैं, लेकिन सावधानी अगर हम रखें, है ना, बचाव रखें तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें तो हर मौसम को जो है आनंद दोगुना है जाए है। फिर चाहे फिर खाइबे पीबे की बात हो, पढ़वे या सुनबे की हो, देखवे की हो, घूमबे फिरवे की हो, है ना। और अब आनंद को देखो, सबको अपना अपनो वाय प्राप्त करवे को जो तरीको है वो अलग अलग होवे है ना, मार्ग अलग अलग होवे है। काऊ के काऊ में रुचि है, काऊ के काऊ में रुचि है, काऊ को तो खाइबे में रुचि है, काऊ घूमे में रुचि है, और काऊ लिखेवे में, पढ़वे में, और है ना सुनवे में, चाहे वो लोकगीत हों, गीत हों, है ना, काव्य कविताएँ हों, शेर व शायरी हों, गज़लें हों, कछु हो, चाहे शास्त्रीय संगीत हो, तो हर तरिया ते सबके जो है अलग अलग माध्यम होवे हैं आनंद प्राप्ति को। और वैसे अगर देखें तो हम सब अपने आनंद प्राप्ति के तो जो उद्देश्य है जीवन को बाकी तरफ जो है प्रयास करें हैं, है ना। हर कोई चाहे है कि जीवन जो खुशहाल रहे, आनंद में रहे, आनंद मानसिक जो हमारी खुराक है वो वास्तव ये बात जुड़ी भई है। अब आप बात समझ रहे होंगे, आज है सोमवार और कवि की अभी हमने बात करी है थी, कविता की बात करी है थी, है ना, तो शेर व शायरी हैं चाहे गज़लें हैं। अब जिनके लिखे वाले अलग अलग होवे हैं, है ना, लेकिन सबको रचना संसार तो रंगीलो ही होवे है, है ना। ख्वाबों ख्यालों के संग जो है, ऐसी बात नहीं कि केवल ख्वाबों ख्यालों में ही ये हमारे रचनाकार रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो रहे ही हैं, रंग

भरे हैं, लेकिन जीवन के यथार्थ से वे अपने वाते जुड़ी भूमिका को निभाए हैं अपनी कलम के माध्यम से। तो आज जो है हम आपके ताई कवि मुख सुक्रम में काव्य पाठ लेके आए हैं और आज के कवि हैं श्याम सुंदर अकिंचन। तो फिर आओ सुने काव्य पाठ और आनंद लें काव्य रस को।

बल खात मात रंभा को करत है। तो ढिंग ना है घर बारो परदेश में बिचारो करो होनो है गुजारो मारी मारी सी फिरत है। तो इत मौसम की मार सीरी सीरी चले ब्यार

जाएगो। अंतिम बंद है, तो दिन रात तू भमत अब दूर ना बखत, दिन रात तू भमत अब दूर ना बखत, चार दिन को जगत ढर जाए सब जानी है, तो करी तेरी नाए होई काहे माया बीच भोई, करी तेरी नाए होई काहे माया बीच भोई, संग देगो नाए कोई बनी माया की दीवानी है, तो जान मान फसी भोग अंत होए गो वियोग, जान मान फसी

मोकू अपने पास बुलाए ले, मित बनाए ले अपनो प्रियतम, मोकू अपने गले लगाए ले, मित बनाए ले अपनो प्रियतम।

अभी जो है आप सुन रहे हैं थे काव्य पाठ कवि मुख क्रम में, और आज के कवि है थे श्याम सुंदर शर्मा अकिंचन। कार्यक्रम में साथियों आओ आगे बढ़ें, तो फिर कछु लोकगीत सुन के आनंद ले लियो जाए, अपने दुगुना कर लियो जाए, है कि नहीं? तो फिर आओ सुने सबसे पहले जी लोकगीत।

तो अभी जो है आप सुन रहे थे राधिका गौड़ और सखियन की आवाज़ में इस लोकगीत को, और आज का ब्रजमाधुरी कार्यक्रम यहीं भी शामिल है। तो आप सबन को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8 बजने को है कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्य

0: सभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
1: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
4: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
2: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
1: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों, विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसुर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण

0: प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार, जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: साथियों, प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि फिल्म संगीत का, और आज ये कार्यक्रम साथियों हम डेडिकेट करते हैं प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर को। जी हाँ, सुमन कल्याणपुर जी, जिनका कि कल 31

जी हाँ साथियों, ये मधुर मीठी बहुत ही आकर्षक आवाज़ बेशक इस दुनिया से रुखसत हो गई हो, लेकिन उनके जो प्रशंसक हैं, उनके चाहने वाले उन्हें हमेशा याद करेंगे। साथियों, सुमन कल्याणपुर जी का उनका जन्म 28 जनवरी 1937 ढाका, जो कि अब बांग्लादेश में है, वहाँ हुआ था। ये भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। 1943 में इनका परिवार मुंबई आ गया। सेंट कोलंबा हाई स्कूल मुंबई में आपने शिक्षा ली, और इसके बाद चूंकि इनकी संगीत तो और चित्रकला दोनों में ही रुचि थी, तो चित्रकला पढ़ाई के लिए सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में उन्होंने प्रवेश लिया, और वहाँ से उन्होंने चित्रकला की पढ़ाई पूरी की। संगीत की शिक्षा की शुरुआत में उन्होंने पहले तो चूंकि रुचि थी तो शुरू में पंडित केशवराव भोले से प्राप्त की थी। विधिवत तरीके से उस्ताद अब्दुल रहमान खान गुरुजी मास्टर नवरंग से इन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। आपको हम बता दें, सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारे भजन भी आपको सुनने को मिलेंगे। इनकी जो बहन है श्यामा हेमा दी, वो भी एक गायिका हैं, और सुमन जी का विवाह 1958 में मुंबई के एक बिजनेसमैन रामानंद कल्याणपुर से हुआ। इनकी एक पुत्री भी हैं जो कि अमेरिका में रहती हैं।

साथियों, जब 1943 में इनका परिवार मुंबई आ गया तो उसके बाद फिर इनकी पढ़ाई लिखाई, संगीत की शिक्षा सब वहीं हुई संपन्न, विवाह भी हो गया। और आपको बता दें कि शुरुआत तो 1953 के आसपास इनकी फिल्म मंगूसी हुई, लेकिन ऐसा सुना जाता है कि दरवाजा फिल्म जो उसी दौरान बन रही थी उस वह पहले रिलीज हो गई, जिसका कि गीत इन्होंने तलत साहब के साथ गाया था। जहाँ तक हम बात करें संगीतकारों की, तो बुल्लो सी रानी से लेकर मदन मोहन, शंकर जय किशन, एस डी वर्मन, एन दत्ता, हेमंत दा, चित्रगुप्त, नौशाद साहब, एस एन त्रिपाठी, गुलाम मोहम्मद, कल्याण जी आनंद जी, वसंत देसाई, रविशंकर शर्मा, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, उषा खन्ना सहित सभी समकालीन संगीत निर्देशकों के साथ आपने गायकी का शानदार सफर को पार किया, यानी कि चलती रही, और उनका ये सुरीला सफर जारी रहा। आपको बता दें कि 1960 का दशक जो रहा वो रफ़ी साहब के साथ इनके लिए स्वर्णिम रहा। 140 से अधिक युगल गीत आपने रफ़ी साहब के साथ गाए। लता जी से इनकी आवाज़ इतनी मिलती है कि जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आप पानी में चीनी घोल दें और फिर उसमें से वो बारीकी का अंतर पकड़ पाएं, है ना, तो यह बहुत मुश्किल है। लेकिन इतनी दिलकश आवाज़, चूँकि दोनों की, वो सो साम्रागी और ये भी कम नहीं, और क्या कहने इनकी आवाज़ के, दिल छू लेती है। लेकिन आपको बता दें कि लता जी के साथ भी आपने गाना एक गाया युगल में, कभी आज कभी कल कभी परसों, ये गीत लगभग अपने समकालीन सभी गायकों के साथ भी सुमन जी ने गीत गाए। किशोर साहब, रफ़ी साहब, मन्ना डे, मुकेश, तलत महमूद, हेमंदा सहित अन्य भी सिंगर्स के साथ आपने गीत गाए। फिल्म शगुन का ये गीत जो हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत है, लिखा है साहिर साहब ने और खयाम साहब ने संगीत दिया था।

साथियों, आपको बता दें कि हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़ सहित कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी सुमन कल्याणपुर जी ने अपनी आवाज़ दी। 3,000 से भी अधिक गीत को उन्होंने स्वर दिया। और इसके अलावा जहाँ तक हम उनके प्रसिद्ध गीतों की बात करें जो का बहुत ही चर्चा में रहे, तो ब्रह्मचारी, आजकल ते मेरे प्यार के चर्चे, जब जब फूल खिले का ये गीत, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, और ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, बात एक रात की, फिल्म कुदरत का ये मौसम रंगीन समा। इसके अलावा साथी मेरे साथी, मियाँ बीवी राजी फिल्म का गीत छोड़ो छोड़ो मोरी बैया, क्षमा में दिल गम से जल रहा है, दिल ही तो है यूं ही दिल ने चाहा था, जानवर का मेरे संगा जिसका कि गीत अभी आपने सुना, शगुन का बुझा दिए हैं, और नूर महल का एक गीत बहुत ही चर्चित रहा, मेरे महबूब न जा आज की रात न जा, होने वाली है सहर थोड़ी देर और ठहर। एक साल पहले फिल्म का गीत, तुम अगर आ सको तो, और जिंदगी में डूब गई दर्द के तूफान में, नसीब फिल्म का गीत, जिंदगी इम्तिहान लेती है जो हम पे गुजरती है मोहब्बत, इसको कहते हैं फिल्म का ये गीत, नूर जहां का शराबी शराबी ये सावन का मौसम, और दिल एक मंदिर का जूही की कली मेरी लाडली। और इसके अलावा मराठी में भी रिमझिम झरते श्रवण धारा, शब्द शपथ शब्द जपुन ठेवा, जेठे सागर धरणी मिलाते, और कई अन्य भाषाओं में काफ़ी इनके गीत चर्चा में रहे। एक आपको बता दें, गीत बहुत ही प्रसिद्ध रहा, बहुत हर मतलब चाहे कहते हैं ना कि अगर भाई बहन का पर्व है, चाहे रक्षाबंधन हो या भाई दूज, और ये गीत सुनना सुनने की तमन्ना ना करे हम में से किसी एक को, तो ये हो ही नहीं सकता है। हर भाई बहन, हर श्रोता ये सुनना चाहता है, कौन सा, जो हम आपको सुनवाते हैं।

साथियों, इनका जो पहला गीत था दरवाजा फिल्म का गीत रिकॉर्ड हुआ था, युगल गीत था तलत साहब के साथ, जैसा कि हमने आपको बताया था शुरू में। तो तलत साहब, इसके पीछे बहुत अच्छा सा किस्सा है कि तलत साहब ने इन्हें एक संगीत कार्यक्रम में कल्याणपुर को गाते सुना, सुमन जी को, और इनकी गायकी से बहुत प्रभावित हुए। एक नवोदित कलाकार

के बावजूद उनके करियर को तब बहुत बड़ी सफलता मिली जब तलत साहब ने उनके साथ युगल गीत गाने के लिए हामी भरी, जिससे फिल्म जगत का ध्यान उनकी ओर आकर्षित भी हुआ। और आपको बता दें कि जहां तक हम आपको बताएं कि शास्त्रीय गायिका बहुत अच्छी थी। शास्त्रीय संगीत के आधार पर कुछ इनके यादगार गाने हैं, जिसमें कि मनमोहन, मन में हो तुम ही, मेरे संगा, गुनगुना, जो अभी हमने आपको सुनवाया भी था, और गिर गई रे मोरे माथे की बिंदिया। इसके अलावा दिल ने फिर याद किया का गीत बहुत ही जैसे कर्णप्रिय है, जिसे आज तक लोग याद करते हैं। और मुकेश जी के साथ अखियों का नूर है, मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, ये गीत काफ़ी चर्चा में रहा। और राजकुमार का गीत भला कौन भूल सकता है कि तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे, पहचान फिल्म के इस गीत को, ओहो बिल्कुल कितना दिलकश गीत है कि आया ना हमको प्यार जताना, प्यार का विश तुझे करते हैं। बहरहाल आपको बता दें, जहाँ तक हम भाई इतने सारे, इतना ऊंचा और इतना लंबा सफ़र रहा इनका, और फिर भी अब देखिए पुरस्कार 2023 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। 2009 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ गीत की प्रस्तुति के लिए सुर श्रृंगार संसद 3 बार से इन्हें नवाजा गया, पुरस्कृत किया गया। 2024 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भारत भूषण माता सम्मान पुरस्कार सहित कई अन्य राज्य स्तरीय पुरस्कारों से भी इन्हें नवाजा गया। एक बात और है साथियों कि 1950-60 के दशक का जो दशक था, यानी कि समय था, दौर था, हिंदी फिल्म संगीत का बहुत ही स्वर्णिम दौर था। और ऐसे में जहाँ की शमशाद बेगम, लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसी गायिकाएं थी, मतलब उनका वर्चस्व था, लेकिन ऐसे में सुमन कल्याणपुर के लिए यात्रा तो कोई, यानी कि सफ़र आसान तो ना था, लेकिन उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी प्रतिभा, जिसका कि वक्त ने उनको ये सम्मान दिलाया, पहचान दिलाई, और एक ऐसी शख्सियत जो सबके दिलों में छा गई अपने मधुर आवाज़ के साथ। आज बेशक वो हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी आवाज़ सदा सदा ही लोगों के दिल दिमाग में रहेगी, पीढ़ियाँ गुनगुनाएंगी उनके गीतों को। जैसा कि हमने आपसे भी जिक्र भी किया था कि हमारा जो त्यौहार है भाई बहन का, ये हर वर्ष आता है, और ये गीत तो फिर कम से कम ये गीत तो इसे तो कोई नहीं भुला सकता है ना। यूं तो आप समझ रहे हैं ना कि हम विशेष क्यों कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि ये गीत है ही इतना अच्छा। बहरहाल आइए सुन लेते हैं 2 लाइन जो इन्होंने अपनी पहली फिल्म के लिए ये आवाज़ दी थी।

जी हाँ साथियों, बेशक ये जस्मानी यात्रा यहाँ की ख़त्म हो चुकी हो, लेकिन अपने संगीत की सुरीली यात्रा के जरिए सुमन कल्याणपुर जी हमेशा हमेशा हमारे लबों पर, हमारे होठों पर, हमारे दिलों में सदा ही रहेंगी। संगीत का ये सितारा बेशक ये अस्त हो गया हो, लेकिन चमकेगा युगों युगों तक आसमान पर। और इसी के साथ ही हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

0: साथियों, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि, और आज का ये कार्यक्रम समर्पित था गायिका सुमन कल्याणपुर जी को। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है शालिनी शर्मा से ली गई ओपी सिंह की भेंट वार्ता। विषय है वृक्ष हमारे जीवन का आधार।
1: तो वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वृक्ष हमें भोजन देते हैं, पानी देते हैं, आवास देते हैं, जीवन जीने के लिए जो आवश्यक प्राण वायु है, ऑक्सीजन, वो हमें देते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा, प्रदूषण से मुक्ति और न जाने कितने ही ऐसे लाभ जो वृक्षों से हमें जीवन में मिलते हैं, और बदले में हमसे हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको वो शोषित करते हैं। सह अस्तित्व के साथ अगर हम रहते रहे तो वृक्षों से बड़ा जीवन में हमारा कोई मित्र हो नहीं सकता, या ये कहें कि वृक्षों के बिना हमारा जीवन का कोई आधार नहीं है। इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी शर्मा जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं माइक्रोबायोलॉजी में, BSc कॉलेज मथुरा में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस पर्यावरणीय कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद
1: जी। तो जो जीवन का आधार

0: हमारे वृक्ष हो सकते हैं,
1: जी
0: लाभ तो अनेक हैं। हाँ, मैंने भी कुछ गिनाए, आप भी बता सकती हैं, लेकिन इन सबको देखते लगता है कि जीवन का आधार तो है, क्या कहना
1: जीवन का
0: चाहेंगे?
1: मुख्य आधार आप सोचिए, जिससे हमारी सांसें चल रही हैं,
0: हाँ
1: वो ऑक्सीजन, यानी कि पृथ्वी का जो फेफड़े कहा जा सकता है उनको, वो वृक्ष हैं। तो सबसे पहला आधार तो यही हुआ कि हमारे जीवन को जीने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हमें वृक्षों से मिल रही है। और बाकी चीज़ें तो आप जानते ही हैं, वृक्ष हमें कितना कुछ देते हैं। जो भी चीज़ हमारे इस्तेमाल में आ रही है, पहले खाद्य पदार्थ जितने भी हैं जो हमारी
0: जी,
1: आवश्यकता है
0: भोजन
1: अपने
0: की।
1: जीवन को चलाने के लिए, वो हमें वृक्षों से मिल रहे हैं। और बाकी जितनी भी चीज़ें आप सुख सुविधा के साधन हैं वो, और वो सब हमें वृक्षों से ही प्राप्त होते हैं। तो ये वृक्ष तो जीवन आधार हैं ही।
0: वर्षा की बात हम करें, कई बार देखते हैं कि वर्षा नहीं हो रही, लेकिन जब रिसर्च होती है, फाइंडिंग्स आती हैं, लोग बताते हैं कि जहाँ जहाँ वृक्ष कम हुए वहाँ वहाँ वर्षाएं कम हो गई हैं।
1: जी
0: वर्षा की जो इंटेंसिटी हुआ करती थी, जो घनत्व हुआ करता था, जो लगातार धीरे धीरे वर्षाएं होती थी, अब या तो अतिवृष्टि में बदल गई है या तो सूखा पड़ने लगा है। यानी पानी तो पड़ता है, कई बार ज़्यादा भी पड़ता है, लेकिन एक ही दिन में पता लगा कि कहीं एक दिन में बरसात हुई तो इतनी आ गई कि बाढ़ हो गई, और कहीं का पानी कहीं चला गया तो कहीं सूखा पड़ गया। तो ये जो
1: जी
0: वर्षा का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी कम हो गया उसमें।
1: बिल्कुल, इसका वजह ये है कि अब आपको पता है कोई भी चीज़ आपके फायदेमंद है, आपको आपको फल दे रही है, फूल दे रही है, लकड़ी दे रही है,
0: हाँ
1: और दवाइयाँ दे रही है, वो सारी चीज़ें आपको वृक्षों से मिल रही हैं। तो वो क्या हुआ, लोगों ने उनका जो है अंधाधुंध दोहन करना शुरू किया पहले तो,
0: जी,
1: और उसके बाद जैसे ही विकास होना शुरू हुआ तो सबसे पहले लोगों ने उनको जंगलों को काटना शुरू कर दिया, ये बिना सोचे समझे कि जो ये चीज़ें हमें दे रहे हैं उससे क्या हुआ, वो जलवायु परिवर्तन हुआ और प्रदूषण बढ़ा। क्योंकि जो वृक्ष हैं हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और वृक्ष जो हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत मुख्य कारण है। तो वृक्ष पहले तो वही प्रदूषण कम करने में बहुत मुख्य योगदान दे रहे हैं, लेकिन जब आपने उनका कटान शुरू कर दिया सिर्फ विकास की अंधी दौड़ में, तो क्या हुआ कि आपने जो बताया कि वर्षा कभी हो रही है कभी नहीं
0: नहीं
1: हो
0: हो
1: रही है,
0: रही
1: कभी
0: है,
1: अतिवृष्टि है, कभी
0: प्रदूषण बढ़ गया।
1: प्रदूषण बढ़ गया, तो ये सारी समस्याएं इससे उपलब्ध होने लग गई, और इससे पृथ्वी जो है वो कष्ट में आ गई। अब जब पृथ्वी कष्ट में आएगी तो उसमें रहने वाले जीव जंतु है वो भी सब
0: नेचुरली
1: उनका
0: नेचुरली।
1: जीवन भी खतरे में हो जाएगा। तो वृक्ष जो है वो ये एक पारिस्थितिक तंत्र जो हमारा पृथ्वी का है उसका एक मुख्य कारण है। और उसमें उससे सब क्या, पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है, जैसे फूड चेन है, अब एक दूसरे का आहार है, अगर एक भी चीज उसमें से डिस्टर्ब हो जाती
0: डिस्टर्ब
1: है
0: होगी।
1: हाँ, तो
0: हाँ
1: पूरा जो है वो तंत्र बिगड़ जाता है, और जब तंत्र बिगड़ता है तो जो हमारे जीव जंतु हैं जो एक दूसरे के ऊपर, जैसे अब वृक्ष हैं, वृक्ष के ऊपर क्या है, पशु पक्षी अपना जो है घोंसला बना रहे हैं, वो उसके ऊपर रह रहे हैं, और बाकी आप वृक्ष से बाकी सामान भी ले रहे हैं, उनसे उनके नीचे भी रहने वाले बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं वो उन रह रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे, तो जैव विविधता भी नष्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो मतलब वृक्ष जो है एक मुख्य आधार है, उनसे
0: दोहा।
1: सब चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर एक चीज आपने वृक्ष को डिस्टर्ब कर दिया, काट दिया, तो कितनी चीजें जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो प्रकृति का जो में असंतुलन पैदा हो जाएगा। और मुख्य कारण तो आपको पता है, वर्षा को वृक्ष ही बुलाते हैं, और जो बाढ़ का पानी, जो पानी होता है उसका मिट्टी का कटाव रोकते हैं जिससे कि बाढ़ नहीं आए।
0: नहीं आएगी,
1: कोई भी चीज उठा लीजिए, सब चीज जो है वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए
0: मतलब
1: हैं।
0: आपका कहने का ये कि वृक्ष अगर नहीं है तो फिर जीवन की गतिविधियां अपने आप ही असामान्य हो जाएंगी, और असामान्य होंगी
1: असंतुलित हो
0: तो
1: जाएंगे हम।
0: असंतुलित होंगी, और फिर चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे प्रदूषण की समस्या हो, चाहे पर्यावरण बिगड़ने की समस्या हो, वो सब
1: जी
0: अपने आप में तंत्र बिखर जाएगा, और फिर उसमें हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। तो अब चीजें जो बिगड़ गई हैं, तो फिर क्या लगता है कि जब इतनी चर्चा के बाद कि फिर लौट के हमें वही आना पड़ेगा,
1: नहीं,
0: वृक्षों को ही हमें, अगर वृक्ष आधार है, उनके भी जीव बिना जीवन की संभावना नहीं है, तो फिर जीवन जीने के लिए वृक्षों का रोपण, वृक्षों का संरक्षण, वृक्षों
1: जी,
0: का संवर्धन
1: सबसे मुख्य कारण
0: वहीं
1: है,
0: से शुरुआत करनी
1: वहीं से
0: पड़ेगी।
1: शुरुआत हो चुकी है। 1950 में जो है वो वन महोत्सव की शुरुआत हुई।

0: थी,
1: जी
0: जिससे कि क्या होता था कि जो कटान हुआ तो उसका था कि वृक्षों को लगाया भी जाए,
1: हाँ
0: और उसके लिए एक सप्ताह उन्होंने निश्चित कर दिया कि आप 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक जो है वन महोत्सव मनाएंगे। और उतने बीच में, क्योंकि वो जो समय होता है ये
1: हाँ
0: जुलाई का जो समय होता है उस समय मानसून का समय होता है,
1: जी
0: आप उस समय जब वृक्षारोपण करेंगे और उसका पोषण करेंगे तो उस समय बहुत अच्छे से जो है वो रह पाएंगे
1: कम
0: पौधे।
1: एफर्ट्स में ही वृक्ष मतलब सर्वाइव
0: हाँ
1: कर सकते हैं उस मौसम
0: उस
1: में। जी
0: मौसम में जो है वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, तो वो सरकारें उसमें करती हैं। और इतने एक एक से लेकर सात जो एक सप्ताह दिया गया है उसमें जो है वो बहुत सारी शैक्षिक गतिविधियां भी होती हैं, गोष्ठियां होती हैं, जन जागरूकता के कार्यक्रम होते हैं, स्कूल के विद्यार्थियों को, कॉलेज के विद्यार्थियों को, सरकारी गैर सरकारी संगठनों में भी वृक्षारोपण को के लिए प्रेरित किया जाता है। इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं जिससे कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जा सके। देखिए, विकास को हम नहीं रोक सकते, विकास तो जरूरी है, अगर अगर
1: आवश्यक
0: आपने
1: है।
0: जो है आपको जीवन में आगे बढ़ना है, देश को तरक्की करनी है, तो विकास, लेकिन उस विकास के साथ साथ आपको अगर आप एक वृक्ष काटते हैं तो कम से कम 100 वृक्ष आप जरूर लगाएं। और मेरे को तो एक सुझाव भी आता है सरकार से मुझे कि आप जहां वृक्षों को आधार वाली बात कहते हैं, जैसे हमारे लिए आधार जरूरी है ना, तो ऐसे में चाहती हूँ कि सरकार को ये करना चाहिए कि एक व्यक्ति को एक वृक्ष लगा के उसका पोषण करने की अनिवार्यता कर देनी
1: जी
0: चाहिए,
1: जी जी जी
0: तो ये जो समस्या है ना वो खत्म हो जाएगी। हर व्यक्ति जब जो है वो अगर एक वृक्ष लगा रहा है चाहे वो, और उसका पोषण करने की जिम्मेदारी ले रहा है, इतना हर कोई कुछ कर सकता है, तो इसमें
1: अपने
0: देश में
1: आसपास जहां भी
0: जमीन,
1: आप हों।
0: सरकार भी जमीन देती है, पार्क हैं, मंदिर के पास आप लगा सकते हैं, किसी नदी के किनारे आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको जिम्मेदारी है कि उसको देखें कि वो सही से
1: मतलब
0: ग्रो कर रहा है कि नहीं कर
1: वो
0: रहा।
1: एक सप्ताह भर का वृक्षा वन महोत्सव ना रह जाए, वो जीवन महोत्सव बन जाए। जीवन में
0: जी
1: हम अगर वृक्ष लगा रहे हैं तो उनके संरक्षण की, उनके संवर्धन की, उसको बड़ा करने की। क्योंकि आज अगर हम जी रहे हैं, आज किसी लगे हुए पौधे का लाभ हम ले रहे हैं, तो किसी ने तो लगाया होगा,
0: बिल्कुल
1: तो किसी ने लगाया, बड़ा किया, तो उसका लाभ अगर हमें मिल रहा है, तो आगे आने वाली पीढ़ी और संतति के लिए एक जागरूक समाज और नागरिक होने के नाते हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है
0: बिल्कुल
1: कि
0: बनती है।
1: भाई वृक्ष लगाएं, उनको संरक्षित करें, उनका बड़ा बड़ा करें, और वृक्षों का चयन भी ऐसा करें जो हमारी जलवायु के अनुकूल हो, जहाँ हम रह रहे हैं
0: उसके
1: उसमें
0: अनुकूल
1: इमारती हो, कुछ उसमें फलदार हो, छायादार हो,
0: वो तो
1: तो वो
0: जहां
1: हमारी
0: जिस
1: जरूरतें भी पूरी करते
0: बिल्कुल जिस
1: रहे।
0: जगह पे आप रह रहे हैं उस जगह के हिसाब से जो पौधे जो वहां की जलवायु के अनुकूल होते हैं उसी तरीके के पौधे आप लगाएं, उनको उगाएं, जिससे कि वो अच्छे तरीके से उनकी वृद्धि हो सकेगी। और हम लोग सब क्या सोचते हैं कि जो चीज़ हमें निःशुल्क मिली हुई है उस पर हम ध्यान नहीं देते, जैसे ऑक्सीजन जो हमें निःशुल्क मिली हुई है, अगर हम उसको निःशुल्क ना माने और उसका हम शुल्क देना चाहें
1: जी जी जी
0: तो
1: जी
0: हम क्या कर सकते हैं, बस एक वृक्ष लगा सकते हैं जिससे कि जो हमें ऑक्सीजन मिल रही है हमने उसका शुल्क दे दिया,
1: जी जी जी
0: तो हमारी जो ये समस्या है वृक्षों से रिलेटेड वो खत्म हो जाएगी कि जो प्रदूषण हो रहा है जलवायु परिवर्तन से, दुनिया की चीजें हो रही हैं, ग्लोबल
1: मतलब
0: वार्मिंग हो रही
1: उसमें
0: है।
1: जैसे भारतीय संस्कृति की जब हम चर्चा करते हैं, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं की चर्चा करते हैं, तो उसमें जो प्रकृति के जितने भी अवयव हैं, चाहे पानी हो, चाहे पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, उन सब में जो पूज्यता का भाव हम देखते हैं, उसमें एक देवत्व का भाव देखते हैं, तो कालांतर में ये समस्या, जब हम उपभोगवादी हुए, विकासवादी हुए, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को उपभोग तक सीमित कर दिया और उसमें देवत्व की भावना कहीं ना कहीं हम छोड़ते चले गए और उससे अलग भी होते रहे। तो जब हम चीज़ को उपयोगी मानते हैं, उसमें प्रकृति की के और ईश्वर का निवास मानते हैं और जब पूजते हैं, तो फिर संरक्षण की भावना भी आती है। तो ये
0: बिल्कुल,
1: हमारी संस्कृति का
0: ये हमारी
1: एक,
0: संस्कृति में बहुत पहले लोगों ने समझ लिया था इन
1: हाँ
0: चीजों को कि जब ये धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगी तो ये जो
1: हाँ
0: वृक्ष है ना उनसे आप दोहन करेंगे,
1: जी जी
0: और आप दोहन करेंगे, कटान करेंगे, तो ये अगर आप उनको, क्योंकि इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको उनको पूजना है
1: हाँ
0: देवताओं की तरह,
1: जी
0: बल्कि
1: जी
0: एक अनपढ़ व्यक्ति भी जो है वो ये बता देता है कि एक छोटी सी बात कहकर के कि आप जो है वृक्षों को रात में सो जाते हैं
1: हाँ
0: कि इनमें भी जीवन है,
1: जी
0: ये सजीव है हमारी तरह, क्योंकि जब
1: बिल्कुल।
0: जैसे जैसे हम सोते हैं वैसे वृक्ष भी सोते हैं, तो आप उन्हें परेशान ना
1: और
0: करें।
1: इसीलिए जब गीता का जो हमारे उसका सबसे बड़ा परम ज्ञान है, गीता का ज्ञान कृष्ण दे रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि पीपल, अगर वृक्षों की बात करो तो मैं वहाँ पीपल हूँ, मनोकामना
0: हाँ
1: पूर्ति का साधन साधन अगर आप कल्प वृक्ष को मानते हो तो वो भी मेरा ही स्वरूप है।
0: बिल्कुल, वो तो यही कहते हैं कि 100 एक वृक्ष जो है वो आपके 10 पुत्रों के बराबर है। तो सोचिए आप, एक पुत्र का पोषण करने के लिए अपने

0: पूरी जिंदगी लगा देते हैं, तो आप वो सब 10 पुत्रों के बराबर है, तो आप उतना ही आप पोषण करें उतना ही उनको समय देंगे, क्यों? क्योंकि वो इतने महत्वपूर्ण है। ये वो बात समझाई गई, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं उन चीजों को कि ये जब समस्याएं पैदा हो रही है।
1: और जब हम लोक जीवन में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोकगीत हैं, लोक भजन है, जहाँ हम जब उनका गायन करते हैं, समूह में गायन करते हैं, तो उसमें होता है कि भाई आप कहते हैं गंगा जी में हम 5 पेड़ लगाएं,
0: जी
1: किसी पुण्य कार्य पे हम वृक्षारोपण कर रहे
0: वृक्षारोपण करें,
1: हैं
0: बिल्कुल
1: और उससे हमें मन की शांति मिलेगी, तन की शांति मिलेगी। तो इन सब के पीछे का भाव कहीं यही है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जीवन के आधार है, और इनको उपभोग तो हम करेंगे, उपयोग तो करेंगे, लेकिन उसका एक कहते हैं जुडिशियस, मतलब एक मतलब विवेकशील उसमें
0: जी
1: होना चाहिए,
0: जी
1: उसमें तो हमारे काम भी आए, लेकिन एक अगर ले रहे जैसा आपने कहा तो फिर हम दो लगाए भी, उसका
0: बिल्कुल,
1: बढ़ाए भी।
0: फिर तो बस आप अगर ले रहे हैं, क्योंकि वृक्ष है उसकी भी उम्र है, आयु है, पूरी होगी, तो उसकी जगह आप दूसरा लगाएं, आपको लगता है कि अब ये इसकी उम्र हो चुकी है तो आप दूसरा लगाएं।
1: नहीं चलेगा,
0: और आप
1: हाँ
0: ये मानिए कि ये जीवित है, सजीव है,
1: सजीव
0: तो
1: है
0: आप
1: ये।
0: एक मनुष्य की जैसे हत्या करते हैं उसी तरह आप पौधे की भी हत्या कर रहे हैं, तो उसको काटने से पहले इतना सोचें या
1: हाँ
0: फिर उसके बराबर कोई दूसरा लगाएं अगर आप अपने भोग में ले रहे हैं उसको।
1: जी। और आयुर्वेद में तो औषधि, जब उसका वो हम देखते हैं तो ये एक अच्छी औषधि के लिए पहले, लेने से पहले, चाहे फूल लें, चाहे पत्ती लें, चाहे शाखा लें, उससे निवेदन करते हैं कि
0: बिल्कुल, उनकी
1: हम
0: अनुमति लेनी पड़ती है
1: अनुमति
0: कि भी
1: लेनी
0: हम आपसे
1: पड़ती।
0: ले रहे हैं,
1: हाँ
0: तो तब
1: तो
0: आपको ज्यादा असर करेगी वो, क्योंकि आप
1: जी,
0: अनुमति लेने का भाव ही यही है कि आप जो है वो उनको
1: उसमें देवत्व और जीवन की संभावना
0: जीवन की
1: देख रहे हैं।
0: संभावना देख रहे हैं, तो उसी तरीके से
2: आप सुन रहे थे अभी ये कार्यक्रम भेंट वार्ता, वृक्ष हमारे जीवन का आधार। शालिनी शर्मा से बातचीत कर रहे थे ओपी सिंह। समय हो चुका है जिले की हलचल का, तो बस अब से कुछ ही देर में।
3: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चित्रकूट और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चित्रकूट जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अजय प्रताप सिंह का।
4: प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत जनपद चित्रकूट में आवासहीन एवं जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। मार्च 2026 तक जनपद के समस्त नगर निकायों से कुल 13,835 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 7,067 आवेदनों की जांच प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। जांच उपरांत 4,663 आवेदक आयोजना हेतु पात्र पाए गए। पात्र लाभार्थियों में से 3,547 आवेदकों का DPR तैयार कर मुख्यालय प्रेषित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा जनपद चित्रकूट में कुल 1,932 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें नगर पालिका परिषद चित्रकूट धामकर भी 935 आवास, नगर पंचायत राजापुर 553 आवास, नगर पंचायत मऊ 414 आवास, नगर पंचायत मानिकपुर 30 आवास शामिल हैं। स्वीकृत 1,932 आवासों में से 1,603 लाभार्थियों के खातों में प्रथम किस्त की धनराशि 1,00,000 प्रति लाभार्थी की दर से हस्तांतरित की जा चुकी है तथा लाभार्थियों द्वारा आवास निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1 के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत 7,911 आवासों में से 7,665 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। जनपद प्रशासन द्वारा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि जनपद में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को गर्मी से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं, साथ ही ORS, ग्लूकोज और जिंक टेबलेट का वितरण भी किया जा रहा है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आवश्यक दवाओं, ORS और ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। हीट वेव प्रभावित मरीजों के उपचार हेतु विशेष वार्ड भी आरक्षित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को हल्के और सूती कपड़े पहनाएं, पर्याप्त पानी पिलाएं और तेज धूप से बचाएं। जनपद वासियों से अपील की गई है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न निकलें, पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लेते रहें तथा सिर ढककर ही घर के बाहर जाएं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई हैं। भीषण गर्मी और बदलते मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को राहत देने और समय रहते अलर्ट करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जनपद में मौसम संबंधी रियल टाइम डाटा उपलब्ध कराने के लिए 6 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 6 ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इन स्टेशनों के जरिए तापमान, वर्षा और मौसम में होने वाले बदलावों की लगातार निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग का कहना है कि अब लोग घर बैठे मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उसी अनुसार बाहर निकलने या जरूरी कार्यों की योजना बना सकेंगे। यह व्यवस्था खासतौर पर भीषण गर्मी, लू और मौसम बदलने जैसी स्थितियों में काफी मददगार साबित होगी। जनपद में

0: नवीन मंडी और मंडी परिसर करवी मऊ राजापुर व मानिकपुर तहसील परिसर समेत विभिन्न स्थानों पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए गए हैं। वहीं खो पुलिस लाइन सीतापुर माफी पीजी कॉलेज पहाड़ी ब्लॉक और बड़गढ़ थाना सहित अन्य स्थानों पर ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित किए गए हैं। इनसे मिलने वाला रियल टाइम डाटा राहत आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन के पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। बुंदेलखंड में जल संकट और जल जीवन मिशन की पेयजल योजनाओं पर उठते सवालों के बीच सरकार ने निगरानी व्यवस्था को तकनीक से मजबूत कर दिया है। अब गाँव में रोज कितना पानी सप्लाई हुआ, कितनी जरूरत थी और वास्तविक आपूर्ति कितनी हुई, इसकी जानकारी आम जन जन प्रतिनिधि और अधिकारी भी ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके लिए जल जीवन मिशन का ऑटोमेशन पोर्टल शुरू किया गया है। जनपद की चांदी बांगर चिलौटा मुस्तकिल और रायपुरा ग्राम समूह पेयजल योजनाओं को आधुनिक ऑटोमेशन प्रणाली से जोड़ दिया गया है। इन योजनाओं के ओवरहेड टैंक पंपिंग स्टेशन अन्य महत्वपूर्ण उपकरण अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग से संचालित हो रहे हैं। इससे जल आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने के साथ जवाबदेही भी तय होगी। अब किसी गाँव में प्रतिदिन कितनी मात्रा में पानी पहुँचा, वहाँ अनुमानित जल मांग कितनी थी और उसके मुकाबले कितनी आपूर्ति दी गई, यह सब पोर्टल पर देखा जा सके। इसके अलावा ओवरहेड टैंक में पानी का स्तर, पंप संचालन की स्थिति और उपकरणों की कार्यशीलता जैसी तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण आशीष कुमार भारती ने बताया कि ओवर की ऑटोमेशन व्यवस्था लागू होने से योजनाओं की निगरानी अधिक प्रभावी हुई है। किसी भी गांव में जलापूर्ति कम होने, तकनीकी खराबी आने या संचालन में बाधा की स्थिति में तत्काल जानकारी मिल जाएगी। इससे संबंधित एजेंसियां तेजी से सुधारात्मक कार्रवाई कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में लंबे समय से पानी सप्लाई को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। कई गांवों में लोगों को यह पता नहीं चल पाता था कि पानी कम क्यों पहुंचा। अब पोर्टल के जरिए पूरी व्यवस्था सार्वजनिक होने पर ग्रामीण खुद भी निगरानी कर सकेंगे। जल जीवन मिशन का डाटा देखने के लिए jjm.up.gov.in पोर्टल खोलना होगा। इसके बाद ऑटोमेशन डिटेल फेज वन विकल्प चुने, फिर डिस्ट्रिक्ट स्कीम नेम में योजना का चयन करें। इसके बाद OSD और व्यू डाटा पर क्लिक करते हुए गांववार जलापूर्ति, पानी की मांग, सप्लाई की मात्रा, ओवरहेड टैंक में जल स्तर और पंप संचालन की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
1: अगर कोई विशेष कार्य हो ही आप इस समय बाहर निकले और जब भी खुले में निकले या कहीं भी जाए तो विशेषकर अपने साथ पानी की उचित व्यवस्था या इलेक्ट्रोलाइट या नींबू पानी इत्यादि इस तरीके का अपना इसका ध्यान जरूर रखें।
2: चित्रकूट जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज कुमार शर्मा का।
3: मैनपुरी जिले में मिशन समाधान अभियान चल रहा है। यह अभियान प्रत्येक गुरुवार को जिले की सभी तहसीलों में चलाया जाता है। इस अभियान में राजस्व विभाग के शासनादेश के निर्देशों के तहत राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमें गाँव में जाकर भूमि संबंधी विवादित मामलों का निपटारा करती है। विकास विभाग की टीम भी सहयोग के लिए गांव में तैनात रहती है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देशन में प्रत्येक गुरुवार को आयोजित होने वाले मिशन समाधान का असर अब धरातल पर दिखाई दे रहा है। विगत दो मिशन समाधान दिवसों में ग्राम सभा की सैकड़ों बीघा भूमि खाली कराई गई। मिशन समाधान में अधिकांश प्रकरण दोनों पक्षों की मौजूदगी में दोनों की सहमति के आधार पर निस्तारित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि मिशन समाधान का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों का स्थानीय स्तर पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में निस्तारण कराना है। मिशन समाधान में जो भी प्रकरण निस्तारित किए जाएं, उन प्रकरणों में दोनों पक्षों की उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित कराई जाए और कृत कार्रवाई पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर कराए जाएं। किसी प्रकार का पक्का निर्माण न हटाया जाए, उसे नियमानुसार ही हटाया जाए। स्पॉट मेमो पर दोनों पक्षों की नाप पर सहमति के हस्ताक्षर अवश्य कराए जाए। पट्टेदारों को कब्जा दिलाने पर दखलनामा अवश्य बनाया जाए। जन सुनवाई के प्रकरण जो मिशन समाधान में लगाए गए हैं, उनमें यदि कोई प्रकरण न्यायालय में संचालित हो तो उसी अनुसार निर्णय लिया जाए। जिन प्रकरणों में सुलह समझौता संभव न हो, उनमें विधिक प्रक्रिया के तहत अपेक्षित कार्रवाई की जाए। मैनपुरी जिले में पेट्रोलियम पदार्थों की नियमित आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन ने सघन निगरानी की व्यवस्था की है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारियों, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा है कि आम जन को समयबद्ध पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। सभी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी समय से हो, ताकि उन्हें एजेंसियों के गोदाम कार्यालय के बार बार चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही, अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई उपभोक्ता विशेष परिस्थिति में स्वयं गोदाम से गैस सिलेंडर प्राप्त करता है तो नियमानुसार होम डिलीवरी शुल्क वापस किया जाए। उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक शोषण न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। गैस कंपनियों के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है। जिस पर उन्होंने गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों, गैस एजेंसी स्वामियों को निर्देश दिए कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कमर्शियल गैस कनेक्शन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए तथा घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जाए। मैनपुरी में जनगणना का कार्य समयबद्ध हो, इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। जनगणना के कार्य में लगे प्रगणकों के कार्य की समीक्षा हो रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित

जनगणना 2027 का प्रथम चरण 22 मई 2026 से प्रारंभ हो चुका है, जिसके अंतर्गत मकानों का सूचीकरण कार्य कराया जा रहा है। मैनपुरी में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों का एडमिशन न करने पर बच्चे जिलाधिकारी की जन सुनवाई में एडमिशन को फरियाद लेकर पहुंचे। जिलाधिकारी ने बच्चों का स्कूल में प्रवेश न किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है और किसी भी परिस्थिति में बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद के प्रत्येक पात्र बच्चे को विद्यालय में प्रवेश मिले तथा उन्हें शासन द्वारा संचालित सभी शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विद्यालय पहुंचकर बच्चों का नामांकन कराया। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने 23 मई को टनिष्ठ हॉस्टल में आयोजित

0: पर्यटन एवं संस्कृत मंत्री जयवीर सिंह ने 23 मई को टनिष्ठ हॉस्टल में आयोजित जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि संबंधी विवादों का मौके पर जाकर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए और ऐसे मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि मिन जुमला नंबर से जुड़े मामलों में सभी खातेदारों की मौजूदगी में पैमाइश कराकर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी भूमि उपलब्ध कराई जाए। पर्यटन मंत्री ने कहा कि जनपद में भूमि विवादों के निस्तारण में तेजी आई है और राजस्व पुलिस विभाग संयुक्त रूप से बेहतर काम कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचे, साथ ही गर्मी के मौसम में विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, एंटी लार्वा छिड़काव और कूड़ा उठान जैसी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

जी हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ हवा के अंतर्गत। जानकारी विषय है शहरों में बढ़ता प्रदूषण और जानकारी दे रही हैं माया जैन।
1: आवरण अर्थात हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक, सामाजिक और भौतिक आवरण है वही पर्यावरण है। पर्यावरण किसी एक तंत्र का नहीं अपितु सामूहिक तंत्रों का नाम है। इसके अंतर्गत भूमि, मृदा, सूर्य का प्रकाश, वन एवं पेड़ पौधे और मानव सभी शामिल हैं। ये सब मिलकर ही पर्यावरण की संरचना करते हैं। पहले अधिकतर लोग गाँवों में निवास करते थे, शहरी क्षेत्रों में भी जनसंख्या पर नियंत्रण था, प्रत्येक कार्य सुचारू रूप से चल रहा था। परंतु दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ती जनसंख्या और मानव की बढ़ती लालसा ने आज हमारे इस पर्यावरण को छिन्न बिछिन्न करके हमारे सामने कई पर्यावरणीय संकट खड़े कर दिए हैं। ग्रामों का समुचित विकास न होने के कारण लोग रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए गांवों से शहरों की ओर पलायन करने में लगे हैं। शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती आबादी ने आवासीय भूमि की कमी के कारण ऊंची ऊंची इमारतों का मानव ने निर्माण करके शहरी क्षेत्र के वायुमंडल को भी प्रभावित किया है। इन ऊंची इमारतों की छतें, काली सड़कें ऊष्मा का अवशोषण करके जलवायु का तापमान में वृद्धि करती है। इस कारण आजकल कहीं प्रचंड आंधियां, तेज तूफान, अतिवृष्टि के कारण कई बार तो हमें बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ जाता है। मानव ने आवास एवं अपनी साज सज्जा के लालच के कारण पेड़ पौधों, वनों की निरंतर कटाई करके वायु प्रदूषण में और भी इजाफा किया है। तेज रफ्तार की चाहत एवं प्रतिस्पर्धा के कारण हर वक्त सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, कल कारखानों से निकला धुआं, चकाचौंध चमकती लाइटें, चारों तरफ शोरगुल, इन सब ने शहरी क्षेत्र के पर्यावरण को अत्यधिक विषैला बना दिया है। पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, किंतु पेड़ पौधों की कटाई ने हमारी प्राण वायु को जैसे समाप्तशाही कर दिया है और इस कारण हमें कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होना पड़ रहा है। हमारे पेयजल स्रोतों में कल कारखानों से निकला विषैला पानी, अपशिष्ट पदार्थों का मिश्रण, शहरी क्षेत्रों में नालियों के पानी एवं कूड़े कचरे के समुचित व्यवस्था न होने के कारण इन्हें हमारे पेयजल स्रोतों में आए दिन प्रवाहित करके आज भीषण पेयजल संकट मानव के सामने प्रस्तुत कर दिया है। शहरी क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों में पानी एवं शौचालय की सुविधा न होने के कारण लोग नदी के तटों पर मल मूत्र एवं कपड़े धोने का कार्य करके हमारे जलीय स्रोतों को तो प्रदूषित करते ही हैं, साथ ही इनसे फैली गंदगी के कारण बीमारियों में भी काफी इजाफा

हुआ है। हेजा, टाइफाइड, पीलिया, पीत ज्वर, चर्म रोग का कारण प्रदूषित जल एवं वातावरण ही है। ध्वनि प्रदूषण भी जनसंख्या वृद्धि में मानव के शौकिया मिजाज ने इस कदर बढ़ा दिया है कि आज मानव की श्रवण क्रिया तक प्रभावित होने लगी है। हमारी सरकार भी समय समय पर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। शहरी क्षेत्रों में निरंतर पेड़ पौधों की कटाई ने हमारे बहुत से पक्षी जो वायुमंडल को शुद्ध करने में सहायक थे उनकी प्रजातियां तक लुप्त सी हो गई है। अगर हम चाहते हैं हमारा पर्यावरणीय संतुलन बना रहे तो हमें सार्वजनिक संपत्ति को निजी संपत्ति मानकर इस्तेमाल करना होगा एवं जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना आवश्यक है।

0: आप अभी सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा के अंतर्गत माया जैन से जानकारी। विषय था शहरों में बढ़ता प्रदूषण। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण। आज इस कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं जितेंद्र सिंह।
1: ब्रज दर्पण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को जितेंद्र सिंह का नमस्कार।
0: संयोजक हैं ओपी सिंह।
1: शिक्षा, सूचना और मनोरंजन से भरपूर आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम कार्यक्रम की शुरुआत एक अच्छे विचार के साथ करते हैं, क्योंकि जब हम अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातों को, सकारात्मक विचारों को आत्मसात करते हैं, तो इसका हमारे न सिर्फ पूरे जीवन पर बल्कि इसका हमारे आचरण, हमारे व्यवहार पर भी बड़ा गहरा असर होता है। तो साथियों, आज का हमारा विचार है कि अपने आप को किसी से कम नहीं समझें। अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। किसी की सफलता या किसी की प्रतिभा देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम उनसे पीछे हैं, लेकिन सच ये है कि हर इंसान की अपनी अलग पहचान, उसकी अपनी एक अलग क्षमता या विशेषता होती है। जैसे कि एक मछली पेड़ पर चढ़ नहीं सकती, लेकिन वो पानी में अद्भुत तैर सकती है, पानी में अद्भुत करतब दिखा सकती है। उसी तरह हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में खास होता है। यदि हम केवल अपनी कमियों पर ध्यान देंगे तो अपनी खूबियों को कभी भी नहीं पहचान पाएंगे। याद रखिए, सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से मिलती है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने भी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास को कभी नहीं खोया। इसलिए आज ये संकल्प लें कि अपनी तुलना किसी और से नहीं बल्कि अपने कल से करेंगे। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर हम गर्व करेंगे और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप अपने आप में खास हैं, अपने आप में आप यूनिक हैं, अद्वितीय हैं। आपकी सोच, आपके सपने और आपकी क्षमताएं आपको खास बनाती हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझें।

0: श्रोताओं, मन में कुछ करने का जज्बा हो, आत्मविश्वास हो, दृढ़ संकल्प हो, तो कोई भी ऐसी बाधा, कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकें। आज हमारे कार्यक्रम में एक ऐसे ही खास मेहमान हमारे साथ हैं, एक ऐसे छात्र जिन्होंने दृष्टि बाधित होते हुए भी CBSE बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और 12th में 95% से भी अधिक अंकों से उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है। IIM रोहतक की भी परीक्षा उत्तीर्ण की है और UCL से भी जिन्हें ऑफर लेटर मिला है, उनका नाम है गगन सिंह राघव। तो ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि अगर हम एक बार लक्ष्य तय कर लेते हैं और उसको लेकर दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं तो ज़रूर हमको सफलता मिलेगी। आज हम उन्हीं की सफलता पर चर्चा करेंगे और उनसे उनके अनुभव को जानेंगे। तो गगन, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन।
1: धन्यवाद सर।
0: क्या कहेंगे आप अपने प्रदर्शन को लेकर? विशेष रूप से हम आपसे चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक तो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, दृष्टि बाधित हैं, और फिर भी आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है और अच्छे अंकों से बोर्ड परीक्षाएं उत्तीर्ण की है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं कहूँगा मेरा कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है इस एग्जाम के लिए। बस कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं कि आपके अंदर अनुशासन कितना है और कंसिस्टेंसी कितनी है। मैंने तो बस दो ही प्रिंसिपल्स फॉलो किए, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। बाकी का सहयोग मेरा स्कूल का रहा, श्री जी बाबा जैसे मथुरा जिले के प्रतिष्ठित विद्यालय की पूरी टीम का सहयोग रहा, जिसके सहयोग से मैंने क्लास 12th में 95.4% मार्क्स स्कोर किए सर। और फैमिली का भी कंट्रीब्यूशन रहा कि कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि हमें कुछ करना है, मींस ओनली स्टडी पर फोकस था और जो भी सपोर्ट रिक्वायर्ड थी और जितना फैमिली कर पाई, फैमिली ने भी अपना पूरा कॉर्पोरेशन शो किया सर।
0: ऐसी स्थिति में जहां अध्ययन सामग्री तक पहुंच थोड़ा सा मुश्किल होती है, तो कैसे आपने अपनी पढ़ाई जारी रखी और किन माध्यमों का आपको सहयोग मिला?
1: सर संघर्ष तो है क्योंकि सामग्री अवेलेबल तो है नहीं क्लास 12th के लिए, ना ही कोई मेरे पास ब्रेल बुक्स थी और ना ही कोई ऐसी डिजिटल तकनीक थी जिससे कि मैं अपने टेस्ट को ब्रेल में कन्वर्ट करके पढ़ सकता था। लेकिन ऑडियो लर्निंग और मेरे सिबलिंग्स के सपोर्ट

0: सपोर्ट से मैंने जो बुक्स को रीड कराया, और टीचर्स के सपोर्ट से, जो टीचर्स बोर्ड पर लिखते उसके मैं ऑडियो नोट्स बनाता था, और मेरे मोबाइल ने और यूट्यूब क्लासेस ने भी इसमें काफ़ी कॉरपोरेशन मेरा शो किया, कि जिससे कि मैंने एक अच्छी पढ़ाई की मेनली ऑडियो लर्निंग पर।
1: परीक्षा देने का माध्यम क्या था?
0: सर, परीक्षाएं एक राइटर के माध्यम से दिलवाई गई। जैसे मैंने क्लास 12th की एग्जाम दिया, तो क्लास 11th का एक राइटर मुझे अवेलेबल कराया गया। सीबीएसई ने एक प्राइवेट स्पेसिंग, मतलब एक पर्सनल रूम दिया था, और एक अपना इन्विजिलेटर, कि जिससे कि कोई चीटिंग का भी पॉसिबिलिटी ना हो। और वो क्वेश्चन राइटर पढ़ता था, मैं आंसर बताता था, और उसने आंसर कॉपी में एज इट इज राइट किए जो मैंने बोले।
1: अपनी दिनचर्या के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह की आपकी दिनचर्या रही, ताकि ऐसे छात्र भी जाने कि एक विशेष प्रदर्शन करने के लिए हमको किस तरह से अनुशासित होना होगा, क्या करना होगा।
0: सर, मेरी लगभग 10 से 12 घंटे पर डे की स्टडी थी, जिसमें कि एक टाइम फिक्स था मेरा सोने का, जगने का। और स्टडी में मॉर्निंग शेड्यूल, मतलब अगर 6 बजे जगने के बाद 7 बजे से 11 बजे तक एक स्टडी सेशन, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक, 12 बजे के बाद फिर एक स्टडी सेशन 3 से 4 बजे तक, फिर एक ब्रेक, और फिर एक इवनिंग में स्टडी सेशन 7 से 8 बजे तक। इसके बाद आप चाहें रिवीजन कर सकते हैं, अपने आप को फिजिकली एक्टिव कर सकते हैं। मतलब मेरा था कि 3 सेशन लेने हैं ब्रेक के दौरान, जिससे कि दिमाग भी ज्यादा थके ना, और इन्फॉर्मेशन हम जितनी पढ़ रहे हैं उतनी ऑब्जर्व हो पाए।
1: अपने प्रदर्शन को लेकर क्या बताना चाहेंगे? बोर्ड परीक्षाओं में कितने प्रतिशत अंक आपने अर्जित किए?
0: सर, क्लास 10th में मेरे 91.2% थे, क्लास 12th में थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। और जो मेरा बोर्ड में रिजल्ट रहा, उसके लिए ऑडियो लर्निंग, और क्लास 10th में तो सर ब्रेल बुक्स थी, लेकिन हाँ, डिजिटल डिवाइसेस की कमी शुरू से रही। अगर डिजिटल डिवाइसेस होते, जैसे फिर मुझे सैम्पल पेपर पढ़ने हैं, सैम्पल पेपर्स को भी मैं आसानी से पढ़ सकता था, मुझे पी वाई क्यू करने हैं, पी वाई क्यू को आसानी से कर सकता था, रेफरेंस बुक पढ़नी है उन्हें भी आसानी से पढ़ सकता था, लेकिन अब मैं उन सभी रिसोर्सेस तक नहीं पहुंच पाया। अगर उन तक पहुंच जाता तो हाँ, जितना मेरा आज स्कोर है उससे भी ज्यादा होता, कई परसेंट ज्यादा होता, क्योंकि पूरा एडवांटेज में ले सकता था, जितना मुझे पढ़ना है उतना पढ़ सकता था। अब सिर्फ मुझे एक माध्यम मिला, वो था ऑडियो लर्निंग। ऑडियो लर्निंग के अलावा दूसरा कोई खास माध्यम में नहीं उठा पाया जिसका लाभ।
1: इसको लेकर और क्या सुधार की आवश्यकता है, जिससे कि अन्य जो छात्र हैं उनके लिए जो अध्ययन है वो आगे और भी अधिक सरल और सुगम हो सके।
0: सर, मेरा ऐसा मानना है कि एजुकेशन का एक्सेस लोगों को उनकी गरीबी अमीरी के आधार पर ना मिलना चाहिए। एजुकेशन, जैसे हमारा भारतीय संविधान शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में देता है, उसका पूर्णतः पालन किया जाए, जिसके लिए जितने भी छात्र हैं विजुअली इम्पेयर्ड हों, किसी और डिसेबिलिटी से जूझ रहे हों, उन्हें सरकार अवेलेबल बुक्स की रिक्वायरमेंट पूरी करे, जितनी बुक्स रिक्वायर्ड हैं उन्हें अवेलेबल कराए, डिवाइसेस जितने रिक्वायर्ड हैं, जैसे फिगर्स वगैरह के लिए ग्राफिटी डिवाइस है, रेफरेंस बुक्स के लिए ब्रेल प्रिंटर्स हैं, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हर जिले में हाँ ये सेंटर है, इस पर आपको बुक्स मिल जाएंगी, प्रिंट कोई बुक करानी है आपको इस सेंटर में प्रिंट करा सकते हैं, डिवाइसेस हर विद्यालय में अवेलेबल हो जाएं, या ब्लॉक में एक विद्यालय में अवेलेबल हो जाएं, इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि हर छात्र को शिक्षा का अधिकार मिले।
1: आपका जो मनपसंद विषय है वो कौन सा है? सबसे ज्यादा किस विषय में आपकी रुचि है?
0: सर, सबसे ज्यादा रुचि है मेरी बिजनेस के अंदर, क्योंकि बिजनेस से मेरा ऐसा मानना है कि आपको अगर समाज का डेवलपमेंट करना है तो आप बिजनेस के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बिजनेस से आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि एक वर्ग से आप पैसा लेकर दूसरे वर्ग को दे सकते हैं, ये एक ऐसा फॉर्मेट है। बिजनेस में इसलिए नहीं पसंद करता हूं कि बिजनेस से पैसा कमाओ, ग्लैमर में जियो, नहीं, बल्कि बिजनेस से आप प्रोडक्ट सेल करें, अपनी कंपनीज को डेवलप करें और चैरिटी करें। मेरे आइडल हैं इसमें सर रतन टाटा।
1: आपको जो UCL से भी ऑफर लेटर मिला है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे?
0: UCL से सर मुझे ऑफर लेटर मिला है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, जिसकी QS वर्ल्ड रैंकिंग 9th है। UCL में पढ़ाई करने का मुझे मौका मिले तो मैं अपने भारत माता के लिए एक अच्छी सेवा कर पाऊंगा, अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे जितनी चीजें चाहिए, दृष्टिबाधित होने की कमजोरी मुझे कमजोरी नहीं लगेगी, क्योंकि क्योंकि यूसीएल के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मैं जितना पढ़ना चाहूं, जो सीखना चाहूं, वो आसानी से सीख सकता हूं और उसे फिर आगे जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकता हूं। लेकिन

0: यूसीएल की फीस काफी अधिक है, 75 लाख रुपया प्रति वर्ष है और कोर्स 4 साल का है, तो इस फीस को अफोर्ड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, कोई एनजीओ, गवर्नमेंट, कोई चैरिटी, एनी कंट्रीब्यूशन क्राउड फंडिंग के माध्यम से अगर मुझे होता है तो फिर यूसीएल से बेहतर कोई प्लेस नहीं है अभी।
1: हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, क्या अपनी बात को उन तक पहुंचाने का अभी तक आपने कोई प्रयास किया है?
0: सर, मैंने पीएमओ में बाई हैंड लेटर दिया था, मेल किया है, सीएमओ के अंदर भी मैंने मेल किया, स्पीड पोस्ट की, और सर जो भी एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर मैंने बाई हैंड लेटर दिया, ईमेल किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर से भी मैं इस मैटर में मिला, लेकिन अभी तक सर कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट अगर मेरी बातों को सुन रही है तो प्लीज थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन शो करें जिससे कि मैं अपना विकास करके भारत माता की सेवा कर सकूं। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि पढ़ाई करके लंदन में रहना है या एक ग्लैमर लाइफ जीनी है, मैं तो बस इंस्पिरेशन बनना चाहता हूं सोसाइटी के लिए।
1: आपने अभी जो IIM की जो परीक्षा भी उत्तीर्ण की है उसको लेकर कुछ बताना चाहेंगे?
0: IIM रोहतक का सर पेपर था, तो मैंने पेपर दिया था IIM रोहतक का, उसमें सिलेक्शन हो गया है, उसका इंटरव्यू है, लेकिन IIM रोहतक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी डेवलपिंग फेज में है। डिसेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं है जितनी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की तरफ से मिल सकती है डिसेबिलिटी के रूप में। वैसे 12th से सब्जेक्ट अलग होते हैं क्योंकि मेरे पास कॉमर्स थी, मैथमेटिक्स नहीं था, मैथमेटिक्स अलग से पढ़ना पड़ा, रीजनिंग अलग से पढ़नी पड़ी थी,
1: जी,
0: इंग्लिश तो कॉमन होती है, तो उसके लिए भी सर एक अच्छी स्टडी की रिक्वायरमेंट तो है ही, क्योंकि लोगों का ड्रीम IIM रोहतक भी है बहुत सारा।
1: आपने बताया कि UCL से जो ऑफर लेटर आया हुआ है और इसके लिए आपने सरकार से मदद मांगने के प्रयास भी किए हैं, अगर ये संभव नहीं हो पाता है तो आगे आपका सफर क्या रहेगा? भविष्य के लिए कुछ अपनी कार्य योजना बनाई हुई है?
0: सर अगर ये संभव नहीं होता है तो फिर किसी इंडिया के इंस्टीट्यूट में तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास कोई चीज नहीं है तो जो है उसी के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बट हाँ, फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं भविष्य में इन्हीं यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर सकूं जिससे कि मैं बस उन चीजों को सीख सकूं जो मुझे यहाँ सीखने में कठिनाई होगी। मुझे अपनी पढ़ाई को बस उस स्तर पर करना है कि मैं नॉर्मल लोगों के साथ कॉम्पीट कर सकूं
1: जी,
0: जिससे कि मुझे भविष्य में देश की सेवा करने में कोई प्रॉब्लम ना आए।
1: UPSC वगैरह के बारे में भी कुछ आपने सोचा है क्या? उस दिशा में भी जाना चाहेंगे?
0: सर हाँ, यूपीएससी के बारे में मैंने सोचा है कि यूपीएससी में मैं प्रयास करूंगा और यूपीएससी में अगर मौका मिला तो देश की सेवा करने की पूरी कोशिश करूंगा सर।
1: हर किसी छात्र की कोई ना कोई एक हॉबी रहती है, आप अपनी कुछ हॉबी के बारे में बताना चाहेंगे?
0: सर मेरी हॉबीज हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन सोसाइटी, इंडियन क्राइम एंड जियोपॉलिटिक्स। इन टॉपिक्स पर सर मैं एक अच्छा इंटरेस्ट रखता हूँ, जैसे इंडियन क्राइम में क्या चल रहा है, वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर क्या है, और भी क्राइम किस स्केल पर पहुँचा, हम इस क्राइम को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन भविष्य में क्या हो सकता है, सरकारें कौन से स्टेप ले सकती हैं पर नहीं लेना चाहती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिसीज में भारत का क्या स्थान है, भारत को कैसे सुधारा जा सकता है, जियोपॉलिटिक्स में अभी हमारा देशों के साथ क्या रिलेशन चल रहा है, इस पर भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, जनता की जेब पर इसका क्या अफेक्ट होगा अल्टीमेटली, यही सब मेरे सर टॉपिक हैं।
1: आपके जैसे और भी अन्य छात्र हैं, कोई ना कोई उनके अंदर अक्षमता है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे?
0: सर इम्पेयरमेंट को अगर आप ये सोच लें कि ये मेरा इम्पेयरमेंट है, मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आपकी सोसाइटी आपको हमेशा दबाने की कोशिश करेगी। मैं सभी लोगों को नहीं कहूंगा, ह्यूमैनिटी भी है, मुझे भी ह्यूमैनिटी का सहयोग मिला, लेकिन आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको कमजोर बनाएंगे ना कि ताकतवर, तो आप उन सभी लोगों को नजरअंदाज करें और अपनी कमजोरी को पहचाने के मैं कमजोर क्यों हूं, जैसे मैंने देखा कि मैं कमजोर क्यों हूं, तो उसके बाद फिर आप दो प्रिंसिपल सीखें लाइफ में, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। एजुकेशन पर पूरा फोकस करें भले ही रिसोर्स ना मिले, आज तो ऑडियो लर्निंग पॉसिबल है, ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल करो बस आगे बढ़ो, जब अच्छा अचीवमेंट होगा तो चीजें अपने आप मिलती चली जाएंगी। जैसे एक फेमस कहावत भी है कि मैं निकला तो अकेला मंजिल की तलाश में था, लेकिन लोग मिलते गए और कारमा बनता गया, तो आप बस अपनी मंजिल की तलाश करते रहिए, लोग मिलते जाएंगे और कारमा बनता जाएगा।
1: अगर आपको हमारे दे अगर आपको जो शिक्षा मंत्री

0: हैं या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री या हमारे प्रधानमंत्री जी सुन रहे हों, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: सर, मैं मैसेज देना चाहूंगा कि जो देश का सबसे मुख्य पहलू है वो है एजुकेशन। मैं हेल्थ से भी ऊपर एजुकेशन को रखता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ऊपर एजुकेशन को रखता हूँ। और शिक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, बस ये प्रयास करें कि एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सबसे ज़्यादा मजबूत हो। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हर छात्र को शिक्षा का अधिकार जमीनी स्तर पर मिलना चाहिए। ऐसा शिक्षा का अधिकार कि उसे ये महसूस ना हो कि मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ। मैं ऐसे देश की कल्पना करता हूँ।
0: हम भी ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जो आपने लक्ष्य तय किया है, आप अपने लक्ष्य तक पहुँचें। आपने जो सरकार से मदद मांगी है, वो मदद भी आपको जरूर मिले। इसी के साथ क्या कहेंगे हमारे सभी श्रोताओं से?
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपने अपने इस चैनल में मुझे इनवाइट किया और एक इंटरव्यू लिया जिससे कि कुछ लोगों तक मेरी बात पहुंच पाए। और मैं सभी श्रोताओं से कहूंगा कि आप बस जीवन में एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल बना लीजिए, चाहे आपकी कोई कमजोरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि डिसेबिलिटी कमजोरी है, किसी की आर्थिक प्रॉब्लम भी कमजोरी होती है कि पैसा नहीं है भोजन के लिए, पढ़ाई कहाँ से करें। तो हाँ, सभी प्रकार की कमजोरी होती हैं, उन कमजोरियों को नजरअंदाज करते हुए अगर अनुशासन बना लें, और मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो उसमें अनुशासन बना लें और उसमें आप सबसे ऊपर चले जाएं। बस अनुशासन से आप सबसे ऊपर जा सकते हैं तो आप सफल हैं। जरूरी थोड़ी है कि आपको शिक्षा में ही सफल बनना है, किसी भी क्षेत्र में सफल बना जा सकता है। अनुशासन और कंसिस्टेंसी, दो प्रिंसिपल्स आप हमेशा फॉलो करें, तो मैं मानूंगा कि आपने इस साक्षात्कार को सफल बनाया। अगर आप,
0: आपने हमारे श्रोताओं तक अपनी बात को पहुंचाया, इसके लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।

श्रोताओं, जैसा कि आज से जून का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में गर्मी का मौसम अपने चरम पर रहता है, गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं। ऐसे मौसम में जो लू का खतरा है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और लू एक ऐसी स्थिति है जो शरीर के अत्यधिक गर्म हो जाने पर होती है। इससे चक्कर आना, सिर दर्द, कमजोरी, तेज बुखार और बेहोशी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो लू से बचाव रखने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दिन में 12 बजे से 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें। यदि बाहर जाना जरूरी हो तो सिर पर टोपी, गमछा या छाता ज़रूर हो, जिससे कि आप धूप से बचें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, हल्का और ताज़ा भोजन करें। मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी का सेवन करें, और बासी भोजन का सेवन करने से बचें। और इसको लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी विशेष रूप से मन की बात कार्यक्रम के 134वें एपिसोड में आम जनमानस से लू से बचाव की बात करते हुए ये कहा है कि हमारे देश में गर्मी से लड़ने का उपाय अक्सर हमारे रसोई घर में ही मिल जाता है। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, लोगों की रसोई और खान पान की शैली भी बदल जाती है। कहीं मिट्टी के घड़ों में पानी रखा जाता है, कहीं दही जमाया जाता है और कहीं कच्चे आम से बने हुए पेय बनाए जाते हैं। गर्मी और लू से बचने के लिए हमारे जो पारंपरिक पेय पदार्थ हैं, जैसे कि आम का पना है, सत्तू है, शरबत है, शिकंजी है और इस तरह के और भी अन्य पेय पदार्थ हैं, उनका सेवन करें। उन्होंने विभिन्न राज्यों के पारंपरिक पेयों का उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तर भारत का आम का पना कच्चे आम का स्वाद देता है और गर्मी से भी राहत पहुंचाता है। पंजाब और हरियाणा की लस्सी, राजस्थान और गुजरात की छाछ, बिहार, झारखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सत्तू शरबत, जो पेट भरने के साथ साथ ऊर्जा भी देता है, कोंकण और गोवा का कोकम शरबत और सोल कढ़ी, दक्षिण भारत का पनकम, नीरमोर और सांभरम, ओडिशा का बेल पन्ना, जिसे हमारे यहाँ बेल का फल कहा जाता है, बेल पत्र का शरबत, जो बाजारों में भी मिलता है और अक्सर हम लोग अपने घर में भी बनाते हैं। ये सिर्फ पेय पदार्थ नहीं है बल्कि भारत की अलग अलग संस्कृतियों की परंपराओं का हिस्सा है। इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाएं भी दिखाई देती हैं। और आगे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन अधिकांश पेयों की शुरुआत हमारे घरों और खेतों से हुई है, इनमें कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है बल्कि पीढ़ियों का अनुभव, पारंपरिक ज्ञान समाया हुआ है। उन्होंने लोगों को गर्मियों में ऐसे पारंपरिक पेय पदार्थों का आनंद लेने की सलाह दी है और ये हमें गर्मी और लू से बचाते हैं और हमारे अंदर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ाते हैं। और इसी के साथ अब हम आज की कुछ खास खबरों को लेकर बात कर लेते हैं। अधिक मास में बीते दो दिन से वृंदावन, गोवर्धन और बरसाना में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा तंत्र मजबूत करने के लिए रविवार को डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने आकस्मिक बैठक बुलाई। उन्होंने स्वास्थ्य, यातायात, सुरक्षा प्रबंध और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं पर जोर दिया। साथ ही अधीनस्थों ने रात में अपने अपने क्षेत्रों में निरीक्षण करने के लिए कहा है। और आंधी बारिश से ध्वस्त बिजली व्यवस्थाओं पर डीएम चंद्रप्रकाश सिंह, विद्युत निगम के अधिकारियों को फॉल्ट ठीक करने, परिक्रमा मार्ग

0: पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उनसे कहा है और मजिस्ट्रेटों को पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देने के लिए निर्देश दिए हैं। इसी के साथ एक और खबर है, जिले की बिगड़ती बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने कार्य योजना तैयार की है। करीब 3.46 करोड़ रुपए की लागत से जिले में नई 11 KV विद्युत लाइन बिछाई जाएगी। और अब बात कर लेते हैं आज के दिन विशेष की। तो आज की तिथि 1 जून इतिहास के झरोकों से ये कहती है कि आज ही के दिन सन 1874 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। और आज ही के दिन सन 1930 में भारत की पहली डीलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन को मुंबई और पुणे के बीच शुरू किया गया। और आज ही के दिन सन 1974 में ब्रिटेन में पहली बार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध लगाया गया। और आज ही के दिन सन 1996 में HT देवगौड़ा ने भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। अगले कार्यक्रम में हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई जानकारी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण, प्रस्तुति जितेंद्र सिंह की, संयोजक OP सिंह थे। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT एवं CIT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूल

0: फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
0: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
1: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुंचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
0: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओ, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
0: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
0: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
1: जी,
2: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
1: जी।
2: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
1: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समतामूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
2: इसको हम समतामूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
1: जी,
2: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समतामूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
1: जी।
2: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
1: जी।
2: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं, ठीक है
1: जी।
2: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
1: जी।
2: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
1: जी,
2: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
1: जी।
2: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं?

0: सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं,
1: जी
0: तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं।
1: जी आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा में क्या अंतर है। आप थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
0: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं।
1: जी
0: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी।
1: जी
0: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी,
1: जी
0: शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ।
1: जी
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि
1: जी
0: एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया है।
1: जी
0: ठीक है, इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से
1: जी
0: जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं।
1: जी
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है।
1: जी
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको
1: जी
0: अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स।
1: ओके
0: तो इसमें पांच उपसमूह आते हैं।
1: जी
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं
1: जी
0: और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं।
1: जी
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है, या
1: जी
0: ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है,
1: जी
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है।
1: जी
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है।
1: जी
0: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं।
1: जी
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी

0: ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा
1: जी
0: आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है,
1: जी
0: ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है।
1: जी
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं।
1: जी
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है, और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में।
1: जी
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया, और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो,
1: जी
0: दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी, आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं,
1: जी
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते हैं।
1: जी
0: जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप
1: जी
0: चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोलें क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं
1: नहीं
0: समझ
1: सुनेगा
0: पाएगा, लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी,
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना
1: बिल्कुल
0: कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की।
1: जी
0: आप सोचिए, आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है।
1: जी
0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते,
1: जी
0: अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा।
1: जी
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा,
1: जी
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है।
1: जी
0: दोनों भाषाओं में अंतर है, और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल
1: इस्तेमाल करते
0: करते हैं।
1: हैं।
0: तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है, और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की
1: जी
0: भाषा
1: जी
0: में,
1: जी
0: मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से, उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत।
1: जी
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में,
1: जी
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ? उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं।
1: जी
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी कि किसी और मौखिक भाषा में है।
1: जी ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी
0: जी
1: और समावेशी शिक्षा के बारे में
0: जी
1: जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या-क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं,
1: जी
0: जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो
1: जी
0: हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं,
1: जी
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
1: जी
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ की साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है,
1: जी
0: ताकि कोई भी छात्र, चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख
1: जी
0: सके। इसके अलावा CIT NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है,
1: जी
0: जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
1: जी
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र

0: हर डीटीएच चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं, इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्यपुस्तक और एक पाठ लेकर के
1: जी
0: हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज।
1: जी
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं,
1: जी
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये
1: जी
0: प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है, ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें।
1: जी
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो,
1: जी
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो,
1: रैंप होना
0: व्हीलचेयर
1: चाहिए।
0: आसानी से पहुंच जाए।
1: जी
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है, उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो।
1: जी
0: आपकी विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा।
1: जी जी
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
1: बिल्कुल
0: पीली टाइलें कैसी हैं, उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं,
1: जी
0: उनके उभारों को महसूस कर
1: बिल्कुल
0: सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं।
1: जी
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें।
1: जी
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं।
1: जी
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी सीआईटी एनसीईआरटी की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना,
1: जी
0: जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है
1: जी
0: जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है।
1: जी
0: तो ये भी एक हमारी पहल है।
1: जी प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि एनसीईआरटी की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से सीआईईटी के वेब पेज से
1: जी
0: मिल सकती हैं। आप सीआईईटी के वेब पेज पे जाइए, वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी।
1: जी
0: और एक और सरल उपाय है,
1: जी
0: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है,
1: बिल्कुल
0: गूगल पर
1: बिल्कुल
0: जाइए, लिखिए ऑडियो बुक सीआईईटी एनसीईआरटी,
1: जी
0: आपको सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा
1: जी
0: और आप वहां से ले सकते हैं।
1: जी
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध हैं और सीआईटी वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं।
1: जी
0: और यह किताबें आपको एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को सीआईटी की वेबसाइट से, एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब से और
1: जी
0: साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में एनसीईआरटी की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं,
1: जी
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
1: जी
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं,
1: जी
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
1: जी
0: है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और जब आप पाठ्य पुस्तक

0: से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं। जी, ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है।
1: जी बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000

0: बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चे को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है, बहुत सरल से शब्दों में, कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी। मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके। यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा। जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं, तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आपने सुना अभी, सुमन कल्याणपुर अनवर डॉक्टर महेश के आवाज़ों में फिल्म नसीब का ये गीत, गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आपने सुना अभी अलका याग्निक विनोद राठौर की आवाज़ में फिल्म जीत का ये गीत। गीतकार थे समीर और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। और अब ये कार्यक्रम की अगली पेशकश।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में फिल्म चेहरे पे चेहरा का ये गीत। लिखा था जनाब शायर साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया था एन दत्ता ने। अब ये कार्यक्रम का अगला गीत।

साथियों, अभी आपने सुना गुलजार के लिखे इन शब्दों को आवाज़ें दी थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार ने, और धुन से तैयार किया था इस गीत को संगीतकार खयाम साहब ने। आप इस वक्त आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, और अब आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

आशा भोसले लता मंगेशकर की आवाजों में आपने सुना उत्सव फिल्म के गीत को। लिखा था वसंत देव ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार को, फिल्म का नाम था फासले। शब्द रचना शायर की थी और इस गीत को धुन से संवारा था शिव हरि ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है फर्ज, शब्द रचना समीर की है और इस गीत को धुन से संवारा है उत्तम सिंह ने।

अभी आप सुन रहे थे प्रीति उत्तम और उदित नारायण को, फिल्म का नाम था गदर। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और इस गीत को धुन से संवारा था उत्तम सिंह ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। फिल्म संगीत जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं, स्वर कोकिला को भावभीनी श्रद्धांजलि भी हम साथ साथ देते जाएंगे। आज भारतीय संगीत जगत के लिए अत्यंत भावुक और दुखद दिन है। हिंदी और मराठी संगीत की सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर अब हमारे बीच नहीं रही। 89 वर्ष की आयु में उनका आपका निधन हो गया और आपके साथ भारतीय संगीत का एक स्वर्णिम अध्याय मानो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया।

अभी आप सुन रहे थे मन मंदिर फिल्म का ये गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज में। श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर केवल एक गायिका नहीं थी, बल्कि आप एक ऐसी मधुर आवाज थी जिसने दशकों तक करोड़ों श्रोताओं के दिलों को छुआ। आपकी आवाज में मिठास थी, सरलता थी और सबसे बढ़कर एक ऐसी आत्मीयता थी जो सीधे दिल तक पहुंच जाती थी। आइए इस श्रद्धांजलि के अवसर पर सुनते हैं आपका ये अमर गीत।

अभी आपने सुना शगुन फिल्म का ये गीत। आवाज़ थी सुमन कल्याणपुर की। जब भी आप कोई गीत गाती थी तो ऐसा लगता था जैसे गीत केवल सुना नहीं जा रहा बल्कि महसूस किया जा रहा है। आपका जन्म 28 जनवरी 1937 को हुआ था। संगीत के प्रति आपका लगाव बचपन से ही था। आपने भारतीय फिल्म संगीत में उस स्वर्णिम दौर में अपनी पहचान बनाई जब संगीत जगत में कई महान गायकों का दबदबा था। फिर भी अपनी प्रतिभा, साधना और मधुर स्वर के बल पर आपने अपनी एक अलग जगह बनाई।

अभी आप सुन रहे थे मोहब्बत इसको कहते हैं फिल्म का ये गीत। आवाज़ थी सुमन कल्याणपुर की। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि आपकी गायिका की सबसे बड़ी विशेषता थी सादगी और भावनात्मक गहराई। सुमन कल्याणपुर ने उस दौर में अपनी पहचान बनाई जब भारतीय संगीत जगत में लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी महान गायिकाएं सक्रिय थीं। फिर भी आपने कभी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं की। आपने हमेशा अपनी कला, अपने सुरों और अपनी विनम्रता के बल पर श्रोताओं का प्यार पाया। उसी प्यार को आज भी हम इन गीतों के माध्यम से सहेज के रखे हैं।

अभी आप सुन रहे थे खुदा कसम फिल्म का ये गीत। आवाज़ थी सुमन कल्याणपुर की। श्रोताओं, संगीत केवल मनोरंजन नहीं होता, संगीत भावनाओं की भाषा होता है। और कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी आवाज़ से भावनाओं को अमर बना देते हैं। सुमन कल्याणपुर उन्हीं महान कलाकारों में से एक थीं। आज आपके निधन के साथ एक युग का अंत अवश्य हुआ है, लेकिन आपकी आवाज़ कभी समाप्त नहीं होगी। आप हमारे दिलों में हमेशा राज करेंगी, हमारी प्यारी, हमारी लाडली की तरह।

श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर उन्हीं महान कलाकारों में से एक थीं। जब भी उनके गीत बजेंगे वे हमारे बीच उपस्थित महसूस होंगी। आपके सुर, आपकी मुस्कान और आपकी कला आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। देश भर में संगीत प्रेमी, कलाकार और जनप्रतिनिधि आपको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और आपके निधन को भारतीय संगीत जगत की बड़ी क्षति बता रहे हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पारस फिल्म का ये गीत। आवाज थी सुमन कल्याणपुर की। आज इस विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हमने याद किया उस स्वर साधिका को जिनकी मधुर आवाज सदियों तक संगीत प्रेमियों के हृदय में गूंजती रहेगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और आपके परिवार तथा प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। अंत में सुमन कल्याणपुर जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, ओम शांति।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत सुमन कल्याणपुर की श्रद्धांजलि पर आधारित। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर।

नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, दर्द कभी न देना उन हस्तियों को, ऊपर वाले ने माँ बाप बनाया जिनको। श्रोताओं, वैश्विक अभिभावक दिवस के साथ करती हूँ आप सभी का अभिवादन। श्रोताओं, कार्यक्रम में शुरुआत में कीजिए मेरा नमस्कार स्वीकार। श्रोताओं, हमें आपके संदेश मिल चुके हैं। कार्यक्रम में पहला संदेश हमें लिख भेजा है, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफरवाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत कुमार, संचिता वयाल, प्रथमेश प्रणाली, शरवत सानवीक और कल्पना। अगला संदेश हमें लिख भेजा है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल, निशा। आप हैं दरियापुर भाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप विश्वदीप येले, अशोक सेरी, बडनेर अकोला से अरुणा दामोदर, आदित्य दामोदर। अगले संदेश करता हैं चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार, विनीत कुमारी कृष्टि, छत्तीसगढ़ से। टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप, चंडीगढ़ से। कालका से सुपचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का संदेश मिला। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराल टेलर, तनुजा ईशांत, छत्तीसगढ़ से। अगले संदेश करता है रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, न्यू दिल्ली से। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी, ओम कुमार। गंगाजल सरसा बिहार से राधे कुमार, विद्यार्थी, सविता, राकेश, राजीव, संजय, ओम कुमार, गुंजेश, रिया, कुमकुम, कुमारी साक्षी, अच्छे लाल, बुल्की वाली, फलना झा। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी की फरमाइश का। लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है आशा, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और इस गीत को धुन से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत की हमसे फरमाइश लिख भेजी थी भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव और गरिमा ने। कार्यक्रम में इसी गीत को सुनना चाहा था गुजरात गांधीनगर से परवीन सोनी, पूजा पायल, जूली और जगदीश चौधरी ने। कार्यक्रम में अगला संदेश आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां। गांव चहलदा बागपत से हमें संदेश लिख भेजा है संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया ने। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना राजेंद्र सिंह ओबराय। कार्यक्रम में अगला संदेश छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले, राजदीप, राशि, शीतल। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं ग्राम महसवाड़ी से सतुदन धाणे, वाल्मीकि वकील निनाजी, स्वप्निल धाणे। मजनू का टिल्ला से मधु बालूजा, सागर बालूजा, एमपी सतना से हमें संदेश लिखा है उमंग मलिक, आकांक्षा और माही ने।

दत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्र नोखेलाल का संदेश मिला। चंडीगढ़ सिटी से सतीश जनेजा बिमला का संदेश। आप हैं रिग्मी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। गांधा कुंडलवाड़ी से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावलकर। हमीरपुर बुंदेलखंड से हमें संदेश लिख रहे हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा। हयात कॉलोनी अयरिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। अगले संदेश करता है ओल्ड निशनर राजनगर रुद्रप्रताप से गुप्ता, दादा ठाकुर, कुशेश्वर प्रसाद, कुसुम, शारदा, रूपा, हाजरी, बीरेंद्र मालती, शोभा गुप्ता, रामचंद्र। नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भागरे, सुनैना सुकन्या और सविता भागरे का संदेश मिला। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं आप सभी की फरमाइश का कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाज़ है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है रोटी, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और इस गीत को धुन से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में इस गीत को सुनना चाहा था स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया ने। इसी गीत को सुनना चाहा था संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, संगीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूबी, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लव, कुश, नामदेव परिवार ने, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें मिला है नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका का। कार्यक्रम में एक और श्रोता जुड़े हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। आप हैं दही गांव नादुरा से धोंडू भातुरकर, मंगला, विवेक, प्रतीक्षा और समाधान। फुटानी चौक नरहन स्टेट से लल्लन मिश्रा, नूतन मिश्रा, मनपारा सर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। शाहूनगर यवतमाल से राहुल, मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी। आप हैं बुलढाणा महाराष्ट्र से वासुदेव, अनीता, रमेश राव काठोड़े। धमदा ग्राम सुखली कला से हमें संदेश लिखा है अमित जंगेल, शगुन, आरुषि, औशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल ने। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह, मोरस, अनिल कुमार, अजित, आयुष और नंदनी। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं नेहरू चौक पैठर से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा, प्रसाद, सोनल, बेबी सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता। अगले संदेश करता है अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। गांव कुम्हार हेड़ा से हमें संदेश लिख रहे हैं सैयद असरूर, शायना, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब। जैन मंदिर वाली कुराबली गली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना और मोहम्मद कैफ का संदेश मिला। बाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और शौर्य। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सनानंद कुमार गौरव मंदूरकर। अगले संदेश करता है सुरेश नारंग, आशु, सोनाली शेख, अल्लावक्ष, अरविंद कुमार, संदीप मक्कड़, चंदनगर सहारनपुर से। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल निवृत्ति, छीट सागर, संजय कुमार चौहान का संदेश मिला। तेलीवाला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमें संदेश लिख रहे हैं गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष, विवेक और आयुषी। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं आप सभी की फरमाइश का कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाज़ है नितिन मुकेश की, फिल्म का नाम है खुदगर्ज़।

इस गीत को सुनना चाहा था मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज रोहित राज पीयूष कुमार ने। इसी गीत की हमसे फरमाइश कर भेजी थी तेलंगाना से अजीज भाई मीतन, आशिक चांद फारूक फूल वाले।

यह खलील भाई मैयम यशीन ने इसी गीत को सुनना चाहा था। मधुबनी बिहार से भाई नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, बिटिया चुलबुल रानी, जय और बीरू, कपलेश्वर प्रसाद गुप्ता, भूलिया देवी ने। अगले संदेश करता है मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश, डॉक्टर दबिरुल बेगम, शबनम, नजमा बेग।

शबनम नजमा बेगम सरिता गौतम रेलवे रोड गंज डुंडवारा से। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें लिख भेजा है करताल हैदराबाद तेलंगाना से कानूगुला गोपाल माहेश्वरी प्रविलिका विष्णु वर्धन विघ्नेश। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं पलेरा टीकमगढ़ एमपी से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी सोनाली सोनम और आशीष। आप हैं कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले सविता अनिकेत ऋषिकेश जीविका सानिका पुनावले पुणे से अजय सोनबने करिश्मा अविका और विशाखा का संदेश मिला। सौरभ निषाद प्रकाश बल्लू निषाद तरुण रायगढ़ छत्तीसगढ़ से अडार नादगांव छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा चांदरी भूपेश और दीपेश वर्मा का संदेश प्राप्त हुआ। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान मोहिनी कल्पित बेबी गर्मी और हिमाक्ष। गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल स्वाति देव कुमार और आर्य कुमार। दीवाना रेडियो लिसनर क्लब जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल उर्मिला दीपक और स्वाति का संदेश मिला। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर विजयलक्ष्मी सावनकर। आप हैं दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय रोशनी प्रांजल कोटवा नारायण बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश उषा अमित कुमार हैप्पी राय का संदेश। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की युगल आवाजों में। जब जब फूल खिले फिल्म का नाम है शब्द रचना आनंद बख्शी की है और इस गीत को धुन से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

इस गीत को सुनना चाहा था धनौली तेलीवाला से निसार सलमानी नौशाद बेबी आयान बाबू ने। गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी बिहार से कारी राय कारी मीनाकारी पुंजराज आरती आकर्षक और जयश्री ने। मैं अगला संदेश भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा कपिल ईशान और पूजा परिहार का। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू लक्ष्य लाड़ो कोयल पापाजी नानक चंद्र शिवाजी कॉलोनी रोहतक से सिक्का पीयूष कोयल डिग्गू भाविका।

0: ये शिकवा सरकार हजारों बार तुम इसे कर बैठे ना करके प्यार तुम इसे।
1: मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत बात और SMS को संपन्न करने की दुर्गेश भास्कर को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोक गीतों का। आज के कलाकार हैं उदयवीर सिंह और साथी, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं इन्हीं के स्वर में कार्यक्रम का अगला ब्रज लोक गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र FM 102.2 MHz पर। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं

ब्रजलोक गीत कार्यक्रम का आज के कलाकार हैं उदयवीर सिंह और साथी, और आइए आपको सुनवा देते हैं इन्हीं के स्वर में कार्यक्रम का अगला ब्रजलोक गीत।

इसी गीत के साथ ब्रजलोक गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे ब्रजलोक गीत कार्यक्रम। आज के कलाकार थे उदयवीर सिंह और साथी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। अपराह्न के 1 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: गत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रूपये से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाश।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यता

0: आशवाणी वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज आकाशवाणी
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण अब से थोड़ी ही देर में यानी अपराह्न 1:15 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा डिजिटल दुनिया और महिलाएं इसके अलावा चर्चा होगी विश्व अभिभावक दिवस विषय पर इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे आरोग्य वार्ता गर्मियों में आम रोग कुछ प्राथमिक उपचार विषय पर वार्ताकार होंगे डॉ मयंक सारस्वत इसी कार्यक्रम में महिलाएं जानेंगी कुछ घरेलू टिप्स और आनंद ले सकेंगी फिल्म संगीत का आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी नीतू सक्सेना फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता ले सकेंगे अपराह्न 1:45 पर और सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम का समय रहेगा अपराह्न 2:30 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे संध्या 5:30 पर आज का युववाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा नीलम संजीव रेड्डी पुण्यतिथि पर इसके अलावा आज की बात होगी विश्व अभिभावक दिवस पर इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे पुंडरीकाक्ष देव पाठक का काव्यांकुर इसी कार्यक्रम में सुना जा सकेगा फिल्म संगीत ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:15 पर आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा बीज का चुनाव और खेत की तैयारी विषय पर इसके अलावा चर्चा होगी मानसूनी दस्तक एवं खेत की तैयारी विषय पर इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता कृषि क्षेत्र में एआई का उपयोग एवं किसान की जागरूकता वार्ताकार होंगे अंकित अग्रवाल और इनसे बातचीत करेंगे ओपी सिंह भक्तिपरक फिल्म संगीत के कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुन सकेंगे संध्या 6:45 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7:05 पर आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे ब्रज वार्ता ब्रज संस्कृति में हास प्रहास आलेख होगा ओमकार सिंह जायस का संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुनेंगे संध्या 7:31 पर फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता ले सकेंगे रात्रि 8:00 और कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम न्यूज एट 9 सुना जा सकेगा रात्रि 9:00 चित्रपट संगीत सुहाने तराने आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर रात्रि 10:00 आप सुनेंगे नौटंकी जिसका शीर्षक होगा ये कैसी दुश्मनी लेखक होंगे महावीर सिंह चौहान प्रस्तुति होगी राम गोपाल की अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर
0: नमस्कार ये आकाशवाणी है 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल

0: से लेकर
1: करते हुए फील्डर से नहीं रुकी गेंद सीमा रेखा के बाहर
0: चौका। मन की बात के संवाद तक
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है समवेत स्वरों में देशभक्ति परक रचना

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशभक्ति परक रचना। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं नीतू सक्सेना।

तालोक कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को नीतू सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार और आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम में हमारी सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत। बहनों, कार्यक्रम की फुलवारी में हम आपके लिए लेकर आए हैं जानकारी, मनोरंजन, घरेलू टिप्स और फिल्मी तरानों का खजाना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इन पंक्तियों के साथ। कुछ ना चाहा, कुछ ना मांगा, कुछ पाने की ना रखी आस, मिले कामयाबी बच्चों को, माँ बाप की दुआ है ये खास। जी हाँ बहनों, माता पिता का साया ही हर बच्चे को ऐसा मिलता है जिसमें निस्वार्थ प्रेम होता है। अभिभावक बच्चों की खुशी के लिए अपने जीवन के हर पल को न्योछावर कर देते हैं। प्रत्येक माता पिता बस यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें। अभिभावकों का अपने बच्चों के प्रति समर्पण, जीवन भर के बलिदान और बच्चों के पालन पोषण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2012 से 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस मनाने की घोषणा की। आज के दिन को मनाने का उद्देश्य बच्चों को माता पिता के महत्व को समझाना और बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए परिवार की भूमिका को प्रोत्साहित करना है। बहनों, बच्चों को जागरूक करना है कि परिवार बच्चों के सुरक्षित और सकारात्मक विकास के लिए सबसे आदर्श स्थान होता है। अभिभावक अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने जीवन की हर खुशी का त्याग कर देते हैं और यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी हमारा साथ दे, हमारा सम्मान करे। लेकिन बच्चे बड़े होते ही अपने सभी फर्ज भूलकर अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। माता पिता की बात भी उन्हें चुभती है। जिन माता पिता की उंगली पकड़कर बच्चा चलना सीखता है, वही माता पिता बोझ लगने लगता है और बच्चों की इस बात का एहसास तब होता है जब वह स्वयं माता पिता बनते हैं। बहनों, ये जीवन चक्र में सभी के साथ जीवन की सारी अवस्थाएं आनी हैं, इसीलिए हमेशा अपने माता पिता के लिए आदर का भाव रखना चाहिए। इससे ही अभिभावक आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। अपने कीमती समय से थोड़ा समय अपने माता पिता के लिए निकालें, उनके साथ बैठकर बातें करें, अपने विचार एक दूसरे से साझा करें। आपके दिए गए ये दो पल उनके लिए बहुत अहम होते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाएं, तो उन्हें भी अपने माता पिता की बीमारी का ध्यान रखना चाहिए। ये छोटी छोटी केयर माँ बाप को बहुत संतुष्ट करती है। जैसे प्रत्येक माता पिता बच्चे के भोजन से लेकर हर छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही बच्चे को भी अपने माता पिता की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। सच तो यह है कि बच्चों के द्वारा किया गया ये प्यार और समर्पण माता पिता को एक अलग सुकून देता है। जिंदगी की हर खुशी से बढ़कर बच्चों का दो पल का साथ अभिभावक के लिए बहुत खास होता है। मंजिल दूर और सफ़र बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है। मार डालती है दुनिया की नजरें, बस माँ बाप की दुआओं में असर बहुत है।

0: मैनो प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात के माध्यम से संदेश दिया है कि हमारे गर्मियों के पारंपरिक पेय पदार्थ जैसे सत्तू, पन्ना, बेल का शरबत, लस्सी, छाछ, नींबू पानी, शिकंजी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं, उन सबको छोड़कर हमने उसकी जगह डिब्बे बंद पेय पदार्थों को दे दी है। हम लोग इन चीज़ों को तो हमने पीना सेवन करना बंद कर दिया है, उसकी जगह हमने डिब्बे बंद पेय पदार्थ शामिल कर लिए हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। मैनो हम जानते हैं कि सभी पर समय का अभाव है, लेकिन जब हम सारे दिन में और सब काम करते हैं तो इसी तरीके से हमें अपने अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है कि घर की बनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहनों डिब्बे बंद वस्तुएं जो महीनों तक केमिकल के जरिए रखी रहती हैं उसके सेवन से कोई फ़ायदा नहीं होता है और हमारे पैसे भी दुगने जाते हैं। तो बहनों अपने पारंपरिक पेय पदार्थों का सेवन कर अपने परिवार को सुरक्षित रखें। बहनों जब बात स्वास्थ्य से संबंधित कर ही रहे हैं तो सुनवाते हैं आपको आरोग्य क्रम के अंतर्गत वार्ता, गर्मियों के आम रोग, कुछ प्राथमिक उपचार। हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मयंक सारस्वत।
1: जिस प्रकार का इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा है, गर्मियों में मुख्यतः तीन प्रकार के रोग आम जनता को प्रभावित करते हैं। नंबर एक, लू लगना, सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक के रूप में भी जाना जाता है। नंबर दो, वाटर बॉर्न डिजीजेस या पानी से फैलने वाले रोग होते हैं। और तीसरे प्रकार में हमारे वाहक जनित रोग या वेक्टर बॉर्न डिजीजेस आती हैं। सर्वप्रथम अगर हम देखें तो

हीट स्ट्रोक जो है, जिसको हम आम बोलचाल में लू लगने के नाम से भी जानते हैं, इसमें आमतौर पर शरीर का जो तापमान है वो बहुत अधिक 108 फ़ारेनहाइट से भी ऊपर चला जाता है। हमारे शरीर को ठंडा रखने की एक प्रक्रिया है जिसमें हमको पसीना आता रहता है, और शरीर के तापमान को कम करने के लिए हमारा शरीर पसीने के रूप में पानी की जो मात्रा है उसका ह्रास होता रहता है, उसकी लगातार कमी होती रहती है, जिससे कि

है वो बिना पानी के बहुत देर तक रह नहीं सकता, क्योंकि जो भी हमारी जैविक क्रियाएं होती हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो सभी में पानी बहुत अति आवश्यक है। पानी की कमी होने से ना हमारी हृदय गति सही तरीके से चल पाएगी, ना हमारे जो मस्तिष्क की क्रियाविधि है वो सही तरीके से नहीं चलेगी। तो जब बहुत ज़्यादा तादाद में पसीना निकल जाता है तो हमारा शरीर इस तत्काल के जो सबसे बड़ा खतरा होता है पानी की कमी को देखते हुए, हमारे पसीने की प्रक्रिया को रोक देता है, जिसकी वजह से पसीना निकलना बंद हो जाता है और हमारे जो शरीर की ठंडा रखने का जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से फेल हो जाती है। और फिर जो हमारे शरीर का तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण शरीर में स्थायी नुकसान हो सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम अंडे को उबालते हैं, तो उबालने के उपरांत जो अंडे में तरल पदार्थ होता है वो ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से हमारे शरीर में जो प्रोटीन्स होती हैं हमारे रक्त प्रवाह में या हमारे मस्तिष्क के अंदर, तो वो प्रोटीन्स भी अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो सख्त हो जाती हैं और उसके बाद उनकी जो जैविक क्रियाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। अगर शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा समय तक अत्यधिक तापमान पर रहेगा तो हमारे शरीर में मस्तिष्क को और हमारे हृदय को स्थायी रूप से नुकसान हो सकता है तथा हमारी जान को गंभीर खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। अतः किसी भी हालत में शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा समय तक बढ़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। इसी को हम लू लगना या सनस्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी को हम सर्वप्रथम पहचान सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तेज शरीर में तापक्रम हो और शरीर गर्म हो रहा हो और उसके पसीना नहीं आ रहा हो, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे लू लगने के लक्षण जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। इससे बचने का बहुत बढ़िया तरीका है कि हम यथासंभव जितना हो सके पानी का सेवन करते रहें। बाहर निकलने से पहले घर से पानी पी कर जाएँ, साथ में हो सके तो पानी को अपने साथ लेकर जाएं। अगर संभव हो सके तो ORS या नमक चीनी का घोल का सेवन करें। शरीर को ढककर रखें। सफ़ेद या हल्के रंग के सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें जो हमारे शरीर को ठंडा भी रखते हैं और प्रकाश के जो तापमान होता है उसको परावर्तित करके हमारे शरीर को तापमान बढ़ने से बचाते हैं। अगर हो सके तो धूप में निकलने से बचें। समय सुबह या शाम को अपने कार्य क्षेत्र में ले लें, सुबह चले जाएं, शाम को चले जाएं, दोपहर के समय में निकलने से बचें। लू लगने पर प्राथमिक उपचार के रूप में हमको सबसे पहले जिस भी व्यक्ति को लू लग गई है या जिसको पसीना नहीं आ रहा है और शरीर का तापमान बहुत गर्म हो गया है, उसको तत्कालिक रूप से हमें ठंडे पानी से नहलाना चाहिए। उसके शरीर पे खूब सारा पानी डालना चाहिए जिससे कि उसका जितना भी तापमान है वो सब तत्काल ही आराम से नीचे आ जाए और उसका जो परमानेंट नुकसान होने वाला है उसके शरीर में वो कम से कम हो सके। सनस्ट्रोक के कुछ आम लक्षण हैं जैसे कि कमजोरी आना, चक्कर आना, गला सूखना, पसीने का ना आना, जो इसका सबसे प्रथम लक्षण है, तथा इसके साथ ही आदमी को समझने की शक्ति भी कम होने लगती है और चक्कर खा के गिर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को तत्काल रूप से खूब पानी से नहलाना चाहिए। सर पे माथे के ऊपर ठंडी पट्टियां रखनी चाहिए जिससे कि सही समय पर शरीर का तापमान कम हो जाए और रोगी को बचाया जा सके। साथ ही धीरे धीरे नमक चीनी का घोल या ORS पिलाना चाहिए। इस प्राथमिक उपचार के साथ रोगी को तत्काल ही चिकित्सक के पास अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए और जब तक उसका सही प्रकार से उसका तापमान स्थिर ना हो जाए तब तक उसको अस्पताल में ही रखना चाहिए। दूसरी प्रकार की जो समस्याएं हैं इस मौसम में सबसे ज़्यादा फैलने वाली, वो हैं हमारी वाटर बॉर्न डिजीज़ या पानी से फैलने वाले रोग। गर्मी में प्रायः सभी लोग बचने के लिए ठंडे पानी का सेवन करते रहते हैं तथा जहाँ पर भी गर्मी से बचने के लिए कोई तरल पदार्थ मिलता है उस व्यक्ति उस पदार्थ को तुरंत लेकर अपनी गर्मी से बचने के लिए उसका सेवन करता है। कई जगहों पर स्वच्छता होती है वो कम होती है जिसके कारण जो हमारे पानी में घुलने वाले जो कीटाणु होते हैं वो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और रोग को उत्पन्न करते हैं, जैसे टाइफाइड, हैजा, उल्टी दस्त, पीलिया, अमीबिक डिसेंट्री और कई प्रकार के हमारे यकृत या आंतों के कृमि जो हैं वो पानी के द्वारा उनके जो जीवाणु होते हैं वो हमारे शरीर में आ जाते हैं। कान के रोग जो हैं, कान में कान बहना या कान का जो इन्फेक्शन होता है वो, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, ये सारे जो रोग होते हैं ये किसी ना किसी कारण से पानी या हमारी सफाई की कमी की वजह से इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आ जाता है। ये सारे सारे रोग जो हैं पानी में घुलने वाले कीटाणुओं से ही फैलते हैं। किसी भी रोगी के मल या अवशिष्ट पदार्थ में जो उसके कीटाणु के जो अंडे होते हैं या उस रोग के जो कारक होते हैं वो कारक हमारे अवशिष्ट पदार्थ के साथ दूषित जल में नाली में बह जाते हैं और कई बार हमारा ऐसा होता है कि जब पानी की जो सप्लाई होती है, जो हमारे पीने के पानी की जो सप्लाई है, जब हम उससे पानी लेते हैं और कहीं पर वो हमारे इन दूषित पदार्थों के संपर्क में आ जाता है तो वहाँ से ये जो कीटाणु हैं ये हमारे स्वच्छ पीने के पानी में आकर रोग जनित कर देते हैं।

0: इन रोगों से बचाव के लिए सर्वप्रथम अपने व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, शौच इत्यादि करने के बाद साबुन से या राख से अच्छी प्रकार से हाथ धोने चाहिए, खाना बनाते समय स्वच्छता का ध्यान रखें, पीने के पानी को कपड़े धोने के पानी और बर्तन धोने के पानी से अलग रखें, इसके अतिरिक्त पानी में क्लोरीन की गोलियां या फिटकरी इत्यादि का प्रयोग कर विषाणु मुक्त किया जा सकता है। हो सके तो ऐसी जगह पर जहाँ साफ सफाई नहीं हो वहाँ का कृपया कर भोजन पदार्थों का सेवन न करें। इन रोगों से अगर कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाता है तो उस व्यक्ति को सर्वप्रथम तत्काल चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए। अगर चिकित्सक तक जाने की सुविधा तत्काल उपलब्ध ना हो तो रोगी को स्वच्छता का ख्याल रखें, साफ सफाई से रखें, रोगी को पानी का सेवन कराना चाहिए, ORS का या ग्लूकोज के पानी को तत्काल उसको देते रहें थोड़ा थोड़ा करके, जिससे उसके शरीर में पानी की कमी ना हो सके। उस रोगी के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उसका तत्काल उचित निस्तारण होना चाहिए। साफ सफाई का ख्याल रखें जिससे कि उसके द्वारा जो उसके अवशिष्ट पदार्थ में जो कीटाणु निकल रहे हैं वो किसी और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाकर उसको दूषित ना करें। बच्चों को ये जो कीटाणु हैं सबसे ज़्यादा रोगग्रस्त कर सकते हैं, इसलिए बच्चों के बारे में सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और परिवार के अन्य सदस्यों खासकर बच्चों को रोगी से दूर रखें, क्योंकि बच्चे इन रोगों से सबसे आसानी से शिकार हो सकते हैं। तीसरे प्रकार के जो रोग होते हैं वो हैं हमारे वेक्टर बॉर्न डिजीज या वाहक जनित रोग। ये रोग जो हैं ये मक्खी मच्छर आदि के जो हमारे रोग वाहक कीट पतंगे होते हैं उनके द्वारा हमारे शरीर तक इन्फेक्शन को लेके आते हैं। ये कई प्रकार के रोग हो सकते हैं जैसे कि डेंगू, मलेरिया, प्लेग, चिकनगुनिया, फाइलेरिया जिसको हम हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं, येलो फीवर या मस्तिष्क ज्वर। ये सभी रोग जो हैं वो किसी ना किसी कीटाणु के द्वारा फैलाए जाते हैं जो कि किसी अन्य कीट पतंगे के पैर में, उसके ब्लड में, उसके खून के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचते हैं। इसलिए उनको रोग का वाहक कहा जाता है क्योंकि वो रोग फैलाने में सहायक होते हैं, अपने द्वारा रोग को फैलाते हैं। इन रोगों से बचने का सबसे बढ़िया उपाय ये है कि हम जो इनके वाहक हैं इनको नियंत्रित कर लें, यानी अगर हम कीट पतंगों को नियंत्रित कर लेते हैं तो ये रोग स्वतः ही हमारे को कम से कम हानि पहुंचाएंगे। जैसे कि मच्छरों की पैदावार को अगर हम नियंत्रित कर लेते हैं तो मलेरिया मलेरिया के रोग को हम रोकथाम कर सकते हैं। इस चीज़ से हमारे व्यक्तिगत साफ सफाई के साथ में हमें बाहर घर के बाहर और अंदर भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर के अंदर पानी को कहीं इकट्ठा ना होने दें, जैसे घर में टायर होते हैं या कूलर होते हैं उसमें जो पानी है अगर कहीं रुका हुआ पानी है बहुत दिन से रखा हुआ है तो उसको तुरंत हटा दें, खाली कर दें। अपने कूलरों के पानी को यथासमय बदलते रहें। घर के बाहर अगर कहीं नाली में रुका हुआ है तो उसको सफाई का ध्यान रखें जिससे कि पानी वहाँ ना रुके। कहीं पानी अगर रुक रहा है तो उसको मिट्टी डाल दें या उसके ऊपर थोड़ा सा केरोसिन छिड़क दें तो ये जो मच्छर मक्खी हैं ये वहाँ पे नहीं आएंगे। अवशिष्ट पदार्थों का उचित निस्तारण करें, घर के आसपास कूड़ा करकट इकट्ठा ना होने दें क्योंकि इनमें कीटाणु फैलते हैं और कीटाणु कीट पतंगों के द्वारा हमारे घर तक लेके आए जाते हैं जिनसे कि हमारा जो खाना है वो दूषित हो जाता है और उसके सेवन से हम लोग भी बीमार हो जाते हैं। खाने के पदार्थों को ढककर रखें, साफ सफाई का ख्याल रखें, किचन में पानी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको उबाल कर, निथार कर या फिटकरी से या क्लोरीन से शुद्ध करके हम खाना बनाने में और पीने में उपयोग में लाएं। और वहाँ जहाँ मक्खी मच्छर आपको सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं ऐसी जगहों पर खाना न खाएं क्योंकि ये खाना दूषित हो सकता है और आपको रोग जनित कर सकता है।
1: बहनों, आप सुन रही थी आरोग्य क्रम के अंतर्गत वार्ता, गर्मियों के आम रोग, कुछ प्राथमिक उपचार। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मयंक सारस्वत। हम तो बहनों बस यही कहना चाहेंगे, हर पल मुस्कुराओ, बड़ी खास है जिंदगी, क्या सुख क्या दुख बड़ी आस है जिंदगी, ना शिकायत करो ना कभी उदास हो, क्योंकि जिंदा दिली से जीने का एहसास है जिंदगी।

बहनों, डिजिटल दुनिया ने हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव डाला है। डिजिटल वर्क के माध्यम से हमारे समय और धन की भी काफ़ी बचत होती है। आजकल के डिजिटल युग में बच्चों को भी अपनी प्रतिभा निखारने का अच्छा मौका मिल रहा है। हम महिलाओं के लिए तो डिजिटल दुनिया किसी वरदान से कम नहीं है। जी हाँ बहनों, डिजिटल दुनिया आज की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और प्रगति का एक नया और शक्तिशाली माध्यम बन गया है। इसने हम महिलाओं को पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकालकर वैश्विक मंच तक अपनी पहचान बनाने के अनेक अवसर प्रदान किए हैं। बहनों, डिजिटल दुनिया ज्ञान के भंडार है। आज इंटरनेट और स्मार्टफोन के में महिलाओं को घर बैठे शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के ढेरों विकल्पों का ज्ञान दिया है, जिसके द्वारा महिलाएं ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से अपनी योग्यता बढ़ा रही हैं। डिजिटल माध्यमों से महिलाएं अपने अधिकारों, समाज में हो रही घटनाओं के बारे में जागरूक भी हो रही हैं। बहनों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने महिलाओं को घर से ही अपना व्यवसाय शुरू करने का अच्छा मौका दिया है। डिजिटल तकनीक और इंटरनेट ने महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देकर रोजगार के रास्ते खोले, जिसके द्वारा महिलाएं घर पर रहकर अच्छी इनकम कर रही हैं। डिजिटल बैंकिंग के जरिए महिलाएं अपने धन और बचत का प्रबंधन भी स्वयं कर रही हैं, यानी कि महिलाएं पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो रही हैं। बहनों, सोशल मीडिया ने महिलाओं को अपनी बात खुलकर रखने, अपनी कहानियों को साझा करने और सामाजिक रूढ़िवादियों को चुनौती देने का एक सशक्त मंच तैयार किया है। आज के समय में महिलाएं ऑनलाइन समुदायों के जरिए एक दूसरे से जुड़ रही हैं और एक दूसरे का

समर्थन और मार्गदर्शन कर अपनी प्रतिभा निखार रही हैं। डिजिटल वर्क के माध्यम से आज की महिला घर के काम से लेकर बाहर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रही है और अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर रही है। मैनो आज के युग में डिजिटल वर्क के माध्यम से महिलाएं घर पर ही रहकर अपनी अलग पहचान बना रही हैं, जो घर बैठे ही शिक्षा से लेकर रोजगार तक के अनेक अवसर प्रदान कर रहा है। डिजिटल साक्षरता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। मैनो डिजिटल क्रांति हम महिलाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है, जो महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बना रही है। जी हाँ बहनों, हम तो बस यही कहना चाहेंगे, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। बहनों इसी के साथ समय, अब बहनों ये तो थी हमारी और आपकी बातचीत। अब बस चलते चलते हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम संपन्न हो गया है, लेकिन हम यही मनोकामना करते हैं, यही आपके लिए कामना करते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बस हम चलते चलते अब यही कहना चाहते हैं कि पग पग पर फूल खिलें, खुशियां आपको इतनी मिलें, कभी ना हो दुख का सामना, पूरी हो आपकी मनोकामना। बहनों अब हम तो यह सभी तो हमें पता ही है कि गर्मियाँ इतनी चल रही हैं और ऐसी गर्मियों में हमारे सभी के घरों में समस्या होती है कि बच्चे खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं, उससे पेट से संबंधित अनेक समस्याएं हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें खाने को डाइजेस्ट करने के लिए डेली सौंफ का सेवन करना चाहिए। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, जो कि हमारा खाना पचाने में बहुत मदद करती है। बहनों लेकिन बच्चे जो घर में होते हैं वो सौंफ खाना पसंद नहीं करते, तो ऐसे में हम सौंफ का पानी, सौंफ को भिगो दें, एक चम्मच सौंफ को एक गिलास में 2-4 घंटे के लिए भिगो दें, उसके बाद उसके पानी को दें। उसके बाद जब उसके पानी को देंगे तो उसके पानी पीने से बच्चों के पेट में ठंडक होगी और बच्चों को लू भी नहीं लगेगी। ऐसे जो नमक अजवाइन होता है ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है। नमक और अजवाइन का सेवन जब हम करते हैं रात को सोने से पहले, अगर हम चुटकी भर अजवाइन और चुटकी भर नमक डेली खा लें तो इससे हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। और बहनों यह तो थे कुछ हमारे घरेलू टिप्स। इसी के साथ अनुमति दीजिए नीतू को, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी नीतू सक्सेना। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं मुकेश की आवाज़ है। फिल्म का नाम है अनारी। शब्द रचना शैलेंद्र की है और इस गीत को धुन से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम था आंखें। शब्द रचना साहिर लुधियावनी की थी और इस गीत को धुन से संवारा था रवि ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है हीर रांझा। इस गीत को लिखा है कैफी आज़मी ने और इस गीत को धुन से संवारा है मदन मोहन ने।

लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। अपराह्न के 2 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में सपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना

0: विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रुपये 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रुपये 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रुपये 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
5: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने

0: स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
2: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और

0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
1: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। आप तक पहुंचा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज है। फिल्म का नाम है सफर। शब्द रचना इंदिवर की है और इस गीत को धुन से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को। फिल्म का नाम था प्यार झुकता नहीं। शब्द रचना SH बिहारी की थी और इस गीत को धुन से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को लिखा है मजरू ने, संगीत से संवारा है इस गीत को नौशाद ने। आवाज़ है मुकेश की और फिल्म का नाम है साथी।

इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का, आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। और आइए आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है नूरी, शब्द रचना जन निसार अख्तर की है और इस गीत को धुन से संवारा है खय्यम ने।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम था जाने अनजाने। इस गीत को लिखा था SH बिहारी ने और इस गीत को संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन ने। इसी गीत के साथ सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज 1 जून का दिन है और आज का दिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की पुण्यतिथि है। नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 19 मई 1993 को हुआ था और उनका निधन 1 जून 1996 को हुआ था। उनका सार्वजनिक जीवन बेहद उत्कृष्ट और सादगी भरा था। उन्हें सादा जीवन और उच्च विचार का प्रतीक माना जाता था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई बार जेल भी गए। वे 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक भारत के 6ठे राष्ट्रपति रहे। वे लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों और जनसेवा के प्रति आजीवन समर्पित रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर भी रहे। उनकी पुण्यतिथि पर राष्ट्र उन्हें उनकी जनसेवा, सार्वजनिक जीवन में शुचिता और देश के प्रति उनके अतुलनीय योगदान के लिए कृतज्ञता पूर्वक याद करता है।

0: और साथियों, कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं काव्यांकुर क्रम में काव्य पाठ। प्रस्तुत कर रहे हैं पुंडरीकाक्ष पाठक।
1: प्रेम चाहे किसी से भी किया हो, माँ से, पिता से, भाई से, बहनों से, दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से, प्रेम तो प्रेम है। और उसी प्रेम को चरितार्थ करने के लिए मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ। हमने यारों कभी किसी से प्रणय निवेदन नहीं किया है, हमने यारों कभी किसी से प्रणय निवेदन नहीं किया है, हमने यारों कभी किसी को प्रेम पत्र भी नहीं दिया है, हमने तो बस गीत लिखे हैं टूटे तार मिलाने को।

है प्रेम पवित्र बनाने को। जो जैसा था उसको उसकी भाषा में स्वीकार किया, जो जैसा था उसको उसकी भाषा में स्वीकार किया। जो अपशब्द मिले जिनसे उनका भी सत्कार किया, जो अपशब्द मिले जिनसे उनका भी सत्कार किया। हारे तो केवल हम हारे अपनों को जीत दिलाने को, हमने तो बस प्रेम किया है प्रेम पवित्र बनाने को, हमने तो बस प्रेम किया है प्रेम पवित्र बनाने को। विष की घातक वर्षा थी फिर भी हमने श्रृंगार लिखा, विष की घातक वर्षा थी फिर भी हमने श्रृंगार लिखा। सागर के दिल की गहराई हमने भी तो ज्वार लिखा। हमने सबको जल बांटा है भीषण रेगिस्तानी में, हमने सबको जल बांटा है भीषण रेगिस्तानी में। पर पानी जब काल बना तो आग लगा दी पानी में, पर पानी जब काल बना तो आग लगा दी पानी में। हमने अपनी देह तपाई, हमने अपनी देह तपाई फिर से वज्र बनाने को, हमने तो बस प्रेम किया है प्रेम पवित्र बनाने को, हमने तो बस प्रेम किया है प्रेम पवित्र बनाने को। कोई समंदर कैद किए अपनी आंखों के पानी में, लाखों ज्वार समेटे हमने दिल की छिपी कहानी में। कोई समंदर कैद किए अपनी आंखों के पानी में, लाखों ज्वार समेटे हमने दिल की छिपी कहानी में। कई बार कुर्बान किए हैं, कई बार कुर्बान किए हैं निज आंखों के सपनों को, कई बार कुर्बान किए हैं निज आंखों के।

को हर एक मिटा दी आस, हर एक मिटा दी आस, हमी ने सबकी प्यास बुझाने को। हमने यारों कभी किसी को प्रेम पत्र भी नहीं दिया है, प्रेम पत्र भी नहीं दिया है हमने।

0: को कवि जब लिखता है तो वो क्या सोच के लिखता है, किस लिए लिखता है, किसके लिए लिखता है और किस परिस्थितियां किस स्थितियों में लिखता है। तो इसके ऊपर मैं एक कविता आप लोगों को सुनाता हूं। दिल में विश्वास जगाने के लिए लिखता हूं, दिल में विश्वास जगाने के लिए लिखता हूं, मैं खुद को करीब लाने के लिए लिखता हूं। लिखता हूं जज्बातों को शब्दों में ढालकर, शब्दों को अर्थ बनाने के लिए लिखता हूं, मैं खुद को करीब लाने के लिए लिखता हूं। कभी हालात से लड़ते हैं तो चलती है कलम, कभी अपनों से बिछुड़ते हैं तो चलती है कलम, कभी हालात से लड़ते हैं तो चलती है कलम, कभी अपनों से बिछुड़ते हैं तो चलती है कलम, कभी रिश्तों की गर्माहट भी शब्द देती है कलम, हर एक पल को यादगार बनाने के लिए लिखता हूं, मैं खुद को करीब लाने के लिए लिखता हूं। कभी पतझड़ तो कभी बसंत के लिए, कभी किसी बेईमान कभी संत के लिए, मौत के लिए तो कभी जिंदगी को भी, शुरुआत के लिए तो कभी अंत के लिए। कभी पतझड़ तो कभी बसंत के लिए, कभी किसी बेईमान कभी संत के लिए, मौत के लिए तो कभी जिंदगी को भी, शुरुआत के लिए तो कभी अंत के लिए। जिंदगी को जहन्नुम खुशनुमा जहां बनाने के लिए लिखता हूं, मैं खुद को करीब लाने के लिए लिखता हूं, मैं खुद को करीब लाने के लिए लिखता हूं, चाहे किसी से भी किया हो।
1: अभी आपने काव्यांकुर क्रम में काव्य पाठ सुना। काव्य पाठ प्रस्तुत कर रहे थे पुंडरीकाक्ष देव पाठक। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये संदेश।

0: और साथियों, इसी गीत के साथ ही आज का युवावाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी FM 102.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है, अब वक्त है हिंदी समाचारों का। कृपया कुछ पल समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: of our shared future.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। LPG आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्री

परिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने दो विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 7:20 पर होंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। इसमें चर्चा होगी बीज का चुनाव और खेत की तैयारी। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक और चर्चा मानसूनी दस्तक एवं खेत की तैयारी। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता जिसका विषय होगा कृषि क्षेत्र में एआई का उपयोग एवं किसान की जागरूकता। विशेषज्ञ वार्ताकार होंगे अंकित अग्रवाल, प्रगतिशील कृषक, और इनसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। साथ ही हमारे श्रोता आनंद ले सकते हैं इस कार्यक्रम में ब्रज लोक गीतों का।

शाम 6:45 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। ब्रज साहित्य कार्यक्रम होगा 7:05 पर। इसमें आज आप सुनेंगे ब्रजवार्ता, ब्रज संस्कृति में हास परिहास। वार्ताकार होंगे ओंकार सिंह जायसवाल।

संध्या 7:31 पर आप सुनेंगे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। आज रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे महावीर सिंह चौहान की लिखी नौटंकी ये कैसी दुश्मनी, इसके प्रस्तुतकर्ता होंगे राम गोपाल। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर, इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद अब्दुल लतीफ का सारंगी वादन।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आरंभ हुए है ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनान को मृणालिनी बहन की राम राम। भैया जा संजा को कार्यक्रम में हम किसान भैयान के काजे अपने अपनी नई जानकारी लेके आवे, बातचीत करें, चर्चा करें और गीत संगीत को आनंद भी लेवें। तो भैया आज हम चर्चा करेंगे बीज को चुनाव और खेत की तैयारी। भैया फसल की अच्छी पैदावार लेवे के काजे सही बीज को चुनाव और खेत की उचित तैयारी सबसे महत्वपूर्ण कदम होवे हैं। अब बीज को चुनाव कैसे करना चाहिए? बीज हमेशा भैया प्रमाणित बीज लेना चाहिए, विश्वसनीय कृषि केंद्रों से, सरकारी संस्था या प्रमाणित कंपनियों से ही बीज खरीदना चाहिए। और बीज खरीदते समय बीज के पैकेट पर मोहर और बाकी एक्सपायरी डेट, यानी वो बीज कब तक उपयोगी है, वाको प्रयोग हम कब तक कर सकें, जा तारीख को जरूर देख लेना चाहिए। मौसम और मिट्टी, अपने क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के प्रकार के अनुसार ही बीज को चुनाव करना चाहिए। बीज परीक्षण करा लेना चाहिए। बुवाई से पहले बीजन को नमक के पानी में डालकर जांच लेना चाहिए। जो बीज तैरने लगे या उन्हें हटा दें और नीचे बैठे वाले स्वस्थ बीजों को ही प्रयोग करना चाहिए। बीज उपचार कीट और बीमारियों से बचावे के काजे बुवाई से पहले बीजन को फफूंद नाशक या जैविक उपचार जैसे ट्राइकोडर्मा से उपचारित जरूर कर लेना चाहिए। भैया अब रही खेत की तैयारी, ये तो रही बीज की बात, अब खेत की तैयारी कातनिया से कर लेना चाहिए। भैया खेत की तैयारी के काजे गहरी जुताई कर लेना चाहिए। मिट्टी को भुरभुरा और उपजाऊ बनावे के काजे मिट्टी पलटवे वाले हल से 1-2 फुट गहरी नीचे जुताई कर देनी चाहिए और जाके नीचे हानिकारक कीट और खरपतवार नष्ट है जामे हैं। धूप लगा देना चाहिए। जुताई के बाद खेत को 10 से 15 दिन के काजे खुली धूप में छोड़ देना चाहिए। खाद अवश्य डालना चाहिए। खेत में अच्छी तरह से सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट पर्याप्त मात्रा में मिलाना चाहिए। पाटा लगाकर समतल करके यानी खेत को बराबर करें ताकि सिंचाई के समय पानी हर हिस्सा में समान रूप से पहुँच सके और फसल उत्पादन अच्छे तनिया से है सकें। जितने ही भैया चर्चा आगे जितनों वैज्ञानिक युग आगे बढ़ गया है, हमारे विज्ञान ने बहुत उन्नति करी है, बहुत सारी जानकारी हमारे वैज्ञानिक तरीके से, देखो भैया जैसे घर बैठे बैठे आपे पता चल जावे मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कि भाई कब आंधी आवेगी, कब ओलावृष्टि होगा, कब बारिश पड़ेगी, तो ये सब जानकारी हमें मिल जावे। तो आज वही के अंतर्गत हम आज आपको जानकारी भी दे पाएंगे कृषि क्षेत्र में AI का उपयोग और किसान की जागरूकता।

0: भैया अभी आप आनंद ले रहे हैं ऋषि शर्मा के स्वर में, जहाँ लोकगीत को गलियन अयो रे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको जानकारी दे पाएंगे। अंकित अग्रवाल, प्रगतिशील किसान भैया ते कृषि क्षेत्र में एआई का उपयोग एवं किसानन की जागरूकता, इनसे बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजन था, एक लक्ष्य था कि हमारे किसान भाइयों की आय बढ़नी चाहिए। अब वो दोगुनी हो, तीन गुनी हो, जैसा प्रयास और जैसी समझ और जानकारी है उस हिसाब से, लेकिन आय बढ़नी चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य है। आज साधन है, अवसर है, सुविधाएं हैं, तकनीकी का विकास हो गया है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि किसान और उस साधन सुविधाओं के बीच में कुछ अंतर है, जिसकी वजह से जो परिणाम समाज, सिस्टम और परिस्थितियां चाहती हैं वो मिल नहीं पा रहा। तो ये जो अंतर है, जो गैप है, वो कैसे पाटा जाए, उसके लिए आज हम बात करेंगे अंकित अग्रवाल जी से। आप युवा उद्यमी हैं और ऐसे उद्यम से जुड़े हुए हैं जो किसानों से जुड़े हुए कारोबार हैं। तो अंकित जी, आपका हमारी इस आज के कार्यक्रम में स्वागत। राम राम।
2: राम राम साहब, मैं अंकित अग्रवाल। मेरी जो शैक्षिक योग्यता है, मैंने MBA IT नेटवर्किंग में किया हुआ है, उसके बाद लॉ किया है। मेरा कृषि से सिर्फ पारिवारिक संबंध रहा था पहले, आज से 10 साल पहले।
1: जी
2: उसके अलावा मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। 10 साल पहले मैंने सोचा मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सोचने के बाद सरकारी नौकरियों की तैयारी करी, लेकिन उसमें भी रुचि नहीं लगी। फिर मैंने सोचा किसानों के साथ मिलकर कुछ करना चाहिए, किसानों के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं वापस अपने गांव आया, खेती बाड़ी स्टार्ट करी, शुरू करी, और जो जो मैंने पढ़ा था उसका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। मैंने ये पाया कि जैसे कि अगर हम कृषि संस्थानों में जाते थे, वहां पर जो ज्ञान है वैज्ञानिकों का, वो सही तरह से किसानों तक नहीं पहुंच पाता, जिसके अभाव में किसान दुकानदार जो दुकानदार है उसके माध्यम से मूर्ख बनता था। तो और आज के टाइम में भी किसान YouTube वीडियो देख देख के जो सही जानकारी है उस तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हम जैसे लोग जो कि कृषि के बारे में जानते हैं अपनी पर्सनल वीडियो चैनल बना लेते हैं और उस पे अपने फायदे के लिए जो जानकारी हमें लगता है कि बिक सकती है, अच्छे दामों में बिक सकती है, उसको बेचने के चक्कर में गलत जानकारी भी कई बार अपने माध्यम से किसानों तक पहुंचाते हैं। किसान इतना भोला है कि वो देखता है, अपना फायदा देखता है कि ये कार्य मैं करूंगा तो मुझे कितना फायदा होगा, वो उसकी तह तक नहीं जाता। तो मेरा किसान भाइयों से ये आग्रह है, किसान को सही माध्यम से जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर कार्य करना चाहिए।
1: जी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि

0: आज के समय में जानकारी बहुत है और एक ही चीज पे बहुत तरह की जानकारी है, लेकिन मेरी जरूरत क्या है, मुझे क्या लाभ पहुंचा पाएगा और एक्चुअल में वाकई में जो जानकारी बताई जा रही है क्या मेरे लिए उपयोगी हो सकती है और किन तरीकों से हो सकती है, ये एक किसान को जागरूक और जानकार होना चाहिए इसके लिए।
1: बिल्कुल जागरूक होना चाहिए
0: जी।
1: जैसे मैंने अभी कहा कि किसान को सही माध्यम तक पहुंचना चाहिए।

0: को सही माध्यम तक पहुंचना चाहिए, जैसे कि कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि संस्थान हैं, वहां पढ़े लिखे वैज्ञानिक बैठे हैं, उनसे अगर हम जानकारी लेते हैं वो गलत जानकारी हमें नहीं देंगे। लेकिन जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसान हो चाहे व्यापारी हो, वो अपनी जानकारी को बेचने के लिए, अपने फायदे के लिए जानकारी को मैनिपुलेट करके, मतलब बदलाव करके हम तक पहुंचाता है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है वो जानकारी सही है या गलत है, उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। अब इंटरनेट पे कई तरह की जानकारी उपलब्ध है, जो जिसका नेगेटिव मतलब भी है और पॉजिटिव मतलब भी, तो हम लोगों को पहले तो उसके अनुरूप दोनों तरह की जानकारी देखनी चाहिए। मान के चलिए मुझे किसी फसल प्रजाति के बारे में जानकारी लेनी है, तो उसकी बुराई करने वाली भी वीडियो हमें ऑनलाइन मिल जाएंगे, नेट पे मिल जाएंगे, और उसकी बढ़ाई करने वाले भी मिल जाएंगे। जब हम दोनों पहलू को सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तविकता है क्या, वो अच्छी चीज है हमारे लिए, उपयोगी है या नहीं है। होता क्या है कि हमें नई प्रजाति हमने सुनी किसी भी फसल की, उसमें वीडियो में दिखाया गया इससे हमारे 100 क्विंटल पैदा होगा, क्या वास्तविक में किसी भी एक हेक्टेयर में 100 क्विंटल कोई गेहूं या धान की प्रजाति पैदावार दे सकती है? हाँ, छोटे प्लॉट पे दे सकती है, लेकिन अगर हम कॉमर्शियल या बड़ी खेती में की बात करें तो नहीं दे सकती, संभव ही नहीं है।
1: तो मतलब जानकारी को एक स्वविवेक से ये भी देखना है कि ये जानकारी क्या वास्तव में व्यावहारिक हो सकती है।
0: जी।
1: अच्छा, दूसरा ये कि आजकल ये भी हो गया है कि सरकारी संस्थाएं बहुत समय से काम कर रही हैं, और आपके कहने का जैसे ये था कि भाई वहां एक्चुअल काम हो रहा है, किसान की जानकारी और किसान की उपयोगिता के हिसाब से काम हो रहा है, वहां कुछ गलत नहीं मिलेगा। लेकिन एक ऐसा बना दिया जाता है कि सरकारी संस्थानों में तो कुछ हो ही नहीं रहा, वहां तो किसान के लिए कुछ जानकारी अच्छी है ही नहीं, वो तो सहयोग नहीं करते। तो क्या हम इन सुनी सुनाई बातों पे न ध्यान दे करके एक बार जाके देखें, लोगों से मिलें? ऐसा नहीं है कि संस्थान अभी भी अच्छे काम कर रहे हैं और वो किसानों की भलाई के ही लिए काम कर रहे हैं, तो वहां आपको सहयोग मिलेगा, थोड़ा आपको हो सकता है देरी लग जाए, परेशानी हो, सही जगह तक पहुंचने में आपको थोड़ा मुश्किल आए, लेकिन एक बार पहुंच जाएंगे और आप चीज मांगेंगे तो आपको मिलेगी। ये आपका अनुभव है आपका?
0: जी बिल्कुल, अनुभव यही है। होता क्या है, जब तक हम जाएंगे नहीं, जानकारी इकट्ठी नहीं करेंगे, 10 लोगों से बातें नहीं करेंगे, तो हमें सही और गलत का पता नहीं चलेगा, और सबसे बड़ी चीज क्या वहां पर काम हो रहा है हमें नहीं पता चलेगा। दूसरी चीज मैं कहूंगा, तकनीक के माध्यम से, जैसे कि आज के टाइम में सब किसान भाइयों ने सुना होगा AI, एक AI क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब कि हमारे जैसे हम लोगों का दिमाग होता है वैसे ही एक दिमाग इंटरनेट पे प्रोवाइड कर दिया गया, दे दिया गया है,
1: जी,
0: जिसके माध्यम से हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वो जानकारी सही है या गलत है। वो AI एक ऐसा टूल है जो कि जितने भी इंटरनेट पे जानकारी मौजूद है उसको क्रॉस सबको इकट्ठा करके उससे एक कंक्लूजन निकाल के हम लोगों को प्रोवाइड करता है।
1: मतलब हमारी परिस्थिति और हमारी जरूरत के हिसाब से क्या उपयुक्त है, आज इसके लिए बहुत सारे AI टूल है।
0: जी।
1: तो वहाँ एक किसान अगर जागरूक है, समझदार है, तो वो बहुत कम साधन में, और बल्कि घर बैठे हुए ही एक छोटा सा आपका गूगल करके या एक एंड्रॉइड फोन अगर आपके पास है तो वहां वो जानकारी उसके लिए बता देगा कि ब्रज क्षेत्र में इस एरिया में आप ये वाली धान की फसल लगा लो, ये गेहूं की लगा लो, ये फल वाले पौधे लगा लो, ऐसे लगा लो, तो सब जानकारी वो क्रॉस कर सकता है।
0: बिल्कुल सब जानकारी कर सकता है। इस तरह तक के एग्रीकल्चर टूल्स हैं जिसके माध्यम से हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मान के चलिए हम धान की खेती कर रहे हैं, हमने धान की फसल की फोटो खींची, अगर हमें कोई समस्या लग रही है कि इसमें ये समस्या है और समस्या नहीं भी है, तो हमने फोटो खींच के उसको उस ऐप पे डाउनलोड अपलोड कर दी, हम उससे पूछ सकते हैं ये हमारी फसल कैसी है, अगर कोई समस्या दिख रही है इस समस्या का इलाज क्या है, वो टूल इस तरह की चीजें बता देते हैं, इसमें ये बीमारी है, इसका ये उपचार है, आप ये दवाई आपके नजदीकी कौन से डीलर पे मिलेगी, यहाँ तक की जानकारी इन टूलों से हम लोगों को मिल जाती है।
1: मतलब उस फसल के रंग रूप को देख करके वो आगे की जानकारी भी आपको दे सकता है,
0: पूरी जानकारी देता है। मान के चलिए हम आम का बगीचा लगा रखा है, आम में कोई हमें तकलीफ दिखाई दी, जैसे कि एक बीमारी आती है माल फॉर्मेशन, अब किसान को तो मालूम नहीं है माल फॉर्मेशन होता क्या है, गुच्छा सा बन जाता है उसमें, जब फूल बनता है वहीं पर गुच्छा बन जाता है, तो हम उस ऐप में पहले तो अपनी फसल सेलेक्ट करेंगे हमने कौन सी फसल वो रखी है, फिर हम उसकी फोटो खींचेंगे, फोटो खींच के उस पर अपलोड करेंगे, तो अपनी आप जैसी फोटो अपलोड होगी वहां पर सही तरह की फोटो होनी चाहिए। अगर फोटो गड़बड़ है तो उसके अनुरूप वो रिजल्ट देगा हमें। तो जैसे ही हमने फोटो अपलोड करी वो उस समस्या को एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद वहां पर एक्सपर्ट तक मौजूद होते हैं, अगर आप चाहें तो एक्सपर्ट से बात

0: कर सकते हैं, नहीं तो एआई के माध्यम से जो उसका इलाज है वो बताएगा और इलाज के लिए कहाँ दवाई मिलेगी, कौन सा साल्ट है, वो सब चीज पूरी डिटेल बता देता है। तो आज के टाइम में तकनीक इतनी मौजूद है कि हम लोग अगर उसको ढंग से सही तरह से इस्तेमाल करते हैं, अपने विवेक को इस्तेमाल करते हुए इसको इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ज्यादा हम फायदा ले सकते हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आज के दौर में गरीब से गरीब आदमी के घर में एंड्रॉयड फोन है, वो रोटी नहीं खाएगा लेकिन महीने का 300-400 रुपए का रिचार्ज जरूर कराएगा, मतलब इंटरनेट की सुविधा भी उसके पास है। अगर मुझे कृषि में आगे बढ़ना है तो मुझे उसे कृषि के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा मुझे जानकारी कहां से मिलेगी, फिर तो मुझे कोई भी बरगला लेगा जो उसने कह दी। जैसे दुकानदार के पास जाओ, उसको बीमारी बताओ कि मेरे फसल में ये बीमारी है, तो जो एक्चुअल दवाई है वो देगा ही देगा, साथ में चार चीजें और पकड़ा देगा, हमारा खर्चा बढ़ेगा। खर्चा कैसे किसान कम करेगा, जो चीज हमें चाहिए वो चीज मार्केट से खरीदे, यहाँ तक कि उसके हमें मूल भी पता चल जाता है ये चीज इस रेंज में आएगी, 100 रुपए से लेके 200 रुपए की आएगी।
1: हाँ, तो आपको बता दिया, फिर कोई आपसे 500 नहीं ले सकता,
0: 500 नहीं ले सकता।
1: जी जी, जी। अच्छा, एआई का उपयोग जैसे आपने कहा भाई हम बीमारियों के लिए, वैरायटी के लिए, अपने क्षेत्र की उपयोगिता के लिए, और भी बहुत सारे जैसे तकनीकी विकास की आप बात कर रहे हैं, एआई और कहाँ कहाँ आ गया है? अगर जैसे हम कहें कि भाई एक एरिया में बहुत छोटे छोटे किसान हैं, उनकी माली हालत भी ठीक नहीं है, तो संगठित होकर के और एआई का इस्तेमाल करके भी बहुत सारी चीजों का हम आगे विकास कर सकते हैं।
0: बिल्कुल कर सकते हैं। ये लाइव स्टॉक जैसे कि हम पशुपालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, इन सब में सबके लिए अलग अलग एआई टूल आ गए हैं, और उसके बाद एआई टूल के माध्यम से हम ये तक जानकारी एकाग्रित कर सकते हैं कि हमें अपना सही मूल कहां पर मिलेगा, हमारे प्रोडक्ट का सही मूल कहां पर मिलेगा। जैसे कि आज के दौर में मंडी के सारे भाव अलग अलग ऐप पे अलग अलग दिखाई देते हैं, हमने चार ऐप डाउनलोड कर रखे हैं, चारों ऐप से हमने देखा कि कौन सी मंडी में क्या मूल आ रहा है। अगर एक ही मंडी के तीन मूल दे रखे हैं तो उस ऐप पे रेट आपके अपडेट नहीं हो रहे हैं, तो हमें ये इस चीज का भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज, मौसम आधारित ऐप भी है। सबसे बड़ी चीज, किसान को आज के टाइम में इतना जागरूक तो किसान हो गया, उसको ये मालूम है बारिश कब आएगी।
1: हाँ, इतना पता लग जाता है,
0: इतना उसको बहुत आसानी
1: से उस तरह कर लेता है,
0: मैनेज कर लेता है कि बारिश कब आएगी उसको मालूम है, उस पर अलर्ट भी आ जाएगा, ऐप डाउनलोड कर रखा है वो उसमें देख भी लेगा कि इतने बजे बारिश आनी है, तो वो अपने हिसाब से उन कामों को मैनेज कर लेता है। दूसरी चीज, आपने ड्रोन के बारे में सुना होगा, ड्रोन भी एक ऐसी मशीन है जो कि एआई ड्रिवन है, एआई से ही वो जो उसका कार्यविधि करने का तरीका है संचालित होती है, वो एआई के माध्यम से ही होती है। वो एक ऐसी मशीन है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती हैं, जो कैमरे के माध्यम से देखती है आपकी क्रॉप को, फसल को, कि कहां पर कितने न्यूट्रिएंट की जरूरत है। मान के चलिए कहीं तो न्यूट्रिएंट की जरूरत है, कहीं नहीं है, तो वो स्प्रे भी उसी हिसाब से करेगी जहां जरूरत है, जहां जरूरत नहीं है वहां स्प्रे नहीं करेगी। सेम चीज खरपतवार नाशी के लिए है, जब वो खरपतवार नाशी स्प्रे करेगी जहां पर उसे दिखाई देगा खरपतवार है वहां स्प्रे करेगी, वहां बाकी जगह नहीं करेगी। लेकिन तकनीक के संग, हमारे देश में अभी इतना विकास भी नहीं हुआ, तकनीक के संग मौसम को भी हमें देखना है। मान के चलिए हम ड्रोन को चलाने लगे और तेज हवा है, ड्रोन बेचारा क्रैश हो जाएगा, स्प्रे प्रॉपर हो नहीं पाएगा।
1: ये भी व्यावहारिक चीज भी देखनी
0: है, ये सब चीज भी हमें देखनी है। क्योंकि मान के चलिए मैं एक व्यापारी के तौर पर अगर बात करूं, मैंने ड्रोन खरीद लिया, अब मुझे तो किसानों के यहाँ स्प्रे करूंगा तभी आमदनी होगी, तो मैं तो दोपहर में भी जाके स्प्रे कर रहा हूँ, शाम को भी जाके स्प्रे कर रहा हूँ, हवा में भी स्प्रे कर रहा हूँ, और जब हवा नहीं है तब भी स्प्रे कर रहा हूँ। किसान को फायदा कब होगा? जब मौसम अनुकूल उसके हवा रुकी हुई हो, प्रॉपर स्प्रे उसके खेत में हो पा रहा है, तब उसको उसका इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। और हमारे क्षेत्र में, हमारा माठ क्षेत्र पड़ता है, वहां पर गन्ने की फसल अब थोड़ी बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई है, तो वहां पर लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं गन्ने में स्प्रे करने के लिए। तो ये भी एक नए तरह का उद्यम है, किसान ने एक ड्रोन खरीदा और परीक्षण लेके वो पायलट का उसको लाइसेंस मिल जाएगा, फिर वो किसानों के खेतों पे अगर स्प्रे कर रहा है आमदनी का जरिया बढ़ गया उसके लिए।
1: जी, मतलब चीजें बहुत आ रही हैं,
0: चीजें बहुत।
1: तो कुल मिलाकर के एक चलते चलते मैं ये जानना चाहूंगा कि जो किसान की जो जागरूकता है
0: जी,
1: वो बहुत मायने रखेगी आज के समय में, अगर वो कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि चीजें इतनी है कि वो ऐसे ही है बाढ़ में एक अच्छा पानी पीने का वो तलाश करना, तो जानकारियों का अंबार है, उस जानकारी मेरे लिए कितनी उपयोगी है वो जागरूकता जब किसान पालेगा तो फिर उसका काम थोड़ा आसान हो जाए।
0: जागरूकता पालने की उत्सुकता होनी चाहिए उसके अंदर, लोगों से बात करने से घबराना नहीं चाहिए और

0: कभी भी किसी के भी दिमाग में ये चीज नहीं होनी चाहिए, मैं जानता हूं तो मैं सही हूं, सामने वाला गलत है। हमें अपनी भी कहनी चाहिए, सामने वाले की भी सुननी चाहिए। जब तर्क वितर्क होगा तभी ज्ञान का,
1: तब व्यावहारिक वो समझ निकल के आएगी, तभी समाधान निकल।
0: साथ में हमें तकनीक का इस्तेमाल करके उसको वेरीफाई करना है। मान के चलिए मैं कोई चीज बता रहा हूँ सही है गलत है, तकनीक भी बता सकती है उस चीज को कि अगर मैंने जो चीज कही है तकनीक भी वही चीज बता रही है, मतलब मैं सही बता रहा हूँ। अगर दोनों में कुछ ना कुछ सामंजस्य नहीं बन रहा है, मतलब या तो मैं गलत हूँ या फिर हो सकता है जो मशीन बता रही है, मशीन भी जरूरी नहीं है सही बता है। हमें अपना अपनी जागरूकता अपना विवेक देखते हुए ये भी देखना है कि जो हम मोबाइल पे देख रहे हैं नेट पे देख रहे हैं वो जानकारी सही है या गलत है।
1: गलत है,
0: क्योंकि जितने भी AI टूल हैं उस पर जो हम जानकारी देखते हैं उसके बाद साफ साफ लिखा आता है ये जानकारी 100% सही हो, ये इसकी
1: कोई गारंटी नहीं। तो वो गारंटी तो हम हमारी जागरूकता ही देगी।
0: हाँ, उसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए।
1: तो किसान भाइयों, बात यही थी कि बहुत कुछ तकनीकी ज्ञान है, बहुत कुछ जानकारियां हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, मतलब बहुत कुछ है जिसको हमें अपनाना है, लेकिन हमारी व्यावहारिक समझ कितनी है कि मेरे लिए क्या उपयुक्त है मेरे क्षेत्र में मेरे लिए, तब उस जानकारी का इस्तेमाल करेंगे तो वो लाभ देगी और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अंकित जी, जानकारी दी इस AI से जुड़ी हुई, ये व्यावहारिक जानकारी मैं समझता हूँ किसान भाइयों को अच्छा लगेगा, उपयोग करेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे। आप आए, जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। राम राम।
2: भैया अभी आप जानकारी ले रहे हैं जानकारी ले रहे हैं प्रगतिशील किसान अंकित अग्रवाल से, इनसे बातचीत कर रहे OP सिंह। कृषि क्षेत्र में AI का उपयोग और किसानों की जागरूकता, हमें उम्मीद है कि इनकी दी हुई जानकारी को लाभ हमारे किसान भैया बहन जरूर उठाएंगे। भैया अब एक जरूरी सूचना, किसान भैया जहाँ मंगलवार को यानी 2 तारीख कल संध्या को 6:15 से 30 मिनट को जो हमारा हेलो किसानवाणी कार्यक्रम हो, वह जावार को विषय है पशुपालन से जुड़ी है किसान और खेत की समृद्धि। किसान भैया और पशुपालक भैया, भूमि सुधार मृदा की उर्वरता बढ़ावे हेतु जैविक उपाय, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात पर जानकारी, बदलते मौसम में अपने पशुओं की उचित देखभाल, उनको आहार आवास व्यवस्था एवं लू से बचाव तथा बरसात से पूर्व टीकाकरण पर जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी। भैया एक बार फिर से नाम सुन लें, डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी। हमारा फोन नंबर है 25-30-135 पर फोन करके, या मोबाइल नंबर 9412225575, फिर से सुन लीजिए 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी से। कार्यक्रम को समय एक बार भैया फिर से ध्यान से सुन लियो, संध्या को 6:15 से लेकर 6:45 तक सूचना समाप्त भई। भैया चलते चलते अपने भैया को जरा मौसम की जानकारी भी दे दें। भैया मौसम विभाग के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 मई से 2 जून के बीच में स्थानीय स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक के साथ बिजली गिरवे, ओलावृष्टि और तेज हवान की चेतावनी जारी करी गई है। जयले भैया, हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी बिजली तेज हवाओं को देखते हुए किसान भैया को सलाह दी जावे कि जानवर उनको खुली जगह पर ना बांधें, पेड़ों के नीचे बांधें, वर्षा और आंधी के समय पेड़ों की शरण लें, लेकिन ध्यान रखें आंधी के दौरान पेड़ से थोड़ा दूरी बनाए रखें। पशुपालन करने वाले भैया बहन भी जावाद को विशेष ध्यान रखें। वर्तमान मौसम को देखते हुए कहो जावे कि पशुओं को रात के दौरान खुले में बांधें, पशुओं को दिन के समय छायादार स्थान पर बांधें जिनते उनको गर्मी से बचाव है सके, पेड़ के नीचे पशुओं को ना बांधें। तेज हवा की गति सामान्य तेज चलने के कारण पेड़ की टहनी गिरवे की संभावना अधिक रहे। पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग की रोकथाम के काजे वैक्सीन लगड़िया बुखार से बचावे हेतु VQ वैक्सीन

से टीकाकरण अवश्य कराएं। पशुओं को हरे चारे, सूखे चारे के साथ पर्याप्त मात्रा में अनाज भी दें। पशुओं को साफ एवं ताजा पानी दिन में 3-4 बार अवश्य पिलाएं। गर्भित पशुओं को ढलान वाले स्थान पर न बांधें। पशुओं को पेट में कीड़े की रोकथाम के काजे कृमिनाशक दवा देने को भी ये समय उचित है। भैया, इन्हीं जानकारी के साथ हमारा ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम अब संपन्न हुए। सभी भैया बहनान को राम राम।

अभी आप ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं अनूप जलोटा की आवाज़ में गाया ये भक्ति गीत।

0: अनुराधा पौडवाल, हरिहरन और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने चार धाम फिल्म की भक्ति रचना सुनी। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, ब्रज साहित्य कार्यक्रम। यह कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा में ब्रज वार्ता, ब्रज संस्कृति में हास परिहास। वार्ताकार हैं ओंकार सिंह जायस।
1: परम स्नेही भैया और बहनाओं, या मानव जीवन में हम सभी न जाने कैसी कैसी सम विषम परिस्थिति को नित्य प्रति सामनो करो करे हैं। कबू दुख तो कबू सुख भरी परछाइन में जे मन माली भ्रमण करती रहे है। परमात्मा की सिगरी प्रकृति में हूँ, पुष्पन में लता पताकान में हरित माँ और मुस्कान सो भरी खिलखिलाहट की असीम आह्लाद मई जीवन शैली को समायोजन करके मनुज मन को जे प्रत्यक्ष संदेश दियो है कि चाहे गुलाब जैसे कांटे ही चौन होए, फिर मुस्करामत रहो खिलखिलामत रहो, जी तो जीवन है। जिंदगी को सांचो सा दर्शन यही है, उदासी और खिन्नता ही तो हमें मृत्यु सदृश कालगत की पगडंडी पर ले जानो चाहे हैं। आज चिकित्सा और मनोविज्ञान ने बड़ी ही सार्थक और प्रभावशाली ढंग से ये बात सिद्ध कर दी है कि यह भागम भाग व्यस्तम भौतिकवादी युग में मुस्कान मृद मुस्कान न जाने कौन सी खो में जाए छिपी है, और या के अभाव में मानव जीवन एक जिंदी लाश समान दिखाई पड़े है। आज अब्र संस्कृति में सो बांसुरी की मधुर प्रेम ध्वनि, भैयाचारों मेला त्योहार पर्व और विविध सामाजिक सम्मेलन को पलायन बड़े ही त्वरित गति से हो रहे है। हम सभी न जाने कैसी कैसी चित्र विचित्र आधि व्याधीन में फंसे जा रहे हैं। हंसी तो बड़ी मुश्किल से मिल पावे है हमारी ब्रज संस्कृति में। विभिन्न मौके पे व्यंग और हास्य परंपरान को प्रचलन हतु, पर आजकल उनमें भारी कमी दिखाई देवे है। फिर कहूं कहूं थोरो घनो प्राच्य दर्शन ब्याह बरातन में और अन्य पर्व त्योहारन में विद्यमान हतु है। पहले तो इन शादी ब्याहन में ज्यादातर हंसी मजाक जीजा सारी की ठिठोरी होई करे ही। इन बरातन में जब तक नच गैया नाए हो तो तब तक सबर और रसफी को दिखतो। सिगरे गांव की बड़ी बूढ़ी और छई छापरी दूल्हे राजा को देख के जरूर टीका टिप्पणी करती, अरे बहना छोरा तो छोरी के पावन को धूमन नाए, जा संगीता के बाप ने का देखो कारो तय को सो पहो, और छोरी अरे बहन भक्कभूरी एकदम राजकुमारी मानो बाकी तो भागी फूट गए। दूसरी कहन लगी, अरे चुप रहे तो कछु सला हुआ है, छोरा पटवारी है बीए पास है समझी, बेकार जाने ताने बके ही जा रही है। जैसे ही भैया बरात दरवाजे पर आमती तो बस गारी और गीतन की बरसात शुरू है जाती। अपनी

तंग फिरेंगे। जयमरार में मगन है रहे जी बराती और महिला मंडल ढोल की लायके गारी गमन में मगन भह रही हैं। मरन न दूंगी रे जीजा संग सती है जाऊंगी। और

देती वो आनंद न जाने कहाँ बिल गायो, बाकू को खाएगो। पाश्चात संस्कृति हमारे घरन में घुसन लगी है और हम कोरी बाबूगिरी एलकारी के चक्रन में अपनी ब्रज की सौधी शांति प्रिय संस्कृति के सत्यानाश करवे में लगे। भैयाओ हंसबो मात हंसबो ही ना है, जी तो एक ऐसो मधुरिम अमृत पान हुए जय पी के अमृत तो पाए सके हैं। मुगल शासक अकबर ने हूँ अपने नवरत्न में हाजिर जवाब और प्रसन्नता के साक्षात प्रतिबिंब बीरबल को स्थान देके हास्य व्यंग की महत्ता प्रस्तुत करी ही। आज ब्रज साहित्य और समाज में अनेकन मनोरंजन चुटकुला और व्यंग वाक्य काव्य प्रचलन में है। काका हाथरसी अपने हास्य व्यंग के कारण सो ही ब्रज संस्कृति में अमर हो गए हैं। या के संग ही संग हर नाट्य विधा जैसे नुक्कड़ नाटक और लोकप्रिय नौटंकी मंच में मशहूर धर्मपाल चौधरी तथा छज्जन सिंह हास्य कलाकार ने अपनो मुख्य स्थान बनाए रखियो है। कछु से चुटकला आपू एक सुनो। कल परसों एक लड़का अखबार बेच रहे हो, बड़ी जोर जोर से आवाज लगा रहे हो, आज की ताजा खबर अखबार ले हो 10 आदमी बेवकूफ बन गए, आज की ताजा खबर। एक आदमी जल्दी ते आयो अखबार खरीद के पढ़न लगे। भाई जी खबर कहूं ना मिली तो वह लड़का से बोलो, अरे यहां कहा है जी खबर इतकुआ। छोरा आगे बढ़ेगो और आवाजन लगा मन लगे, आज की ताजा खबर 11 आदमी बेवकूफ बन गए। प्यारे श्रोता जी ब्रज बड़ो ही विचित्र कन्हैया नटकत, कन्हैया के माखन चोर ग्वाल बाल गोपी गुजरी इनकी कीड़ा भूम रही है। यहाँ बड़े बड़े भाजी खोर रहे हैं, आज ही ना वह पुराने युग में इनने कोई कोर कसर ना रखी। एक छोटो सा प्रसंग शिव जी के ब्याह को सुनाना चाहूँ। जब श्री राम जी ने शिव जी से मैया पार्वती के संग ब्याह की प्रार्थना करी तो शिव जी ने अपने 6-7 ऋषि यानी कि सप्त ऋषि मैया पार्वती के मन की थाल है भी भेजे हते। जब ऋषिगण ने पार्वती से तपस्या को कारण पूछो तो पार्वती ने साफ बताई दी कि मैं अपने गुरु नारद जी के आदेश से शिव जी को अपनो पति बनाना चाहूँ, ताई से तपस्या कर रही हूँ। सुनत

कैसे गे? अरे वाह पार्वती, तुम्हारो शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न भयो है, तुम में समझ कहाँ ते आवे? भलो सोचो समझो, नारद जैसे कपटी संत कबू काउ को भलो चाहे सके हैं? आज तक उनके उपदेशन सो कौन को घर बस्यो है? नारद ने ही तो दक्ष के पुत्रन को उपदेश दियो हो, सो आज तक घर ना लौटे। और बताओ, बस शंकर की कोई बात रही? मस्त सती के मरवे के बाद शमशान में मौज कर रहा है, न घर न द्वार, भूत पिशाच नर कंकाल मुंड माल सांप बीछू जाको सिंगार होए। वारे नारद वाह, तो जा पार्वती सो कादो सो मनी जो तेने याकू जे रूप स्वरूप जादो दूल्हा बताए दियो। छी छी छी, तुम छोड़ो बा नारद पाखंडी की बात, हम तुम्हें ऐसो सुयोग्य संपन्न अखिल विश्व अभिराम वर्षों मिलवाए देंगे कि तुम हमारो कबू ऐसा नहीं भूलोगी। बताओ तो सही, या नारद को कहा सूझी, या भाजी खोर मंडली की बातन को सुन के पार्वती हंस गई और बोली, जन्म

हर महेशु वा वंशी बारे के हास्य परिहास की मिसाल कहूँ मिली ना सके। देखो ना उनको हास्य कितनी सीख लिए भय है। गोपिन में यमुना स्नान करके नियम सो ब्रजराज कान्हा के दर्शन की अभिलाषा प्रकट करी तो कन्हैया वहाँ प्रातः ही पहुँच गए। कन्हैया ने नग्न स्नान करती भई गोपिन के चीर उठा लिए और वे बिचारी शर्म की मारी निवेदन करने लगी, प्रभु हमें क्षमा करो, जे पाप भूल सो बन गया है आगे सो हम कभू भूल ना करेंगे। हास्य परिहास की खितिज जग प्रसिद्ध होरी को तो का बखान करूं, जा मैं छोटे भैया की बहू सो जेठ भाभी कहन लगे है।

महल चढ़ी आइयो रसिया, ऊंची अटरिया पे पलंग बिछो है रसिया, ऊंची अटरिया पे पलंग बिछो है, तो सक गिलम गली चात की आरे डोरी डारूंगी महल। ब्रजभक्त शिरोमणि पुरुषोत्तम के शब्दन में सुनो आज।

0: छेल अटरिया में ब्रज रसिक जन जे एक कट सत्य हु जान लेव के अति सर्वत्र वर जाइए तो हर काम एक मर्यादा और संतुलित मात्रा में ही शोभा पावे है, अन्यथा तो फिर बाको दुखद परिणाम ही भुगतनो पड़ेगो। फिर आगे रही आपकी इच्छा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।
1: अभी आपने जब ब्रजवार्ता सुनी, ब्रज संस्कृति में हास परिहास, वार्ताकार है ओंकार सिंह जायस। और अब ये के संग आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम संपन्न हुए है। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए किसान भाइयों, इस मंगलवार दिनांक 2 जून 2026 को शाम 6:15 बजे से लेकर 30 मिनट की अवधि के हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में इस बार का विषय रहेगा पशुपालन से जुड़ी है किसान और खेती की समृद्धि। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी, किसान भाई, पशुपालक भाई। भूमि सुधार एवं मृदा उर्वरता बढ़ाने हेतु जैविक उपाय, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात पर जानकारी, बदलते मौसम में पशुओं की उचित देखभाल जैसे उनका आहार, आवास व्यवस्था एवं लू से बचाव तथा बरसात से पूर्व टीकाकरण पर जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। कार्यक्रम का समय रहेगा कल मंगलवार शाम 6:15 से लेकर 6:45। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो

0: करने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: बोल बोल के थक गया, क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले
2: ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों समेत उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित, कहा प्रदेश में नकलविहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र, कहा सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित, 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को दो पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया। इनमें प्रदेश स्तर पर शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1,00,000 रूपये टैबलेट प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। वहीं जनपद स्तर पर टॉप 10 में स्थान बनाने वाले विद्यार्थियों को 21,000 रूपये प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और परीक्षाएं नकल विहीन ढंग से संपन्न हो रही हैं। श्री योगी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर प्रदेश में अनेक नवाचार किए गए हैं।
6: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर छात्र छात्राओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ करवाए हैं। अटल टिकरिंग लैब भी उसी का एक उदाहरण है। डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जो छात्र छात्राओं को उन नवाचारों के साथ जुड़ने के लिए, जो उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
5: मुख्यमंत्री ने आज बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में प्रदेश के विकास को गति मिली है और बिजनौर भी उस विकास से अछूता नहीं रहा है।
6: बिजनौर के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आज तो बिजनौर में अपना मेडिकल कॉलेज हो गया और महात्मा विदुर के नाम पर हो गया। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं और अभी गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम इधर से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये विकास यही परिवर्तन लाएगा, हर एक तबके के लोगों को नई सुविधाएं दी जा रही है।
5: बिजनौर के बाद मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में विकास कार्यों और माता शाकंभरी देवी कॉरिडोर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीते दिनों आंधी बारिश के चलते जनपद में हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध

0: पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। 32,000 से अधिक पदों के लिए होने वाली इस भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते राज्य में अपराधों में काफी कमी आई है। 31 मई 2025 से कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्यरत राजीव कृष्ण को कल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के तौर पर नियुक्ति दी गई है, जिसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई पुलिस विभाग की प्राथमिकता है।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई, कानून व्यवस्था लगातार अक्षुण्ण रहे उसके लिए लगातार चलने वाली कार्रवाई, जितने भी मेले पर्व त्यौहार हैं उसमें एक शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाए इसके लिए लगातार सतत बंदोबस्त की अरेंजमेंट, ये सभी प्राथमिकताएं हैं जिन प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य करती रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
2: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। इसके अलावा भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में फेरबदल करते हुए प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाया है। वहीं प्रभारी निदेशक वैकल्पिक व साक्षरता शिक्षा उत्तर प्रदेश अनिल भूषण चतुर्वेदी को प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है। शासन के विशेष सचिव के गुप्ता की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आज से 7 जून तक गौशालाओं में विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं डेयरी गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही प्रदेश की सभी गौशालाओं में स्वच्छता, पशु कल्याण, गो संवर्धन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पशुधन मंत्री ने कहा कि अभियान के तहत राज्य सरकार मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत 4 निराश्रित गोवंश लेने वाले किसानों और पशुपालकों को

को 72,000 रूपये की सहायता भी प्रदान करेगी। प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। हमीरपुर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जौनपुर में भी तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है।

0: और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र, कहा सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित, 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को दो पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: Hey guys, congratulations! आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। स्वास्थ्य वार्ता के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दो भेंट वार्ता।
5: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं आपके संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। हमें जो संदेश मिल रहे हैं उनके नाम हैं गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। आप हैं लाल माता सुदामा नगर रडलाई जिला झालावाड़ा राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ा राजस्थान से मन भावन शोभा कपिल नैना सत्यनारायण और फुंदी भाई बागरी। गांव गोपी की नगरिया से मिट्ठन लाल सारस्वत नेहा नीरज निकेता और इनके माता पिता। गांव नगला पोला से विजय सिंह भानु प्रताप सिंह अनुराधा रामानुज राधिका पवन करण भोला नमन और इनके परिवारीजन। ये संदेश हमें भेजा है दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा ने। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही और मेराज जहां। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा मधु बालूजा सागर बालूजा और सतना MP से उमंग मलिक आकांक्षा मलिक और माही मलिक। श्रीरामपुर भोकर महाराष्ट्र से अनिकेत सोनवणे शुभांगी श्रावण और अनीता बिडवे। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद देवांगन पराग तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन। गांव नौघरा से कोमल मास्टर यशोदा सूरज रोहित चंचल संजना शिवानी और इनके माता पिता। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनमाला सुरलकर आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान आयशा सबीहा अनस और रेहान। गांव कुमोदवन से रमेश चंद्र सेन सुनील रचना गब्बर और उनके परिवारीजन। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत सोनिया शुभांश चुन्ना और इनके माता पिता। गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी सविता राधे राकेश रंजन राजीव रंजन संजय कुमार ओम कुमार गुंजेश कुमार रिया रानी और उनके परिवारीजन। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे वसंतरा भोजने और PS नवानकर। सदर बाजार कोरावली से अनिल कुमार वर्मा माया देवी वर्मा राहुल कुमार वर्मा विनीत कुमार और सोनम वर्मा। आप हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़ मंजुला विशाल और निशा। गांव चोहलदा बागपत से संजय ढींगिया नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। आइए सुनते हैं आप सबके लिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को नीरज की शब्द रचना।

0: संगीत निर्देशक एस डी बर्मन, फिल्म का नाम प्रेम पुजारी।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने प्रेम पुजारी फिल्म का गीत सुना, और अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार के साथ आशा भोसले को। फिल्म का नाम है तोहफा। पसंद भेजने वाले श्रोता हैं सादुल शेर राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। ग्राउंड पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शुभांश वर्मा। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। गडकेनगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मणराव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और अक्षता लोखंडे। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर और उनके परिवारीजन। गांव कुमारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब और उनके परिवारीजन। करनमीरी हाउस भूचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सीमू एकम, दमन और अभिजोत। ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया। रसीड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और डीकेश साहू। नाज मंजिल मैसोल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम और उनके मित्रगण। बरबट वकाल बुरनाणा से नारायण हागे, कमल दिव्या और जय हागे। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। दादरगेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और कृणाल मेहरा। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, रोशनी, चेतन, विशाल और बेबी प्रियांशी। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष विवेक और आयुषी श्रीवास। अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका और उनके परिवारीजन। जोहरीवाड़ा पैठण से मोरबे फहीम, मोरबे आसमा, मोरबे खुशी, मोरबे अंजुम और मोरबे गोरे। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल और सिया जाधव। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु, आशी, शिवन्या और अन्नू गोस्वामी। भावी नीमगांव महाराष्ट्र से श्रीराम गोंधली, उषा, हर्षदा, वैष्णवी, पूनम और युवराज गोंधली। रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन और उनके परिवारीजन। आप हैं नास पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुन्नाज हाशमी, असद, अरहम और हाशमी परिवार के सभी सदस्य।

ये थे किशोर कुमार और आशा भोसले, फिल्म थी तोहफा। अब जो हमें संदेश मिले उनके नाम हैं जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद।

और तरुण यादव, आप हैं मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, जय भीरू, कपिलेश्वर कुमार गुप्ता, भूलिया देवी गुप्ता, आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा, गांव कैरो, जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशबद, वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजु श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण संस्कृति और पौरुष, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू जाजोरिया और गुड्डू, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे यादव, संचित वयाल, सर्वद्र देशमुख, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सानवी, कल्पना देशमुख और उनके परिवारीजन, शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव, ईशान और कार्तिक सैनी। आइए सुनते हैं आप सबके लिए लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह को, फिल्म है सत्यम शिवम सुंदरम, शब्दकार बिट्ठल भाई पटेल, संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

साधना सरगम की आवाज में विश्वात्मा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीतानंद बख्शी का था, संगीत निर्देशक थे विजू शाह। हमें जो संदेश मिले उनके नाम हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डेकेस्ट्रो, रोजी डेकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डेकेस्ट्रो, आप हैं नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डाबर खुश नसीब, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर और मोहम्मद उमर डाबर, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश और प्रमिला वंछोर। ये संदेश भेजने वाले श्रोता हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्मी गर्वी और हिमाक्ष।

0: साइड में बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस मिलते थे कि जहां पानी की समस्या इतने साल बाद भी आजादी के, मतलब ये एक किसी भी देश के लिए कोई अच्छी कन्वीनियंट स्थिति नहीं है, कन्वीनियंट पिक्चर नहीं है कि आप एक बेसिक सुविधा, जैसे आप पावर की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, या पानी की बात कर लीजिए, टॉयलेट्स की बात कर लीजिए, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई। और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से तो बहुत ज्यादा लाभ होता है, और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं, जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इंप्रूव हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट गर्भवती महिला के लिए ये एक बून की तरह आया है, क्योंकि बहुत सारी वाटरबॉर्न डिजीजेस, गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था, और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है, बल्कि बहुत सारी, मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था, वो अब और चीजों में वो व्यस्त हो सकती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती है, क्योंकि उसके पास अब वक्त है, घर में पानी आ रहा है। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन बहुत बड़ा प्रभावी कदम है।
1: जी जी जी अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़े। शुभ में सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद, पता नहीं, इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी। सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसहोल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। शुभ में क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
2: हाँ, ये वाला चीज जो आप देखेंगे
1: जी,
2: कि पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट। आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारे जगहों पे ओपन डिफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां, उनका खासकर मॉनसून में फैल जाना, बाकी समय में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम सरफ चीज था कि भाई होता है, क्या किया जाए। इसमें जो भी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं। अभी आप, मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं, कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे, दूर दराज के रास्ते में चलते हुए एक जो कॉमन साइट था ओपन डेफिकेशन का, वो करीब एकदम वैनिश हो गया, और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है। इसमें टाइम लगा, इसमें करने में शुरुआत में बहुत सारे हिचक आए, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस करने पड़े, लोगों को बहुत सारे हिदायतों के साथ साथ बहुत सारे आग्रह का भी इंटरेस्ट चीजें दिया गया, इधर उधर की जिसे कहते हैं शॉर्टकमिंग्स भी आई, लेकिन इतने साल के बाद अब जाके उनका इफेक्ट लोगों के जिंदगी के ऊपर अभी दिख रहा है। और ये एक, मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज इसलिए है कि ये एक तरफ एक सिविक चेंज आ गया है हमारे देश में, बहुत सारे इलाकों में। अब जिन सारी चीजों की बात करें, जैसे ओपन डेफिकेशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन के साथ उज्ज्वला, या उसके पहले जब जैम ट्रिनिटी, इन सब के चलते लोगों में जो एक नया वार्तालाप का सिस्टम आ गया, एक नया जैसे कहते हैं आइडियाज का एक कॉम्बिनेशन बन गया है कि ये सारी चीजें तो जिंदगी में होनी चाहिए, इनका ना होना ही आज आश्चर्य की बात लगता है बहुत काफी जगहों पे। ये जिसे कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, एक बहुत बड़ा चीज है डेमोक्रेसी के लिए, बहुत बड़ा चीज है लोगों में अपना भरोसा बनाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि हम इससे आगे चल सकते हैं। ये सारी चीजों के लिए हमें डेली का जो लड़ाई है वो जूझना नहीं पड़ेगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सब हमारे लिए, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वो उपलब्ध रहेंगी।
1: एब्सोल्युटली शुभमा, अदिति, टॉकिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नेट, ऑफ कोर्स शुभमा आल्सो मेंशन्ड अबाउट यू नो द हेल्थ एस्पेक्ट। हेल्थ इज वन थिंग विच जस्ट कैन नॉट बी ignored, that is one, and of course the importance of it cannot be overstated. If you look at the Western countries, the more advanced economies, they have their own safety nets, they have their own social well, healthcare schemes and so on and so forth. In India, if you talk of you know, maybe let's say 10-12 years or 15 years back or even more, probably there was not much to offer by any of the governments, if I may say, over the years, over the decades in fact, that they could

0: This is relatively more recent. So it'll start showing its effect later. But already you can see from the PLFS survey, the Periodic Labor Force survey, that about 50% of Indians are now reporting self-employment. And that self-employment is not distress employment. It is employment, self-employment that is being made possible for a large number of percentage of them because they are confident that they can take on these enterprises and can take on capacity building, expansion of their products and services, which wasn't possible earlier. How it will pan out is a very big thing. Remember, we are talking about a population base, which is the largest population base in the world. To be able to create self-employment in that sort of a large population, being able to support themselves, being able to support their families, being able to carry on the business for long length of time, not being drawn into the race for getting a job. Here, there we are talking of plenty of changes, which is not very easy to think of as just, you know, suddenly that we've done it and it's one-time support. It's not a one-time support. It's something which is actually a result of series of interventions, which brings a scheme like Mudra into being a success that it is being envisaged.
1: Yes. Right, Shubman. Riti, abhi Shubman ne self-employment ki baat ki, stand-up India scheme bhi ek aisi scheme hai, jiske tahat 15,000 plus crore loan abhi tak disburse kiye ja chuke hain. Is baare mein bhi thoda hame bataen. Aur पीएम स्वनिधि योजना जो कि एक बहुत ही जिसे कह सकते हैं एक फ्लैगशिप स्कीम जिसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे?
2: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है. वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था कोविड-19 के दौरान. जून 2020 में ये शुरू की गई थी. उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे.
1: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
2: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं. तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि कोविड-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं. तो तब से इतनी इंपॉर्टेंट बन गई स्कीम और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला. सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीजें कर सकते हैं. तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है. और ना सिर्फ ये किया गया है, तीन लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को. पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20 से 25,000 कर दिया गया है और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है. और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं. प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम. तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है. 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के.
1: राइट अदिति, लेट्स टॉक द वुमेन फोक. लखपति दीदी अभियान, ये लगभग 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है, कुछ बताएं इसके बारे में.
2: जी, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की. और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है. जो 6,000 की रकम तय की गई है, ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा. इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी. पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की। ये चार स्तंभ हैं, जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाएं, जिसकी वजह से ये हुआ है कि

सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है, करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला एक साल में 1 लाख रुपए अपने बलबूते पर कमा सके। उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे द्रोण दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। कुछ महिलाएं द्रोण

0: ग्रेड किया गया है। कुछ महिलाएं ड्रोन दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीजें कर रही हैं। सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। फिशरीज में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को। उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है। और एक चीज की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में। ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है। तो वहां मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और यूएस का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है, और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहां बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट, एक इम्पोर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं, उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घटके 5.3% रह गई है। तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है। इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज, जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी, अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी। अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में हैं, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक। वो बनने के लिए चर्चा की है आपने, जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
1: करना है। राइट राइट, थैंक यू सो वेरी मच शुभमा आदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।
0: थैंक यू।
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: इन द स्पेशल सीरीज यू आर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharjee, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
4: अभी आप सुन रहे थे हमारी विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष होने पर। आज आपने सुनी इसकी पहली कड़ी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

समवेत सुरों में अभी आपने सुनी कुछ देशभक्ति परक रचनाएं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
2: I am confident that this comprehensive agreement
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
2: Of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों की विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
4: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो

0: जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से है।
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481, 011-237-1717 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
4: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9.

गोरा और काला इस फिल्म का गीत अभी आपने मुकेश और लता मंगेशकर के युगल सुरों में सुना। गीत आनंद बख्शी का था, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और आइए सुनते हैं साहिर की रचना, संगीत निर्देशक राजेश।

0: ये थे किशोर कुमार और साथी। फिल्म थी मंचली, गीत आनंद बख्शी का था, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: स्पीक।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, गर्मी का मौसम चल रहा है। ये मौसम जहां अपने साथ रसीले आम, तरबूज, लीची, खरबूज जैसे स्वादिष्ट फल लाता है, वहीं लू का प्रकोप भी। देश के कई हिस्से इस समय लू यानी हीट वेव से जूझ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बारिश होने से गर्मी से राहत भी मिलती है। भीषण गर्मी के मौसम में लू कई बार जानलेवा भी साबित होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम लू से बचाव के लिए सावधानियां बरतें। हमारा आज का कार्यक्रम इसी पर आधारित है। लू से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और लू लगने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो

0: तैयार करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं, नंबर है 2-3-3-1-0-4-8-1-2-3-7-1-7-1-7-2-3-7-1-7-1-0-6 और 2-3-3-1-4-4-4-4। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 0-1-1 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9-2-8-9-0-9-4-0-4-4। आप इस पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। आप हमारे एक्सेंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाशंकर वाजपेयी रायबरेली से। जी रमाशंकर जी।
1: जी नमस्कार। मैं पूछना चाहता था कि लू से बड़ी पुरानी सुनते आए हैं, लू में प्याज बहुत ही बचाव करता है और अन्य कोई भी साधन जिस तरह से लू से बचा जा सके वो कृपया बताएं।
2: रूपाली जी। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि लू के समय में प्याज से बहुत सावधान से बहुत ही बचाव मिलता है, तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, बट फिर भी जो हम पुराने समय से ये जो धारणाएं चलती आ रही हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। तो आप प्याज जैसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फ्लूइड इनटेक यानी कि पीने की जो तरल पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लू के समय में बचने के लिए है एक एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक यानी कि तरल पदार्थ का सही मात्रा में आपको आपको लेना है, और इसके अलावा आपको गर्म जगह से बचना है। मतलब अगर घर से बाहर जितना हो सके उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, घर जितना हो सके घर के अंदर रहना है, तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। खाने पीने में आपको जो भी आपको भी मौसमी फल जो मैडम ने अभी बताए तरबूज लीची आम इनका सेवन करना है, और तरल पदार्थ का आपको पर्याप्त मात्रा में सेवन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है।
0: डॉक्टर रूपाली, आपने कहा कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लिक्विड लेना चाहिए, तो किस तरह के तरल पदार्थों को लेना ठीक रहेगा ताकि जो शुगर का जो लेवल है वो बॉडी में वो कंट्रोल्ड रहे?
2: आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप आम रस आम पन्ना जो कि बहुत गर्मी के समय में बहुत ही एक कॉमन एक कूल ड्रिंक माना जाता है, बेल का रस, इस तरह के जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं आप उनको प्रिपेयर कीजिए, आप उनको लीजिए और आप नॉर्मल अपना पानी लीजिए। और अगर आपको डिहाइड्रेशन क्रैम्प्स जैसी अगर फीलिंग आती है तब आप ORS का जो मेडिकल ORS जो अवेलेबल है उसका सेवन भी कर सकते हैं।
0: श्रीकांत झागड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी क्या पूछना चाहते हैं आप?
3: हेलो
0: जी
3: नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: मैं श्रीकांत जाफरा बोल रहा हूँ पुणे महाराष्ट्र से। मेरा दो सवाल है, ये बहुत अधिक गर्मी में जैसे थकान है चिड़चिड़ापन है बेचैनी लगती है, तो उसी स्थिति में क्या करना चाहिए? और दूसरा ये था कि ऐसे में मतलब ब्लड प्रेशर वाले ने क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खासकर ना हाई बीपी वाले ने अपने?
2: हाँ जी, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जो हाई बीपी के जो मरीज़ होते हैं वो बहुत समय इस तरह की कुछ दवाइयों पे होते हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एंड वो जो लोग होते हैं दे आर प्रीडिस्पोज टू हैव हीट स्ट्रोक, मतलब उनको हीट स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है या कोई और आपको बीमारी से अगर आप ग्रस्त हैं, कोई भी क्रॉनिक आपको डिजीज़ है COPD एस्थमा ब्लड प्रेशर की बीमारी शुगर की बीमारी, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को धूप से गर्मी से बचा कर रखें, क्योंकि इसमें आपका जो कार्डियो रेगुलेटरी जो मैकेनिज़म्स हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह के मरीज को खास ध्यान रखना है।
0: डॉक्टर पटनायक आपसे हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हीट वेव यानी लू क्या है?
4: देखिए ये हीट वेव जो लू बोलते हैं बहुत भाषा में, तो हमारा जो समर टाइम में जो ज़्यादातर कि अप्रैल में जून थोड़ा सा जुलाई पार्ट में भी, तो क्या टेम्परेचर जो तापमान है ये तापमान है उसका साधारणतः नॉर्मल से कभी कभी ज़्यादा हो जाता है,

0: नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो ये तो गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना है तो टेम्परेचर ज़्यादातर ज़्यादा रहता है, लेकिन जो नॉर्मल होता है हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी 30 साल का एवरेज जो उसको नॉर्मल बोलते हैं उससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है, कंटिन्यूसली कुछ दिन के लिए प्रिवेल करता है, तो वो हम उसको एक हीट वेव डिफाइन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो 40 डिग्री से अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो एंड उसका जो नॉर्मल से 4.5 से 6.4 तक अगर हो गया तो हीट वेव हम बोलेंगे, अगर उस 6.4 से भी ज़्यादा डिपार्चर जो कि नॉर्मल से ज़्यादा इतना हो गया तो सीवियर हीट वेव बोलेंगे। तो ये एक डेफिनेशन के हिसाब में हम जैसा कि नॉर्मल से अगर इतना है तो करते हैं, और एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर 45 डिग्री हो गया तो हम उसको हीट वेव कर देंगे।
1: लेकिन क्या ये अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग होता है, जैसे कोस्टल एरियाज के लिए अलग होगा, प्लेन्स के लिए अलग होगा?
0: हाँ, कोस्टल एरिया के लिए थोड़ा सा है कि कोस्टल एरिया में 37 डिग्री होने के बाद भी हमने हीट वेव करते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में जो ह्यूमिडिटी का थोड़ा प्रभाव रहता है ना, तो इससे कारण ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो अगर तापमान बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन जो ह्यूमिडिटी जो होता जो एयर का ह्यूमिडिटी होता है कोस्टल एरिया में उसको मिलता है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा कोस्टल जो 37 डिग्री से ज़्यादा होना वो कोस्टल एरिया है।
1: और प्लेन्स के लिए?
0: प्लेन्स के लिए 40 डिग्री से ज़्यादा होना।
1: एक और श्रोता है हमारे साथ, राजू लवानिया आगरा उत्तर प्रदेश से। राजू जी
2: जी मेरा नमस्कार डॉक्टर साहब को, दीदी आपको भी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था जैसे घरेलू नुस्खों में तो खैर जैसे आम का पना है, बेल का शरबत है या नींबू पानी है, ये तो खैर पुराने जो नुस्खे हैं वो तो है ही, लेकिन मेडिकल साइंस में हीट वेव का परमानेंट ट्रीटमेंट और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है?
3: कि देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है कि आप जो गर्मी वाली जगह है उससे दूर रहें। तो अगर कोई किसी को भी इस तरह के लक्षण अगर आते हैं तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को फटाफट से गर्मी वाली जगह से दूर मूव करना है, उसके बाद हमें उनको ठंडे पानी की पट्टी करनी है, और साथ में अगर पॉसिबल है तो एक पंखा करना है, आप थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके और पंखा करें। पंखा करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे इवेपोरेशन से जब हीट उड़ती है तो उससे और ज़्यादा आपका हीट लॉस होता है, ज़्यादा देर की अगर आप खाली उस पर ठंडा कुछ रख देंगे, उसके अलावा आपको पंखा भी ऊपर से करना है, तो पंखे के आगे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के थोड़ी ठंडी पट्टी करना। तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज है जो कहीं भी किया जा सकता है।
1: लू लगने पर क्या लक्षण दिखते हैं?
3: देखिए, लू के लक्षण बहुत तरह के हो सकते हैं, माइल्ड लक्षण हो सकते हैं जिसमें कि आपको हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्किन रैश हो सकते हैं जिसको कि नॉर्मल भाषा में हम प्रिकली हीट बोलते हैं या घमोरियाँ बोलते हैं, तो उसमें आपको आपको थोड़ा पाउडर डाल लेना है, कुछ एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिनिक दवाई जैसे कि सिट्रोजीन वगैरह है उसका आप यूज़ कर सकते हैं, और पानी आपको अच्छे से पीना, और ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं, और हल्के रंग के हल्के कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो आपको पहनने हैं। तो ये हुआ हीट रैश के लिए। हीट क्रैम्प्स में आपको हो सकता है कि थोड़ा अकड़न जकड़न महसूस हो, आपको हाथ पैर सीधा करने में दिक्कत लगे, मांसपेशियों में आपको जकड़न महसूस हो, तो इस स्थिति में आपको फ्लूइड्स का ध्यान रखना, ये डिसइलेक्ट्रोलीमिया जो हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस जो हो जाता है हीट के वजह से वो उससे होता है, तो उस समय आपको मेडिकल जो ORS है, आप ना केवल जो बाकी तरल पदार्थ जो कि हम रूटीनली लेते हैं उसके अलावा आप मेडिकली जो ORS मिलते हैं, मेडिकल ORS आप उनका सेवन करें अगर आपको हीट क्रैम्प जैसा सिस्टम हो।
1: गंभीर लक्षण क्या होते हैं?
3: गंभीर लक्षण हो सकते हैं आपको हीट एग्जॉशन या फिर हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक सबसे सीवियर वैरायटी है जिसमें कि आपको बेहोशी, आपका एक तो जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 40 डिग्री कोर बॉडी टेम्परेचर जो कि आपका रेक्टल टेम्परेचर आइडली होना चाहिए, ना कि सरफेस सतह वाला नहीं, कोर बॉडी जिसमें कि रेक्टल टेम्परेचर आइडियल माना जाता है वो 40 डिग्री से ज़्यादा अगर आपका है तो वो, प्लस आपका कुछ भी बेहोशी का लक्षण, ऑल्टर्ड सेंसोरियम जिसको बोलते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरह का कोई भी लक्षण है तो ये आप सबसे सीवियर फॉर्म जो होता है हीट स्ट्रोक का उसमें गिना
1: तो
3: जाता
1: अगर है। अगर ऐसी स्थिति हो तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले तुरंत बिल्कुल, क्या बिल्कुल, सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है?
3: फटाफट आप उनको ठंडी जगह, तो हल्के कपड़े, ढीले कपड़े और गीला करके, कपड़ा गीला करके पंखा उसके ऊपर करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन अस्पताल में भी जो सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाएगा यही दिया जाएगा। हीट स्ट्रोक दो तरह का होता है, क्लासिकल और एक्सर्शनल। तो क्लासिकल में आपको यही सबसे इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव मेथड

0: जो एग्जर्शनल होता है, उसमें बहुत बार हम इमर्शन भी बोलते हैं कि आप उसको ठंडे पानी में इमर्स कर दो, कि कपड़े सब हटा के किसी ठंडे पानी के टब में लिटाना, वो एग्जर्शनल हीट स्ट्रोक में होता है। बट जो आजकल जो मिलता है उसमें क्लासिकल हीट स्ट्रोक है, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर कोई बाहर हैवी वर्क कोई कर रहा है तो उसमें क्लासिकल एग्जर्शनल दोनों तरह का हीट स्ट्रोक हो सकता है।
1: चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जी महेंद्र जी।
2: जी कनक जी नमस्कार।
1: नमस्ते।
2: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार।
0: धन्यवाद
2: जी। मैं चाहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में कितना पानी पिए और कितना पानी जरूरी है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अच्छा एक स्वस्थ व्यक्ति पानी की पूर्ति हेतु बोतल लगवाता है, यानी डिस्टिल वाटर कहें या कुछ भी कहें उसे, तो आवश्यक है या नहीं?
0: ये देखिए, एक किसी भी अडल्ट व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसका 70-80% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पानी है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर जो अडल्ट व्यक्ति है कम से कम उसको 8-10 ग्लास पानी डेली पीना है। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात है, लगभग एटलीस्ट कम से कम आपको 8 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि आपका 70-80% जो आपका बॉडी का वेट है वो उसमें वाटर है, तो उसको जो रिप्लेनिश करने के लिए आपको कम से कम 2 लीटर आपको पानी पीना है। बट अगर हम आज के समय की बात करें, जब हम लू लगने की बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पीना ही है। इसके अलावा डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, वहाँ कितनी गर्मी है, अगर आपको लगता है बहुत पसीना आ रहा है, बहुत वाटर लॉस है, तो आप इसके अतिरिक्त भी पानी पी सकते हैं। बट नॉर्मल स्थिति में 3-3.5 लीटर से ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वरना उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
1: और ये भी ध्यान रखना होगा कि हम पानी पीने के नाम पर या लस्सी पीने के नाम पर बहुत ज्यादा मीठी चीजें
0: बिल्कुल मीठा तो अतिरिक्त बिल्कुल ना लें, और पैक्ड इसलिए जूसेस जो हैं वो अवॉइड करें। नेचुरल अगर आप लें वो फिर भी
1: जो हमारे पुराने लस्सी छाछ बेल का शरबत ऐसी चीजें ज्यादा अच्छी होती है। नींबू पानी
0: बिल्कुल।
1: डॉक्टर पटनायक, कई बार वार्म नाइट और वेरी वार्म नाइट की भी चेतावनी जारी की जाती है, तो ये कब किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है?
3: देखिए साधारण क्या होता है, तो दिन का तापमान तो हमेशा समर में हाई रहता ही है, तो उससे जो हम हीट वेव का डेफिनेशन करते हैं दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिन के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, हीट वेव हुआ, उसके बाद नाइट जब आता है तो नाइट में भी क्या होता है, जो नाइट का टेम्परेचर तापमान है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा हानिकारक होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर में रहते हैं, ये दिन का भी गर्मी झेल लिया, उसके बाद जब नाइट का भी टेम्परेचर, अगर उनके पास एसी नहीं है जो यूज नहीं करते, तो उसको हम वार्म नाइट कहते हैं। तो उसमें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है आपका नाइट का टेम्परेचर वो भी अगर 4.5 to 6.4 हो गया तो उसमें वार्म नाइट कर दे। तो वार्म नाइट जो है नाइट टेम्परेचर में, समर के टाइम में, लेकिन नाइट टेम्परेचर में अगर अधिक हो गया तो उसको वार्म नाइट कहे,
1: और वो भी खतरनाक
3: होता है।
1: धर्मवीर लाइन पर है हमारे साथ दिल्ली से। जी धर्मवीर जी।
4: हेलो नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम गांधीनगर मार्केट में रहते हैं और दुकान हर प्रत्येक दुकान में एसी चलते हैं, एक एक दो दो, तो एक तो उनकी भी हीट निकलती है, मार्केट में निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बच्ची से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग सावधानी क्या बरते हैं, जाना भी जरूरी होता है। और दूसरा मेरा ये पूछना है कि डायबिटीज मरीजों को शिकंजी और ओआर का घोल लेना ठीक है कि नहीं? और तीसरा एक और पुरानी एक बात याद आती है, बुजुर्ग कहते थे, जैसे कहते थे कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसे जो गर्मी गर्मी को मारती है, बैलेंस बराबर करती है। अगर जितनी ज्यादा गर्मी हो आप चाय पी लें, कॉफी पी लें, तो बैलेंस बना रहता है। कोल्ड ड्रिंक लेना ठीक रहता है कि नहीं, कृपा करके?
0: हाँ जी, देखिए कोल्ड ड्रिंक लेना तो नहीं ठीक है ना, बट जो आप नेचुरल जो चीजें हैं जो आपको वैसे ठंडक प्रदान करती हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप बेल रस पी सकते हैं या फिर आप नींबू पानी ले सकते हैं, तो जो नेचुरल चीज़ें, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, तो जो तरल चीज़ें हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। इसका मतलब कोल्ड, ठंडा लेने से आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक लेने से आपकी शरीर को कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो कोल्ड

0: ड्रिंक जैसी चीज़ें नहीं अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है, वो अवॉइड करनी है. और जो आपने कहा शुगरी ड्रिंक, क्या डायबिटीज़ के मरीज़ को हम दे सकते हैं? नहीं, वो अवॉइड करनी है. नींबू पानी अगर आप देंगे उनको तो आप बिना चीनी के दीजिए, नमक वाला नींबू पानी दे सकते हैं, सॉल्टेड नींबू पानी दे सकते हैं, या आप उनको लस्सी दीजिए छाछ वाली जो होती है, जो कि नमकीन लस्सी होती है, तो उनको उस कोकोनट वाटर आप दे सकते हैं.
1: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक. आज हम लू से सुरक्षा और सावधानियों पर चर्चा कर रहे हैं. आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक. ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है. और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित उपाध्याय बिहार से. अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी
2: हाँ हाँ जी जी मैं सुन पा रहा हूँ. मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ अमित उपाध्याय. मैं ये मेरा ये सवाल था कि जैसे कि पिछले हम लोग देखें तुलना करें और पिछले साल के और हर एक साल से तुलना करें तो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है. तो जैसे कि अब पहले टेम्परेचर हाई, अभी जैसे मई में ही टेम्परेचर इतना 45 प्लस जा रहा है, 48 तक आ जा रहा है. तो हम ये मेरा ये प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर जो जिसका शरीर में कुछ नहीं है जांच करने पर भी, वो भी चलते चलते कभी कभी गिर जाते हैं अचानक से, उनका भी बेहोशी कुछ वैसे हो जाता है. तो हम लोग इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि खूब पानी पीना जो भी डॉक्टर साहब बताते हैं वो सब हम लोग करते हैं, इसमें और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके? जी
0: देखिए, जब भी आप बाहर निकलें कुछ एक आप छतरी लें या कपड़ा लें, गमछा जैसा कि कहा जाता है, गीला करके लें तो और भी अच्छा है. तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना. देखिए नॉर्मल व्यक्ति में भी ये चीज़ हो सकती है, जिसको पहले से कोई बीमारी है वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड है क्योंकि उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं. एंड स्पेशली जैसे कि कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो लेते हैं ख़ास तौर से, वो लोग बहुत ही प्रीडिस्पोज्ड होते हैं इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए, क्योंकि उसमें पूरा टेम्परेचर रेगुलेशन उनका डिस्टर्ब हो जाता है. तो वो लोग खास ध्यान रखें. और जो नॉर्मल व्यक्ति है, तो बाहर निकलते समय ये सब प्रिकॉशंस लें, फ्लूइड्स लें, तो इतना ही है आप कर सकते हैं. और अगर कोई सिम्टम आपको लगता है हीट एग्जॉशन का या हीट स्ट्रोक का, तो इमिडिएटली ठंडी जगह पे मूव करके गीला कपड़ा रख के आप हवा कर सकते हैं.
1: तो हीट वेव किसी को भी प्रभावित कर सकता है, पर जैसा कि आपने बताया कि जिनको शुगर है या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें इसका ज़्यादा खतरा रहता है. और कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं, मतलब कैटेगरी क्या क्या है जिनके लोगों को इसका खतरा?
0: किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ का अगर कोई मरीज है, कोई अस्थमा है, कोई COPD है, कोई हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है, कोई कैंसर कीमोथेरेपी पे है, ये सब भी प्रीडिस्पोज्ड हैं. बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ये सभी जो हाई रिस्क ग्रुप्स में ही आते हैं.
1: तो प्रेग्नेंट लेडीज के जो आपने बात की, उसमें क्या असर पड़ता है उस पर, उसके होने वाले बच्चे पर हीट वेव का?
0: देखिए जब आप हीट, अगर आप हीट से एक्सपोज्ड हैं, तो आपको पेरिफेरल वैसोडायलेटेशन होता है, यानी कि आपकी जो पेरिफ्रीज की जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट आपके बॉडी से बाहर निकल सके. उसकी वजह से थोड़ा वॉल्यूम जो है आपका, बाकी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई, उसके लिए ब्लड कम हो जाता है. तो ऐसे में जो बच्चा है उसका ब्लड सप्लाई भी कम हो सकता है. तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम कोशिश करें ऐसी गर्मी की जगह से बचा कर रखें, और फ्लूइड, फिर से वही बात है, तरल पदार्थ का जितना हो सके सेवन करें.
1: महाराष्ट्र से कोल्हापुर से विजय कुमार स्वामी है हमारे अगले श्रोता.
3: हाँ जी
1: जी.
3: हाँ कनक जी जी नमस्ते.
1: नमस्ते.
3: हाँ जी जी को भी नमस्ते सर. नमस्ते.
0: नमस्ते.
3: हाँ विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, तहसील शिवर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं.
1: जी जी.
3: हाँ मेरा सवाल यह है कि अभी दिन रात पंखे जो चालू है
1: जी,
3: इसका हमारे पर शरीर पर कुछ असर हो सकता है क्या?
1: पंखे का असर तो नहीं, गलत नहीं होगा.
0: नहीं, पंखे से फायदा है, बट अगर 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है तब केवल पंखा चलाने से फायदा नहीं है. तब आप AC चला के AC का टेम्परेचर 27 डिग्री रख के साथ में आप पंखा चलाएंगे तो उससे और आपको 4 डिग्री कम महसूस होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि AC का टेम्परेचर 15, 20, 22, 21 नहीं रखना है, 27 रखना है ज्यादा से ज्यादा जो पॉसिबल. और साथ में आप थोड़ा फैन तब चलाएंगे तो वो और मदद करेगा. और जैसे कि पहले वो मैं पूछ रहे थे कि हम सब जगह AC चल रहा है, इतना गर्म है, तो और हम क्या कर सकते हैं? आपको जितना हो सके अपने छतों पे ग्रीन

0: प्लांटेशन करना चाहिए, उससे थोड़ा सा आपका जो है
1: घर का तापमान थोड़ा
0: तापमान जो है कंट्रोल रहेगा बाकी। हाँ जी,
1: और घर के आसपास भी पौधे लगाने चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: हमारे एक श्रोता ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछा है डॉक्टर पटनायक कि आईएमडी की एडवाइजरी और मौसम संबंधी अपडेट आम लोग कहाँ से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
2: देखिए आईएमडी जो,
1: ये मयंक शेखर जी, मैं आपको नाम बता दूं, मयंक शेखर मिश्रा हैं, ये वाराणसी से उन्होंने पूछा है।
2: हाँ, वाराणसी भी बहुत गर्मी जगह है और वहाँ भी बहुत लस्सी ये सब जो इसलिए भी चलता है। तो देखिए जो हम जो आईएमडी जो देता है सूचना, जो हीट वेव का अर्ली वार्निंग जो बोलते हैं हम, वो बहुत सारे मेकानिज्म में हम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहला तो एक है कि हम हमारा वेबसाइट में देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वेबसाइट नहीं करते अपडेट, मान लीजिए वेबसाइट नहीं देते। दो देन दूसरा, हमारा जो ऐप वगैरह है उसमें भी हमारे इसका जानकारी देते हैं। ऐप के साथ साथ हम आजकल क्या कर रहे हैं, हर दिन एक वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, उसको अपलोड किया जाता है, तो उसमें आपका पुरका जानकारी जो यूट्यूब में अपलोड किया जाता है, तो जो जो लोग उसको भी एक्सेस करते हैं उसमें से मिल रहे हैं। आपको ऐप से मिलेगा, व्हाट्सअप में मिलेगा, देन सोशल मीडिया, फेसबुक, आईएमडी का अगर कोई है जिनका अकाउंट अगर करेंगे तो उसमें मिलेगा। तो ये तो ऑल इंडिया लेवल में भी है, और हमारे जो रीजनल सेंटर वगैरह, जैसे कि वाराणसी से उन्होंने बताया भाई साहब, तो लखनऊ में हमारा जो रीजनल मेट सेंटर्स है, वहाँ से जो रीजनल डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इंफॉर्मेशन, उनका वेबसाइट एक अलग होता है, उनका जो डाटाबेस है जहाँ जहाँ मैसेज जाता है उनका सारा सब उन्होंने रखा है। तो हर तरह का मीडियम से हम लोगों को प्रेषित करते हैं।
1: इन्होंने ये भी पूछा है कि दिन के कुछ वो विशेष समय क्या है जब लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इतनी भीषण गर्मी में।
2: देखिए ये दिन में जब टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग अराउंड 2:30 के आसपास, 3:30 इसी में होता है दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर। लेकिन सुबह से गर्मी शुरू हो जाता है, गर्मी टेम्परेचर भी बढ़ता है, और दूसरी बात क्या होता है कि जब नीचे का ज़मीन भी गर्म हो जाता है वहाँ से भी टेम्परेचर ऊपर रेडिएट होता है। तो ये दोनों का जब ये होता है तब तो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो आपका इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग उसी टाइम में 2:30 के बाद आता है, जबकि पहला 12 बजे मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं आता है, 2:30 के बाद 3 बजे अराउंड उसमें आता है कि जब दोनों तरफ से रेडिएशन आता है। तो इसलिए उसी टाइम में नेचुरली जब डायरेक्ट सनलाइट है 11 बजे के बाद एटलीस्ट डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा तेज है उस टाइम अवॉइड करना चाहिए। जब मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है, जब गर्मी धरती नीचे गर्मी हो गया, गर्म हवा भी नीचे से फेंक रहा है, तो वो भी 3-4 बजे तक, तो आपका अवॉइड करना,
1: मतलब 11 से 4 तक अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके। अगला सवाल है रवि जवालिया जी का हरिद्वार से।
3: नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार
3: जी, मैं रवि जवालिया गढ़वीरपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ, और सभी विशेषज्ञ को और आपको भी नमस्कार बोल रहा हूँ जी, और आप सभी को और मेरे सभी श्रोता गणों को भी अभिभावक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी।
1: जी आपको भी।
3: हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कोरगेशन मशीन से गत्ता कंपनी में काम करता हूँ, वो मशीन थोड़ी हीट जनरेट करती है, तो मुझे वहाँ पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी शायद गर्मी का एहसास होता है ये सभी को, तो मैं अपने माध्यम से वैसे तो मुझे पता है, मैं श्रोता उसको भी जान मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या मुझे उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैम जी।
1: ये जहाँ काम करते हैं वो मशीन से गर्मी निकलती है काफी, तो क्या सावधानी इनको बरतनी चाहिए?
0: तो जितना हल्का कपड़ा हो सके आप उतना हल्का कपड़ा पहने, और फिर वही अगर एक गीला कपड़ा आप सिर के आसपास लगा सकते हैं तो वो आई थिंक आपको थोड़ा मदद करेगा, और लिक्विड चीजें लेते
1: ये
0: रहे।
1: तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बार बार बता रही हैं कि आपको जितना हो सके उतना तरल पदार्थ लिक्विड लेना है,
0: और आसपास कहीं पंखा है तो आप पंखा
1: बीच बीच में आप जा सकते हैं। डॉक्टर रूपाली, बहुत छोटे बच्चे जो अभी अपनी स्थिति नहीं बता सकते हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावक कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे को लू लग गई है?
0: जी बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि तो बच्चों को गर्मी के समय जैसा सर ने बताया 11 से 4 के बीच में आप घर से बाहर ना भेजें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा लू लगने का रिस्क होता है। और बच्चों को हमें बहुत इंश्योर करना है कि वो कम से कम 8 ग्लास पानी ज़रूर पिए, क्योंकि इस समय हो सकता है बच्चा पानी कम पी रहा है, तो हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों का फ्लूइड इंटेक ठीक रहे, 11 से 4 के समय वो बाहर ना निकले। और बाकी अगर

0: लगता है कि बच्चा कुछ भी सुस्तीपन दिखा रहा है.
1: जैसे बहुत छोटा बच्चा, जो
0: बिल्कुल,
1: गोद का
0: बहुत
1: बच्चा
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल
1: उसके लिए
0: सुस्तीपन सुस्तीपन,
1: सुस्तीपन.
0: दूध नहीं पीना अगर बच्चा इतना छोटा है, बिल्कुल, अगर दूध नहीं पीना या बुखार होना, तो इमिडिएटली आपको किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को विजिट करना है और उनकी मदद लेनी है. और बच्चों को भी ढीले कपड़े, सब
1: ढीले
0: ये
1: कपड़े,
0: बहुत इम्पोर्टेंट है, हल्के
1: कपड़े.
0: फुल्के हवादार ढीले कपड़े.
1: अगला सवाल है राकेश जी का शिमला से.
2: जी नमस्कार.
1: नमस्कार
2: जी, मेरा दो सवाल है. पहला सवाल तो ये कि जब गर्मी बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, वो कितना घातक है. और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे कि अब हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी भी बढ़ रही है, तो इसमें मैदानी क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा. ये मेरे दोनों सवाल है.
1: जब हिल स्टेशन पे गर्मी बढ़ने लगी है तो प्लेन्स पे और भी गर्मी होगी, इनका ये पूछना है कि ये क्या असर पड़ेगा प्लेन्स पे.
3: देखिए, जैसा कि हिल स्टेशन में थोड़ा सा हमारा ये है कि हिल स्टेशन में थोड़ा तापमान प्लेन स्टेशन से थोड़ा कम रहता है, ठीक है, तो इसलिए जैसा कि प्लेन स्टेशन से भी लोग जाते रहते हैं. तो बट आजकल क्या होता है, क्लाइमेट चेंज है, तो हिल एरिया में भी जो जैसे कि पहला पहला इतना गर्मी नहीं होता था, आजकल हिल एरिया में भी गर्मी महसूस कर रहे हैं. तो इसलिए तो हिल स्टेशन के लिए तो गर्मी आपका धीरे धीरे भी हो रहा है, पहले जो इतना नहीं हो रहा था इसलिए. लेकिन प्लेन एरिया में तो आपका उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्लेन एरिया में तो थोड़ा गर्मी का ज़्यादा पकड़ेगा, क्योंकि वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज थोड़ा सा ज़्यादा है हिल स्टेशन के ऊपर. तो इसलिए हिल स्टेशन में जब हो रहा है तो उसका उसका प्रभाव प्लेन में नहीं है, लेकिन उसका उसका प्लेन में भी रहेगा. जब जब हिल में हो रहा है तो प्लेन में भी रहेगा.
1: डॉक्टर पटनायक, हीट एक्शन प्लान्स क्या है?
3: हाँ, हीट एक्शन प्लान क्या होता है कि पहला पहला क्या हो रहा था, जब ये एक्शन प्लान नहीं होता था तो हीट क्या धीरे धीरे धीरे धीरे किल करता है, तो हीट वेव के कारण भी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेथ जो है, नंबर ऑफ डेथ बढ़ता गया. तो गुजरात साइड में पहला ये महसूस हुआ कि बहुत सारे जो हीट रिलेटेड डेथ बढ़ रहा है. तो देखा गया कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत अनजान के कारण लोग क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं जानते थे, इसलिए बहुत एक्सपोजर होता था, क्या एक्शन लेना है उनको पता नहीं था, तो इसलिए लोग थोड़ा डेथ 2010-12 में ऐसा हुआ. तो उसमें हीट एक्शन प्लान जब स्टार्ट हुआ, उसमें क्या होता है, एक जो जो भी राज्य में जहां हीट रिलेटेड ये सब इफेक्ट रहता है, तो उन्होंने वन बाय वन थोड़ा हीट एक्शन प्लान शुरू किया. तो पहला मान लो गुजरात में हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो हीट एक्शन प्लान में क्या होता है, ये बहुत सारे म्यूनिसिपल लोग जो होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, IMD के जो वार्निंग अर्ली वार्निंग देते हैं, और ये बाकी जो जो जो एडवाइजरी इशू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी, ये सारे जो है एक तरीके से रहता है. तो पहला उनको क्या होता है, एक हमारे डिपार्टमेंट से अगले 5 दिन अगले 7 दिन के लिए तापमान कैसा रहेगा, वो एक पहला इन्फॉर्मेशन हो गया. तो वो इन्फॉर्मेशन के बाद फिर म्यूनसिपल जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, अगर पानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर ज़्यादा लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो उनको फिर मेडिकल अटेंशन देना जाता है.
1: डॉक्टर पटनायक, अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का. हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया. भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक, आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है. अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए. नमस्कार.
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार
5: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है.
6: प्रस्तुत है नौटंकी, ये कैसी दुश्मनी. इसके लेखक हैं श्री महावीर सिंह चौहान. प्रस्तुत करता है राम गोपाल.

0: नाटक का पर्दा गिरता है। सौरभ के पिताजी सुषमा को देख के बहुत ही प्रभावित होते हैं, दोनों का बहुत ही अच्छा पाठ है। क्योंकि सुषमा के पिता बहुत गरीब हैं और सौरभ के पिता बहुत अमीर हैं, तो क्या कहते हैं जनसमूह से,
1: सुषमा सौरभ की कला

जब सुषमा के पिताजी सोचते हैं मनी मन में कि ये बहुत अमीर आदमी है, मैं ये वचन दे रहे हैं शादी करूं या न करूं, और सुषमा के पिताजी कहते हैं

सुखी है भाग सुफल अति। सौरभ के जब लड़की हो जाती है सास और ननद दुख

जब बहू के लड़की और पैदा हो जाती है तो मुझे कलमुई बहुत बुरी बुरी तरह उसे सुनाती हैं। इसके पश्चात भगवान को और दुख उसे देना था।

क्योंकि सौरभ के पिता संतोषी थे, वो समझाते रहते थे उनकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है,

0: घर की व्यथा आपको क्या बताऊं?
1: बताइए।
0: कुछ दिनों से तुम्हारे

0: नहीं जाएगी तू? माता जी मुझे घर से मत निकालिए, मैं आपके घर
1: जोड़ती हूँ। निकाल जा,
2: मारती पीटती है सुषमा को, सास कहा

प्राण घुट घुट कर खोती, रोटी की तो बात दूर, पानी से प्यासी रोटी। दोनों माँ बेटी सुषमा को और उसकी लड़की को तालियां बंद कर देती हैं और बाहर निकल जाती हैं। रोटी पानी की बात नहीं पूछती। एक दिन होता है, दो दिन होता है, करते

0: चक्की पीसे दो जेल में आ जाए अकल ठिकाने।
1: दोनों माँ बेटी को पुलिस पकड़ ले जाती है, सौरभ बहुत दुखी होता है, जेल में सड़ती है। ये नौटंकी दहेज प्रथा के ऊपर यही समाप्त होती है। बोलो छात्र की।
2: अभी आप सुन रहे थे नौटंकी ये कैसी दुश्मनी। लेखक थे श्री महावीर सिंह चौहान। गायक कलाकार थे श्री मदनलाल शर्मा, श्री रामहेश सिंह तोमर, श्री पूरनलाल शर्मा, श्री प्रकाश सिंह सिसोदिया, लता रानी और जाफरी। वादक कलाकार थे नक्कारे पर श्री शमशेर, ढोलक पर श्री सत्तार अहमद और हारमोनियम पर श्री हीरा लाल। प्रस्तुति सहायक श्री मोहित कुमार और प्रस्तुतकर्ता थे राम गोपाल।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद अब्दुल लतीफ का सारंगी वादन। आज आप सुनेंगे सारंगी पर बजाया राग मारवा, राग देश और राग किरवानी। तो आइए सुनते हैं उस्ताद अब्दुल लतीफ का सारंगी वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे उस्ताद अब्दुल लतीफ का सारंगी वादन। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

FM 102.9 लब्दो मेगा हर्स पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार

0: भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitrakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर.एन. नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ओरिएंट अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said, Both sides underline the importance of connectivity and